हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारो चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स पर और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्स पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 20वीं तिथि तदनुसार दिनांक 10 जुलाई सन 2026। प्रातः के इस वक्त 5:57 हो रहे हैं। हमारी आज की पहली प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोल अमारो चैनल है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार सुनेंगे।
1: भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया है। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
2: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड की यात्रा होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और जागरूक समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन में जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों सहित सीमावर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव कानून की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति आज और कल गोवा में व्यापक विचार विमर्श करेगी। समिति अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत गोवा का दौरा कर रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में एक समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर कुवैत की यात्रा पूरी करने के बाद ओमान पहुंच गए हैं। उनके आगमन पर ओमान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शेख अहमद अल मस्करी ने उनका स्वागत किया। डॉ. जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, न्यूयॉर्क और ब्रसेल्स की 11 दिन की यात्रा पर हैं। फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बापे ने 60वें मिनट में और उस्मान डेम्बले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। और ब्रिस्टल में चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हराया है। भारत के 159 रन के लक्ष्य को इंग्लैंड ने 37 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है।

0: मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर आज तेज वर्षा का अनुमान है। अगले चार दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। प्रातः 6:05 हुए हैं। अब सुनिए आज का विचार, स्त्रियों की सबलता पर गांधी के विचार, वाचक स्वर श्रीमती परखा थानवी व्यास का।
2: नमस्कार, आज का विषय है स्त्रियों की सबलता पर गांधी जी के विचार। मेरा आदर्श ये है कि पुरुष पुरुष रहते हुए स्त्री बने तथा स्त्री स्त्री रहते हुए पुरुष बने। पुरुष को स्त्री बनना चाहिए, अर्थात उसमें स्त्रियों की नम्रता और विवेक होना चाहिए, और स्त्रियों को पुरुष बनना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि उसे भीरुता को छोड़ हिम्मत वाली और बहादुर बनना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि स्त्रियों में ईर्ष्या भाव बहुत होता है, लेकिन पुरुषों में ईर्ष्या होती ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसी तरह सभी स्त्रियां भी ईर्ष्यालु नहीं होती। बात सिर्फ इतनी है कि चूंकि स्त्रियों को 24 घंटे घर में रहना पड़ता है, इसलिए उनकी ईर्ष्या अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। पुरुष और स्त्री दोनों निर्भय बन सकते हैं। पुरुष प्राय ऐसा मानता है कि वह निर्भय रह सकता है, लेकिन ये बात हमेशा सच नहीं होती। और इसी तरह स्त्रियां भी अपने को निर्बल मानकर अपने लिए अबला नाम चलने देती हैं। ये बात भी ठीक नहीं है। स्त्रियों को भयभीत रहने की तनिक भी आवश्यकता नहीं। स्त्री और पुरुष दोनों जब तक विकार के वशीभूत हैं, तब तक दोनों का भय है। आत्मा का उद्धार आत्मा ही कर सकती है। आत्मा का बंधु आत्मा ही है। स्त्रियों का उद्धार स्त्रियां ही कर सकती है। इसके लिए तपश्चर्या की जरूरत है। यह बात सच है कि स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा तपश्चर्या शक्ति अधिक होती है, लेकिन ये तपश्चर्या विवेक पूर्वक की जानी चाहिए। कोई भी दूसरा व्यक्ति स्त्रियों की रक्षा नहीं कर सकता। ऐसा कह सकते हैं कि वे अपनी रक्षा आप ही कर सकती हैं। वे स्वावलंबी बन सकती हैं अथवा नहीं। इस प्रश्न के उत्तर में मेरे अंतर से ये ध्वनि निकलती है कि हाँ, वे स्वावलंबी बन सकती है। यदि वे सत्याग्रह सीख ले तो वे पूर्ण रूप से स्वावलंबी और स्वतंत्र हो सकती है। फिर उन्हें किसी पर निर्भर रहने की जरूरत ना रहे। इसका अर्थ यह नहीं कि वे किसी से किसी किस्म की सहायता नहीं ले। जरूरत होने पर वे सहायता अवश्य ले, लेकिन यदि संसार उसको सहायता ना करे तो उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वे निराधार हैं। यदि हम उपलब्ध पदार्थों का उपयोग करते हुए भी अपने मन को उनसे अलग रखें तो हम स्वावलंबी ही रहते हैं। फिर भले ही हम समस्त जगत का आश्रय लें तो भी पराधीन नहीं बनते। यदि कोई आश्रय नहीं भी देता तो भी हमें लगता है कि कोई बात नहीं। उस समय हम क्रोध नहीं करते और ना किसी की निंदा करते हैं। इसका नाम ही सत्याग्रह है। हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। यह बात हमारी बुद्धि में बैठ जाए इतना ही पर्याप्त नहीं, हमें हृदय से ऐसा महसूस करना चाहिए। भय त्याग का मतलब ये नहीं कि हम जगत की परवाह ना करें। मेरा कोई नहीं है, इस विचार का हमें त्याग करना चाहिए। सबका आधार ईश्वर ही है। स्त्रियों को यही विचार करना है कि वे स्वयं कैसे अपने आप को सबल बना सकें और अपनी निर्बलता को कैसे निकाल बाहर करें।

अनुप जलूटा और साथियों के स्वर में अभी आपने सुना ये भक्ति गीत। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं। लीजिए अब सुनिए अनुपमा देशपांडे के स्वर में अगला भक्ति गीत।

अनुपमा देशपांडे के स्वर में अभी आपने सुना ये भक्ति गीत। कार्यक्रम के आखिर में सुनिए अनुराधा पौडवाल के स्वर में अगला भक्ति गीत।

राधा पौड़वाल के गाए इस भक्ति गीत के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मिजन वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स पर और FM 101.6 मेगा हर्ट्स पर। सुबह के 6:30 हुए हैं। अब सुनिए तुलसीकृत रामचरित मानस गान का सस्वर पाठ। मुख्य गायन स्वर है अनुराधा पौड़वाल का और संगीतकार है सतीश भाटिया। आज के कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं बालकांड के दोहा संख्या 226 से 229 तक की चौपाई का सस्वर पाठ।

श्री रामचंद्र जी व लक्ष्मण जी पूजा के लिए फूल लेने बाग में गए। वसंत ऋतु के प्रभाव से सब ओर वहां प्राकृतिक सौंदर्य की छटा देखते ही बनती थी। नए नए पत्तों और फलों से युक्त सुंदर वृक्ष लहला रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते और चकोर आदि पक्षी अपनी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। बाग के बीचों बीच निर्मल जल भरा सुहावना सरोवर बहुरंगी कमल पुष्पों से शोभित है और जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं। मालियों से अनुमति लेकर दोनों भाई पुष्प एकत्रित करने लगे। उसी समय पार्वती की पूजा करने के लिए सीता जी भी वहां आईं। उनके साथ सुंदरी और सयानी सखियां थीं। सीता जी ने बड़ी श्रद्धा से मां पार्वती गिरिजा की पूजा की और योग्य तथा सुंदर वर की कामना की। इसी बीच एक सखी को राम लक्ष्मण पुष्प एकत्रित करते दिखे। दर्शन मात्र से उस सखी का शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भराया। अन्य सभी सखियों ने उस सखी से उसकी प्रसन्नता का कारण पूछा। दोनों भाइयों के अमित सौंदर्य का वर्णन करते हुए वो बोली, वाणी बिना नेत्रों की है और नेत्रों के वाणी नहीं है, अतः मैं उन दोनों राजकुमारों के सौंदर्य का वर्णन कैसे करूं। यह सुनकर दूसरी सखी बोली कि संभवतः ये वही राजकुमार हैं जो कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। इन दोनों राजकुमारों ने अपने रूप की मोहिनी फैलाकर नगर के सभी स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। सीता जी को ये वर्णन अत्यंत प्रिय लगा और वे उन राजकुमारों के दर्शन के लिए अपनी सखी को साथ ले आगे चलीं।

अभी आप सुन रहे थे तुलसीकृत रामचरितमानस गान का सस्वर पाठ। मुख्य गायन स्वरता अनुराधा पौडवालका और संगीतकार थे सतीश भाटिया। आज के कार्यक्रम में आपने बालकांड के दोहा संख्या 226 से 229 तक की चौपाई का सस्वर पाठ सुना। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। अब प्रस्तुत है हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

हमारी सभा में सवेरे 6:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती की बातें। जानकारी का विषय रहेगा पॉली हाउस, आधुनिक खेती की आवश्यकता। जानकारी देंगे सत्यनारायण शर्मा। लोक भजन सुनेगा सवेरे 6:50 पर और दैनिक कार्यक्रम सुप्रभात का समय रहेगा सवेरे 7:00।

फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा आप हमारी सभा में सवेरे 7:30 पर, सवेरे 10:00, दिन में 11:00, 12:40 पर और दिन में 2:30 पर। सारब, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सवेरे 8:30 पर। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे सारब, कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे व्यंग्य वार्ता बात एक भारत की। वार्ताकार होंगे डॉक्टर नीरज दहिया। सुगम संगीत का आनंद लीजिएगा सवेरे 8:45 पर और लोक संगीत का समय रहेगा सवेरे 9:10।

सवेरे 9:15 कार्यक्रम गांधी चर्चा में आज आप सुनेंगे बापू के खुराक के प्रयोग विषय पर विचार, स्वर श्री प्रमोद कुमार शर्मा का, प्रस्तुति श्री अशोक कुमार की और संयोजन श्री अमित सिंह का होगा। सवेरे 9:30 पर सुनेगा एनसीईआरटी का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग।

दिन में एक बजकर 5 मिनट पर बहने सुनेंगे अपना कार्यक्रम महिला जगत। कार्यक्रम में आज चर्चा के विषय रहेंगे साहित्य में महिलाओं का योगदान, पीसीओएस की समस्या और लाइफस्टाइल, कपड़ों में ब्लॉक प्रिंटिंग और कसीदाकारी। साथ ही आप सुनेंगे एक वार्ता, पर्यावरण संरक्षण और महिलाओं का योगदान। वार्ताकार होंगी श्रीमती कविता ओझा। हमारी दूसरी सभा में संध्या 5:05 पर युवा श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। आज की बात का विषय रहेगा सोशल मीडिया की मित्रता के मायने। लघु जानकारी के विषय रहेंगे रॉकी पर्वत, ट्रेंड्स के बजाय अपनी जरूरत पहचाने, खुद को दे अहमियत और राजस्थान के किले। साथ ही आप सुनेंगे एक वार्ता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यात्रा, वर्तमान और भविष्य। वार्ताकार होंगे श्री भूपेश धनेवा। प्रस्तुति श्री रेवंत राम लेगा की, संयोजन श्री अमित सिंह का होगा। कार्यक्रम के आखिर में आप सुनेंगे रोजगार समाचार और क्विज टाइम। संध्या 6:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत और जिले की चिट्ठी का समय रहेगा संध्या 6:40। संध्या 7 बजे ग्रामीण श्रोताओं के लिए होगा कार्यक्रम ग्रामीण जगत। कार्यक्रम में आज चर्चा के विषय रहेंगे ग्रीष्मकालीन कुष्मांड फूल की सब्जियां, हरे चारे को सुखाकर संग्रह करने की विधियां और समग्र ग्रामीण विकास के लिए केंद्र सरकार की योजनाएं। साथ ही आप सुनेंगे पशुओं की मेंगनी

0: उत्तम कार्बनिक खाद। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत और लोक संगीत आप सुनेंगे रात्रि 8:30 पर आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे स्थानीय नाटक इंद्रलोक, लेखक होंगे श्री भागीरथ रेवाड़। आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम गुलिस्तां। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में श्री वीजी जोग का वायलिन पर बजाया राग दुर्गा आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर। ये थी हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। जानकारी का विषय है पॉली हाउस, आधुनिक खेती की आवश्यकता। जानकारी दे रही है सत्यनारायण शर्मा।
1: राम राम। आज अपन बात करा हाँ पॉली हाउस आधुनिक खेती की आवश्यकता। वो तो अपन जाना ही हाँ कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और 18 अधिकतर लोग जिका है खेती बाड़ी रे माध्यम आपरो जीवन यापन करया करें। पर बात आ है कि भाई आपने फसलों उत्पादन या खेती जी की है प्राकृतिक मानसून पर निर्भर करया करें जी के कारण कारण कणी कणी तो अपनी पैदावार इतनी अच्छी हो जाए इतो अच्छा मुनाफा हो कहो ही कहीं और कणी कणी यहाँ वह कि भाई उत्पादन जी को है बिल्कुल नहीं रहे बराबर है या प्राकृतिक आपदा रहे कारण अपने खेती रे मैंने नुकसान भी हो जाया करे। ई गंभीर समस्याओं निजात पाने सारू वर्तमान रे मैंने किसान कई तरह का जतन करया करे जी के मैं एक है पॉली हाउस रे माध्यम उच्च तकनीक रे नई तकनीक रे रूप में मैंने कृषि रो कृषि जी की है व खेती जी की है करनी। पॉली हाउस फार्मिंग जी की है एक तरह की खेती है जिकर मैंने फूल लेकर सब्जियां तक की खेती जी की आप कर सका। पॉली हाउस फार्मिंग जी को है प्लास्टिक रे छत्र नीचे जी को है वो करया करे। फसलों ने बेहतर उत्पादन सारू पॉली हाउस जी को है बहुत ही कारगर सिद्ध जी को रहा है। आज देश के प्रत्येक कोने में किसान जी का है फसलों ने उगाने में पॉली हाउस तकनीक का इस्तेमाल जी को है कर रहा है। पॉली हाउस एक प्रकार रो ग्रीन हाउस है जठे विशेष प्रकार की पॉलीथीन सीट रो उपयोग जी को है आप कवरिंग सामग्री रूप में करया करा जिके तहत फसलों ने आंशिक रूप या पूरी तरह अपना वातावरण जिको जलवायु परिवर्तन वे जलवायु परिस्थिति वे बिहार नियंत्रण में अपना उगा सका। अपने जिको अंदर तापमान चाहिए या जीती अपने सिंचाई चाहिए वह आप कर सका। प्राकृतिक जिकी जलवायु परिवर्तन हुए भी वो अपनी फसल ने जिकी है बचा सका। आधुनिक समय में ने पॉली हाउस जिकी है GI स्टील फ्रेम पर बनाया हुआ करें जिके ने अपना प्लास्टिक को ढक दिया करा और जिका एल्यूमिनियम ग्रिप पर सके फ्रेम पर फिक्स होया करें। कवर करण सारू इस्तेमाल होने वाली जिकी सफ़ेद प्लास्टिक की जिकी फिल्म है वह उच्च गुणवत्ता रही होया करे। पॉली हाउस रे अंदर पानी देने उद्देश्य सारू अपना ड्रिप सिंचाई पद्धति जिकी है वह उपयोग में लिया करें। दूसरे शब्द में बात करा तो भाई वर्तमान समय में ने आधुनिक ढंग से खेती करने सारू फसल ने उगाने सारू एक विशेष प्रकार की पॉलीथीन या चादरों ढकोड़ो एक घर होया करे। ई घर रे अंदर अपना वातावरण अपने जिसो चाहिए फसल अनुसार बिर अनुकूल आप हर प्रकार हर मौसम में ने सब्जियां उत्पादन जी को कर सका। पॉली हाउस में ने बाहरी वातावरण रो प्रभाव बिल्कुल ही कम पड़िया करे या क्या आप वातावरण प्रभाव पड़े ही कोनी। पॉली हाउस ने सेड नेट हाउस ग्रीन हाउस या नेट हाउस रे नामों भी अपना जाना है। पॉली हाउस खेती रो एक आधुनिक तरीको है जिके सु अपा हानिकारक कीटनाशक और अन्य रसायन अधिक उपयोग रे बिना उच्च पोषक मूल्य रे सागे घनी पैदावार जी की अपा ले सका। पॉली हाउस खेती एक कृषि पद्धति है जिके में पौधा ने नियंत्रित परिस्थितियां में उगाया करा जिके में किसान पौधे री जरूरत और बाहरी जलवायु परिस्थिति अनुसार अपने तापमान और आर्द्रता स्तर नियंत्रण कर खेती जी की है बा कर सके। पॉली हाउस पौधा ने लगातार बदलते मौसम गर्मी धूप और हवा जैसी जलवायु परिस्थितियों बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा करना। ऐ पौधा ने वर्ष रे किसी भी समय बढ़ने में मदद कर सके। पॉली हाउस खेती में उपज ने प्रभावित करने वाला हर कारक ने नियंत्रण जी को है वो कर सके। अब बात करें भी पॉली हाउस खेती का लाभ कहीं है। पॉली हाउस फसलों ने हवा बारिश विकिरण वर्षा और अन्य जलवायु कारकों बचाया करे। ऐ फसलों ने चारों ओर माइक्रो क्लाइमेट बनावे जिको उत्पादन और गुणवत्ता के संबंध में अधिकतम वृद्धि में मदद करया करे। पॉली हाउस उत्पादन नु अधिकतम स्तर बढ़ाने सारू जिकी गैसा जिकी होया करे उस कार्बन डाइऑक्साइड उस सांद्रता भी प्रदान करया करे जिके कारण पॉली हाउस की पैदावार घनी होया करे। पॉली हाउस में विभिन्न परिस्थितियां ने पौधा ने आप उगा सका जिका विशेष जलवायु क्षेत्र में खेती करना असंभव।

0: होया करे। उदाहरण के लिए भारत के मैदानी इलाकों में स्ट्रॉबेरी उगाणो, पॉली हाउस फसल आपके खेत में न्यूनतम क्षेत्र में अधिकतम लाभ जो है वो दिया करे। शौचालन अधिकतम स्तर सके और गतिविधियां श्रम निर्भरता और श्रम लागत जी की है बा कम हो जाए करे। तो घना करा फायदा जी का है वे अपने पॉली हाउस खेती में मिलिया करे और भगत रह सके आप नवी नवी तकनीक अपना अपना खेती में चोखो लाभ जो है वो ले सका।
1: अभी आप सुन रहे थे पॉली हाउस आधुनिक खेती की आवश्यकता विषय पर जानकारी, कार्यक्रम था खेती की बातें। जानकारी दे रहे थे सत्यनारायण शर्मा। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। अब सुनिए लोक भजन, कलाकार हैं वीरेंद्र शर्मा।

0: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोलामारू चैनल है। प्रातः के 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप आकाशवाणी दिल्ली से संस्कृत में समाचार सुनेंगे।
1: पीएम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका निधि झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रावोचत् यद् एकविंशति

0: शताब्द्याः भारतं विकसित भारतं भवितुं संकल्पबद्धं वर्तते। तेनोदीरितं यत् साम्प्रतं भारतं तादृशः देशः यः अधिक विकासे विश्वसिति। विगत द्वादश वर्षेषु स्वस्य तृतीयम् ऑस्ट्रेलिया भ्रमणं हैट्रिक इति विज्ञापयता तेन प्रतिपादितं यत् एषः प्रवासः भारत ऑस्ट्रेलिया संबद्धानां अपूर्वगमितां सूचयति। अत्रावसरे ऑस्ट्रेलिया देशस्य प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज अपि तत्र उपस्थितः आसीत्। तेन तत्रत्यं जनसमूहं वीक्ष्य एषा सहभागिता दृढतरा इत्युक्तम्। अस्मात् पुरा उभयोः देशयोर नेतृभ्यां मेलबर्न नगरे तृतीये भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलने भागं गृहीत्वा शिष्टमंडल स्तरीया द्विपाक्षिकी वार्ता विहिता। हिंद प्रशांत क्षेत्रे शांतिम स्थिरतां च स्थापयितुं द्वाभ्यां नेतृभ्यां रक्षा सुरक्षा सहयोग संयुक्त घोषणापत्रे हस्ताक्षरं विहितम्।
1: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
0: वार्ताहरान संबोधयन् प्रधानमंत्री न्यगादीत् यत् भारत ऑस्ट्रेलिया देशाभ्यां परमाणु ऊर्जा क्षेत्रे ऐतिहासिकः सहयोगः साधितः। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः प्रत्यपादयत् यत् एकः सुरक्षितः समृद्धश्च सीमाप्रान्तः अथ जागृतः समाजः सम्भूय एव देशं सुरक्षितं विधातुं शक्नुवन्ति। गृहमन्त्रिणा ह्यः नवदेहल्याम् आरक्षक अधीक्षकाणां सम्मेलने सम्भाषणं कुर्वता प्रतिपादितं यत् वाइब्रेंट विलेजेस इत्यस्य क्रांतिकारी उपक्रमस्य अन्तर्गतं सीमा प्रान्तेभ्यः पलायनम् अपाकर्तुं प्रत्यग्रवृत्त्यवसराणां क्रियान्वयनं विधीयते। श्रीशाहः सविशेषं प्रावोचत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः कुशल नेतृत्वे केन्द्र प्रशासनेन सीमावर्ती अवसंरचनासु वैज्ञानिक रीत्या 400% यावत् अभूतपूर्वो विकासो विहितः। देशे द्रुतगत्या प्रवर्धमानस्य सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी क्षेत्रस्य विविधासु अनियमिततासु वर्धमानां चिन्तां वीक्ष्य राष्ट्रिय महिला आयोगेन एका उच्च स्तरीया विशेषज्ञ समितिः निर्मिता। अत्रावधेयं यत् इयं समितिः महिलानां प्रजननाधिकाराणां प्रतिष्ठायाः सुरक्षायाश्च संरक्षणं करोति। तत्रैव आईवीएफ चिकित्सालयानां एआरटी केन्द्राणां अथ युग्मकोशानां नियंत्रक तंत्राणां प्रासंगिक विधानां च व्यापकं पुनरीक्षणं विधास्यति। संयुक्त राज्य अमेरिका बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र पार्श्वे वैमानिक आक्रमणं कृतवानिति ईरानेन आरोपितम्। ईरानस्य प्रशासनिक वार्ता संस्थया संसूचितं यत् एतत् आक्रमणं अमेरिका देशस्य सेना द्वारा स्व आक्रमणानि समापनस्य होरानन्तरमेव जातम्। इतः प्राग् अमेरिका देशेन ईरान देशस्य उपरि नूतनानि वायु आक्रमणानि कृतानि। यदा तु तेहरान देशः पश्चिमेशियायाम् अमेरिका सम्बद्ध देशान् लक्ष्यीकृत्य प्रक्षेपास्त्र प्रहारैः प्रत्युत्तरं दत्तवान्। ईरान देशस्य स्वास्थ्य मन्त्रालयः अवोचत् यत् अमेरिका देशेन कृतेषु दिनद्वयाक्रमणेषु न्यूनातिन्यूनं 14 जनाः मृताः। पादकन्दुक क्रीडायाम् अमेरिका देशस्य बोस्टन नगरे आयोजिते प्रथमे प्रागुपान्त्य चरणस्य द्वन्द्वे फ्रांस दलं मैरिको दलं पराभूय उपान्त्य चक्रे प्रविष्टवत् इति वार्ताः।
2: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारु चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7 बजे हैं। पेश है सुप्रभात।

कार्यक्रम सुप्रभात सुनने वाले तमाम श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन नमस्कार। आज रेखा भाटी की ओर से श्रोताओं, हर सुबह अपने साथ एक अनकहा वादा लेकर आती है, उम्मीद का, विश्वास का और नई शुरुआत का। कहते हैं कि रात चाहे कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, सुबह का उजाला हमें अपने विश्वास के साथ एक नई राह, एक नया रास्ता और एक नई उम्मीद देता है। तो अगले कुछ पलों तक आप हमारे साथ रहिए, जिसमें आप सुनेंगे दिल में दिल को छू लेने वाली बातें और जिंदगी को और भी खूबसूरत बनाने वाले कुछ खास पल। तो आइए शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ।

श्रोताओ, आकाश में छाए बादल, मिट्टी की सौंधी महक और रिमझिम फुहारों का सुहाना एहसास प्रकृति जैसे हमें याद दिला रही है कि उसकी हर नेमत अनमोल है। बारिश की हर बूंद सिर्फ धरती को ही नहीं बल्कि हमारी उम्मीदों को भी सींचती है। बारिश की हर बूंद प्रकृति का अनमोल उपहार है, लेकिन क्या हम सोचते हैं कि आसमान से बरसने वाली यही अनमोल बूंदें यदि हम सहेज लें तो आने वाले दिनों में पानी की कमी से काफी हद तक बचा जा सकता है। इसी सोच के साथ शुरू हुआ है श्रोताओं कैच द रेन अभियान। इसका सीधा और सरल संदेश है, जहां भी बारिश जब भी बारिश वर्षा जल को वहीं सहेजे, घर की चाहे छत हो या फिर हो हमारा आंगन, खेत हो या कोई खुला स्थान। इससे भूजल का स्तर जो है वो तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए हम उस जल को सहेजें और सुरक्षित करें जो उनके लिए किसी नेमत से कम नहीं होगा। तो श्रोताओं, कैच द रेन जो है वो एक ऐसा अभियान है जिसमें आपकी और हमारी सबकी सामूहिक भागीदारी सुनिश्चित करनी बहुत जरूरी है। समय है मानसून का, ऐसे में आप और हम आसमान से बरसती इस नेमत को सहेजें। आपके घर की छत हो या कोई खेत या कोई ऐसा खुला स्थान जहां पानी को इकट्ठा किया जा सकता है तो आप इस पानी को सहेजें, क्योंकि श्रोताओं, जल है तो जीवन है, जल है तो हम हैं और जल है तो कल है। एक नई सोच और नए संकल्प के साथ हम अपने इस जल की बूंदों को बचाएं और भविष्य बचाएं, क्योंकि आज सहेजी गई हर बूंद आने वाले कल की सबसे बड़ी पूंजी बन सकती है।

0: चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना आकाशवाणी बीकानेर के भोला मारु चैनल की प्रस्तुति।
1: श्रोताओं, अब हम बात करते हैं गरीब कल्याण से राष्ट्र निर्माण दिशा तक। कहते हैं कि गरीब कल्याण से राष्ट्र निर्माण तक की जो अवधारणा है वो एक मजबूत आत्मनिर्भर और समावेशी राष्ट्र के निर्माण का मूल मंत्र है। इसके तहत समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सशक्त बनाकर उसे विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाता है, जो अंततः देश की समग्र आर्थिक और सामाजिक प्रगति का आधार बनता है। श्रोताओं, प्रमुख कल्याणकारी स्तंभ गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी बनाने के लिए सरकार द्वारा कई प्रमुख योजनाएं चलाई जा रही है, जिनमें प्रमुख है आवास और बुनियादी सुविधाएं, वित्तीय समावेशन और मानव पूंजी का विकास, और साथ ही कौशल और रोजगार। श्रोताओं, कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करोड़ों गरीबों को पक्के घर दिए गए हैं। इसके साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से भी स्वच्छता सुनिश्चित की गई है। खाद्य सुरक्षा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के जरिए देश के लगभग 80 करोड़ से अधिक नागरिकों को मुफ्त राशन प्रदान किया जा रहा है, ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। कहते हैं कि जब एक गरीब परिवार को मूलभूत सुविधाएं जैसे पक्की छत, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और यही सशक्तिकरण ही आगे चलकर राष्ट्र निर्माण की नींव बनता है। श्रोताओं, बात चाहे मानव पूंजी विकास यानी कि आयुष्मान भारत योजना जैसी गरीबों को मुफ्त इलाज की सुविधा हो, या फिर महिला सशक्तिकरण के तहत उज्ज्वला योजना जिसमें महिलाओं को दूर से मुक्ति दी और लखपति दीदी जैसी योजनाएं उन्हें आर्थिक रूप से निर्भर बना रही है। अगर बात युवाओं की करें तो युवाओं के लिए कौशल भारत मिशन और मुद्रा लोन जैसे कार्यक्रमों ने उन्हें उद्यमी बनने में महत्वपूर्ण मदद की है, जिससे वे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं। जब देश और देश का हर नागरिक सामाजिक और आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करता है, तब जाकर एक सशक्त, विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र का निर्माण संभव होता है।

श्रोताओं, सुप्रभात में अब हम बात कर रहे हैं संविधान के आदर्शों का पालन। बात जब संविधान की आती है तो श्रोताओं, भारतीय संविधान का पालन करना और इसके आदर्शों मतलब न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सम्मान करना भारत के प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। संविधान का पालन करने का अर्थ है देश के कानूनों का सम्मान करना, आपसी भाईचारा बनाए रखना और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने में अपना योगदान देना। भारतीय संविधान के मुख्य आदर्श और उनके पालन का अर्थ हम इन बिंदुओं से समझ सकते हैं श्रोताओं, कि संविधान की प्रस्तावना के मुख्य आदर्श न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व है। इनका पालन तभी होता है जब हम बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करते हैं। अगर हम बात करें मौलिक कर्तव्य की तो अनुच्छेद 51 क में इसके अनुसार प्रत्येक नागरिक का प्रथम कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे और इसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का हृदय से अनुसरण करें और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और सुधार की भावना को विकसित करें। संविधान का पालन करने का मतलब है कि कानून सर्वोपरि है और सभी नागरिक कानून के समक्ष समान है और किसी के साथ जाति, धर्म या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

श्रोताओं, याद रखिए, हर नया दिन हमें कुछ अच्छा करने और अच्छा सीखने का और किसी के जीवन में खुशियों की एक छोटी वजह बनने का अवसर देता है। इसलिए कोशिश करें कि सदैव किसी के सहयोगी बने। मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए।

और जीवन के हर पल का आनंद लीजिए। इसी सकारात्मक सोच के साथ फिलहाल घड़ी हमें इशारा कर रही है कि फिलहाल आप मुझे इजाजत दीजिए, तो फिर मुलाकात होगी नए विषय के साथ। तो सुप्रभात को यहीं देते हैं विराम। नमस्कार।

जी, आकाशवाणी बीकानेर का ढोलामारू चैनल है। अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम सुप्रभात। सुबह के 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। प्रोग्राम में पहले सुनिए शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में। गीत को लिखा है हर्षद जयपुरी ने, गीत को गाया है मोहम्मद रफी ने। फिल्म का नाम है यकीन।

0: ये बर्बादी का रास्ता है शबनम।
1: लेकिन बात हसीन हमी, इसकी मंजिल तुम्हारी मौत हो सकती है।
2: खुदा करे ऐसी मौत जिसे जिंदगी मिले सर आंखों पर।
0: मगर तुम्हें इस रास्ते पर जाने कौन देगा?
1: मुझे इस रास्ते पर जाने से रोकेगा कौन?
0: मैं रोकूंगी, मैं अमीना बाई।
1: अमीना बाई,

0: तुम तो इंसान हो, अब खुदा भी मुझे नहीं रोक सकता।
1: उम्मीद से उड़ा नालायक बदमाश, इस दिन के लिए मैंने तुझे पाला है, मैं तुझे जान करवा डालूंगी, जान
0: डालो। वरना कहीं ऐसा ना हो मेरी मोहब्बत के रास्ते में आने वालों की जिंदगी मैं ले लूं।

मजनू सुल्तानपुरी के लिखे गीत को संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, गीत को गाया था लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने, और फिल्म थी एक नजर। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं। लीजिए कार्यक्रम में आप सुनिए, राजकमल के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा है इंदु जैन ने, गीत को गाया है यशोदास ने और हेमंती शुक्ला ने, और

मजनू सुल्तानपुरी के लिखे गीत को संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, गीत को गाया था लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने, और फिल्म थी एक नजर। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं। लीजिए कार्यक्रम में आप सुनिए, राजकमल के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा है इंदु जैन ने, गीत को गाया है यशोदास ने और हेमंती शुक्ला ने, और फिल्म का नाम है चश्मे बदूर।

फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोल अमारू चैनल से सुन रहे हैं। लीजिए कार्यक्रम में आप सुनिए लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म सुहागन का ये गीत। गीत को लिखा है हर्षा जयपुरी ने और संगीत दिया है रविंद्र जैन ने।

मोहम्मद रफी के स्वर में अभी आपने सुना फिल्म आज और कल का ये गीत। गीत को लिखा था शाहिर लुधियानवी ने और संगीत था रवि का। कार्यक्रम के आखिर में सुनिए रोशन के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा है शाहिर लुधियानवी ने और फिल्म का नाम है बहू बेगम। गीत को गाया है लता मंगेशकर ने।

लश्कर के गाय फिल्म बहु बेगम किस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोलो मारो चैनल है। सवेरे के 8 बजने वाले कुछ ही पलों में आप आकाशवाणी दिल्ली से समाचार प्रभात सुनेंगे और उसके बाद होगी मॉर्निंग न्यूज़।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की दो दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्दे खाक किया गया। अमरीकी और इसराइली हमलों में उनकी मृत्यु के 4 महीने बाद हुआ अंतिम संस्कार। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। और पुरुष टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई है। ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ है। दोनों देशों ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में 3री ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
1: पीएम सूर्योदय योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
1: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है। पीपल फर्स्ट, यानी नागरिक देवो भव का मंत्र, ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ आज मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा किया। दोनों नेताओं के बीच हुई चर्चा क्रिकेट सहयोग, खेल अवसंरचना, आईपीएल बीबीएल साझेदारी और 2032 में ब्रिस्बेन ओलंपिक और भारत की 2036 में ओलंपिक के लिए बोली सहित प्रमुख वैश्विक खेल आयोजनों से पहले सहयोग पर केंद्रित थे। ऑस्ट्रेलिया यात्रा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से मुलाकात की। उन्होंने श्री टेलर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रगाढ़ होते संबंधों और भविष्य में आने वाले अवसरों पर सार्थक चर्चा की। एक रिपोर्ट।
2: यह बैठक इस बात का स्पष्ट संकेत देती है कि ऑस्ट्रेलिया की संसद में भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों का व्यापक और मजबूत समर्थन प्राप्त है। रणनीतिक साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए नेता प्रतिपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्यूजीलैंड का सच्चा मित्र बताया। दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि यह सहयोग राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिखर वार्ता के प्रमुख निष्कर्षों के अनुरूप श्री टेलर ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम के निर्यात का समर्थन किया। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: श्री मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए ऑकलैंड पूरी तरह तैयार है। यहाँ बसे भारतीय समुदाय के साथ साथ स्थानीय न्यूजीलैंड वासी भी पारंपरिक

0: भारी अभिवादन किया और मोदी कहकर उनका स्वागत करने को उत्सुक हैं। महिलाएं, युवा, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, शिक्षाविद और विभिन्न सामुदायिक संगठनों के सदस्य इस यात्रा को भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत मान रहे हैं। उनका विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा व्यापार, शिक्षा, निवेश, खेल और सांस्कृतिक सहयोग को नई गति देगी। प्रवासी भारतीयों का कहना है कि करीब चार दशकों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आगमन उनके लिए गर्व, सम्मान और भावनाओं से जुड़ा एक ऐतिहासिक पल है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड से।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय।

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बनेंगे 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल।

0: भारत अभियान निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारे जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: भारत के भाग टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी सम्मेलन में उपस्थित रहे।
4: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत पलायन रोकने, रोजगार सृजित करने और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का 100% कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। भारत म्यांमार सीमा पर 31,000 करोड़ रुपए की लागत से बाड़ लगा रही है। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का आकलन करके प्रवर्तन में सुधार के उपायों की पहचान कर देश के सीमा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना था। अक्षित के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। हालांकि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जिन्हें विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से इंजन को नुकसान पहुंचने और वाहन के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने संबंधी शंकाओं को भी खारिज किया। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता UCC का मसौदा तैयार करने के उद्देश्य से 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल महाराष्ट्र विधानसभा में इसकी घोषणा की। एक रिपोर्ट।
5: सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली ये समिति अगले 6 महीने में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। इसके आधार पर सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में नागपुर में विधानसभा और विधान परिषद में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। न्यायमूर्ति रंजना देसाई इससे पहले उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की भी अध्यक्ष रह चुकी हैं। उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना था। इसके बाद गुजरात ने अब

0: यूसीसी कानून पारित किया, जबकि असम इस वर्ष ऐसा करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिगबराई को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद स्थित इमाम रजा दरगाह में अंतिम विदाई दी गई। हजारों समर्थक उनके अंतिम दर्शन के लिए एकत्रित हुए। ईरानी मीडिया ने बताया कि उनके सबसे बड़े बेटे सैयद मुस्तफा खामनेई ने अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की। इस वर्ष 28 फरवरी को अमेरिका इसराइल के हमलों में आयतुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई थी। और अब खेल खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
2: फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पहले हाफ में कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बापे ने 60वें मिनट और उस्मान डेम्बेले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। विंबलडन टेनिस में महिला सिंगल्स का फाइनल चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा और कैरोलिना मुजोवा के बीच खेला जाएगा। लिंडा नोस्कोवा ने सेमीफाइनल में यूक्रेन की मार्टा कोत्स्युक को हराकर पहली बार विंबलडन और ग्रैंड स्लैम फाइनल में जगह बनाई है। वहीं कैरोलिना मुजोवा ने अमेरिका की कोको गॉफ को हराकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया।
1: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद फरहत। भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम खरीदने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, भारत को ऑस्ट्रेलिया करेगा यूरेनियम की आपूर्ति, गगनयान मिशन में भी देगा साथ। जनसत्ता के शब्द हैं, भारत ऑस्ट्रेलिया में रक्षा करार, व्यापार सौदे पर तेजी से काम। अंतरिक्ष में भेजा दुनिया का पहला कमर्शियल परमाणु संचालित सैटेलाइट। सफल लॉन्चिंग, अंतरिक्ष में ऊर्जा के लिए सूरज पर नहीं रहेंगे निर्भर, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। बरसा, एनसीआर थमा, 3 साल बाद दिल्ली में एक दिन में हुई सबसे ज्यादा बारिश। नवभारत टाइम्स ने कल बारिश से बेहाल लोगों की अलग अलग तस्वीरें प्रकाशित की हैं। पत्र लिखता है, सड़कों और अंडरपास में भरा पानी, कई जगह लगा जाम। दैनिक भास्कर ने बीजापुर के इंद्रावती टाइगर रिजर्व के खुलने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, पहली बार बीजापुर के जंगल में सफारी, 40 साल जिन नक्सलियों ने आने से रोका था वहीं पर्यटकों को घुमाएंगे, प्रशिक्षण देकर नक्सलियों को गाइड बनाने की है तैयारी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर पश्चिम एशिया पर फिर से अस्थिरता के बादल मंडराने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, आक्रामक ट्रंप से अस्थिर दुनिया। पत्र लिखता है, जब तक व्यापक बातचीत के जरिए हॉर्मुज जलमार्ग का विवाद नहीं सुलझाया जाएगा तब तक अमेरिका और ईरान दुनिया के अन्य देशों की परेशानी बढ़ाते रहेंगे।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की 2 दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7-सदस्यीय समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्दे खाक किया गया। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुष टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा, द हेडलाइंस। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया अग्री टू ऑपरेशनलाइज देयर सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन अग्रीमेंट, पेविंग द वे फॉर यूरेनियम एक्सपोर्ट्स टू इंडिया। Prime Minister Narendra Modi to arrive in Auckland today on a two-day visit to New Zealand. Home Minister Amit Shah says secure border, prosperous border region and vigilant society together can make the country secure. Maharashtra government forms seven-member committee to draft uniform civil code for the state. Iran's Le

आवश्यकता होती है एक बारात की। बस बारात के बारे में आपको ज्यादा क्या बताऊं, सारी दुनिया जानती है कि बाराती बारात में अपने आप को महाराजा सरकार से कम नहीं समझते। सभी लोग बेहतर से बेहतर सज कर आते हैं। आजकल तो कई लोग दूल्हे से भी बेहतर सजते हैं और केवल साफा पगड़ी के अंतर से ही दूल्हे को पहचान सकते हैं। बारातियों के नाज नखरे ख्वाहिशें ऐसी विचित्र होती हैं, कोई व्यक्ति अंदाज लगाए तो पागल हो जाए। फिर भी लड़की वाले बारातियों के स्वागत संबंधी पूरी कार्य योजना बनाते हैं। स्वागत व्यवस्था में अनुभवी व्यक्तियों की राय लेकर उसे ऐन वक्त तक संशोधित करते रहते हैं। फिर भी कुछ विशेष कमियां बारातियों द्वारा हर बारात में निकाल दी जाती है। हर बारात में नुक्ताचीनी एक आम बात है। हम भी एक दोस्त की शादी में बाराती बने और स्वयं को बेहतरीन सजाया। फेशियल, बालों में कलर, पूरे शरीर पर मसाज, ऊपर से नीचे तक नए और तगड़े ब्रांडेड कपड़े, जूते, टाई, गले में चेन, अंगूठी, मन में उमंग कि आज हम बाराती हैं। शालीनता और तेज गति के साथ हम बारात में शामिल हुए। हमारे दोस्त दूल्हे जो कि एक आंख से भेंगा था, हमें काफी निहारा और डिप्रेस होते हुए बोला, भैया आज तो गजब लग रहे हो, इतने गजब की बारात में मेरे बिल्कुल पास नहीं रहना, थोड़ा दूर ही रहना। देखते ही देखते बारातियों की फौज जमा हो गई। सबकी निगाहें दूल्हे की तरफ थी। इस कारण दूल्हा अलग अलग पोज बना रहा था, डिप्रेस फील कर रहा था। बार बार ठंडा पानी व ठंडा उसे दिया जा रहा था। जो भी बाराती आता दूल्हे से मिलता विश करते हुए कह रहा था, अरे यार क्या गजब लग रहे हो, और सिंपैथी जताते हुए उसके कान में कुछ न कुछ ज्ञान दे जाता। कुछ दोस्त यह भी कह रहे थे कि भाई गर्मी बहुत है, बारात रवानगी के बाद घोड़ी पर चलकर ठंडा पानी नहीं पिया जा सकता, इसलिए थोड़ा पहले ही जल ठंडा पिला दो दूल्हे को। दूल्हे के जीजाजी व भाभी जी तो अपने ग्लास से ही एक एक सिप दूल्हे राजा को पिलाकर उनकी मनवार कर ये बता रहे थे, जतला रहे थे कि उन्हें दूल्हे की कितनी चिंता है। थोड़ी ही देर में मुहूर्त के हिसाब से बारात रवाना हुई। बारात चली तो रास्ते में उत्सुकता से बारातियों और दूल्हे को देखकर कुछ आनंद ले रहे थे। सभी बाराती बड़ी ही धीमी चाल में चल रहे थे, किसी ने दोनों हाथ बांधते हुए पीछे रखकर चल रहे थे। ऐसे लग रहे थे मानो परीक्षा हॉल में इन्विजिलेटर चल रहे हों। बारातियों के चेहरे पर ऐसा रोआब झलक रहा था मानो आज कोई कमी बेसी हुई तो बाराती बिफर जाएंगे और हो सकता है कि बारात वापस। खैर रास्ते में खूब डांस हुए, रुपए उछाले, नाचने पर धूल भी उड़ी। डांसर इतने अधिक थे कि कई लोग नाचते नाचते आपस में उलझ रहे थे, हाथ पैर के झटके कई बार लोगों को चोट भी पहुंचा रहे थे। लेकिन ये नचकैया नाचते हुए कैमरे के आगे रहने के लिए भी कुछ भागा दौड़ी कर रहे थे। कुछ लोग तो कैमरा ऑन होते ही डांस शुरू करते और कैमरे के फोकस में ही डांस उनकी प्राथमिकता रही। कुछ लोग नागिन का डांस कर रहे थे, रुमाल मुंह में डाले बीन बजा रहे थे। दूसरा व्यक्ति नाचते नाचते फन मार रहा था, कुछ शराबी डांस, कभी नहीं नाचने वाले भी आज नाच रहे थे और इनका डांस बड़ा ही रोचक लग रहा था। नजारा काफी रोचक था। बैंड वालों के कान में तरह तरह की फरमाइश बार बार आ रही थी। एक सज्जन आए और बैंड मास्टर को कहा, घूमर आने दो, मेरी मम्मी नाचेगी। घूमर की दो लाइन नहीं बजी कि एक व्यक्ति बैंड वाले को कहने लगा, मैं दूल्हे का मामा हूं, अब हमारे जीजाजी नाचेंगे, झूम बराबर झूम शराबी आने दो। थोड़े ही समय में दूल्हे के दोस्त आ गए, अरे भैया कम सितंबर ट्विस्ट लगाओ। रास्ते में नाच से आम बाराती डरने लग गए। धीरे धीरे नाचने वालों के लिए लोग अपने आप जगह छोड़ने लग गए, क्योंकि नाचने वालों की संख्या ज्यादा वे देखने वालों की संख्या कम हो रही थी। हो हुल्लड़ और भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। देखने वाले दहशत में आने लगे कि कहीं कोई नाचते नाचते ऊपर न आ जाए। धीरे धीरे जूते स्वतः ही इधर उधर खुलने लगे, रेत का गुबार बन गया, सांस लेने में दिक्कत करने लगा। नाचने वाले पसीने से नहा गए, सारा मेकअप धूमिल हो गया। बारात शकुन और नेकचार के लिए गंतव्य स्थल से थोड़ा पहले दूल्हे को उतारा गया। हम दूल्हे से मिले, दूल्हे का चेहरा बड़ा लाल हो रहा था, आंखों में पानी नहीं था, बाकी रोने में कमी नहीं थी। दूल्हे के साथ जो नाई था उसने दूल्हे से पूछा, भैया जी क्या बात है, चेहरा क्यों उतर रहा है। दूल्हे ने बड़े हंसते हुए कहा, भैया थोड़ा सा पानी ठंडा

दिया था तो कुछ हल्का सा प्रेशर बन रहा है। हमने कहा भैया प्रेशर बन रहा है तो कुछ कराएं क्या? दोनों ने झट से मना कर दिया, नहीं भाई ऐसे हमारे अंदर क्या कुछ रोकने की ताकत नहीं है। लेकिन दो ही मिनट बाद दूल्हे ने धीरे से नाई के कान में कहा, भैया हल्का होना पड़ेगा। और नाई धीरे से दूल्हे को जिस कमरे में रुके थे पास ही बाथरूम के अंदर धीरे से ले गया। लेकिन हम सब जानते हैं कि बारात के अंदर दूल्हे पर निगाहें सब लोगों की टिकी होती है, विशेषकर महिलाएं दूल्हे की हर हरकत को नोट करती है और तरह तरह के कयास लगाती है। महिलाओं में आपस में खुसर फुसराहट से सारी जगह बात फैल गई कि दूल्हे पेशाब करने जा रहे हैं। देखिए थोड़ी देर बाद दूल्हा बाथरूम से हल्का सा गेट खुला और कुछ खुसफुसाहट की आवाज आई। साथ में जो नाई था उसने कान लगाकर बात की, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं पड़ी और दरवाजा फिर बंद हो गया। बाथरूम में लाइट जल रही थी, सभी लोगों की निगाहें उस बाथरूम की तरफ थी। लेकिन थोड़ी देर में फिर दरवाजा खुला और साथ में दूल्हे के जो नाई था वो एक बड़ी सी कैंची लेकर के और बाथरूम की तरफ लपका और कैंची लेकर के अंदर चला गया। जब दूल्हे के साथ नाई कैंची लेकर के बाथरूम में गया तो चारों तरफ हंसी के फुहारे छूट पड़े। औरतों में बड़ी खलबली और दूल्हे राजा अंदर गए हैं। खैर सबने ये पूछने की कोशिश की आखिर बात क्या हो गई जो कैंची लेकर के गए अंदर। लेकिन हमें जब थोड़ी देर बाद पता चला तो हमने पाया कि हमारे दूल्हे राजा एक आंख से बहंगे थे और अंदर बाथरूम में थोड़ा अंधेरा था, उन्होंने लाइट नहीं जलाई और अचकन का जो नाड़ा था उसको जोर से खींचा और नाड़े का दूसरा छोर खींचने के कारण से वो गांठ घुल गई और अचकन खुल नहीं पाई, तो कैंची से ये सारा काम हुआ। खैर बारात जैसे तैसे स्वागत द्वार पर पहुंच गई। सर्द रातों में रात के 10 बज चुके थे। सभी नेकचार के नाटकों से दूल्हे राजा को अंदर आने के लिए फीता काटने के लिए कहा गया। फीता काटने के लिए नेक की मांग हुई जो दूल्हे और दुल्हन के दोस्तों की छींटाकशी छिछोरेपन से 11 बजे तक सेट हो पाई और फीता काटा गया। इधर लड़की के पिताजी ने वरमाला से पूर्व खाना शुरू नहीं करने का कहा तो मेहमानों ने बारात आने से पहले ही अपने लिफाफे उपहार वधु व उसके परिजनों को देकर अपना कुछ काम हल्का कर लिया। 2,500 मेहमान वरमाला कक्ष में दोनों ही पक्षों को कोस रहे थे। कोई कह रहा था बारात जल्दी आनी चाहिए, सर्दी में वो कोई समय है भाई खाने का, छोटे बच्चे तो अपने माता पिता की गोदी में ही सो गए। कुछ कह रहे थे भाई बारात जब भी आगे कोई बात नहीं, बारात जब भी आए कोई बात नहीं, कम से कम खाना खाकर जाना चाहे ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जबरन वरमाला दिखाना अच्छी बात नहीं है। खाने के पंडाल के द्वार को कनात से बंद कर रखा था। जैसे ही वरमाला हुई रात के 11:30 बजे 2,500 आदमी एक साथ खाने के लिए इस कदर टूट पड़े जैसे कोई हमला हुआ है। धक्का मुक्की भगदड़ के साथ 5 मिनट में सारी प्लेटें गायब। लोग नई प्लेटें ढूंढ रहे थे, जैसे पुलिस चोर को जिनके पास प्लेटें हैं उन्होंने उसे खाने की चीजों से भर लिया, जैसे दोबारा खाना लेने का कभी नंबर आएगा ही नहीं। पति पत्नी बच्चे इधर उधर भीड़ में बिछड़ गए। काफी आवाजें जोर जोर से एक दूसरे को ढूंढ रही थी। देखते ही देखते पंडाल में सारा खाना खत्म हो गया। खाने का पंडाल एक जंग के मैदान जैसा लग रहा था। रास्ते में खाने की चीजें चम्मच प्लेटें बिखरी हुई खाने की चीजों को ढूंढती निगाहें, व्यवस्थापकों की सारी योजनाएं फेल। लड़की के माता पिता में चुनिंदा जिम्मेदार लोग कहीं अंडरग्राउंड हो गए। लेकिन बाराती एवं मेहमानों को सब्र की सीमा टूट चुकी थी। रात की 12 बजे तक रुकने के बाद गिफ्ट लिफाफा देने के बाद भी बिना खाना खाए वहां से जाने को वे जरा भी तैयार नहीं थे। खाने की पंडाल की चरमराई स्थिति एवं व्यवस्थापकों की वहां से नदारद होने का विश्वास सभी लोगों को हो गया। अब बाराती स्वयं जो भी जैसे भी मिल जाए कुछ खा लो और चलो की सोच के साथ खाना बनने की जगह जा धमके। खाने के मुख्य भंडार में लोग स्वतः मिठाई परोसने लगे। दही बड़े को डोंगे की जगह उन्होंने एक छबड़ी दही बड़े दही के ढोल में डाल दिए और थोक के भाव प्लेट भरने लगे। सब्जी के बड़े टोपले में लोगों ने अपनी थालियों से सब्जियां भर ली। सबसे अच्छा नजारा गर्म पूरी और प्लेट साफ करने वाली बाई के पास था। खूब लोगों ने इनके चारों तरफ घेर कर खड़े हो गए, अपने हाथ लंबे कर लिए। सबने अपने हाथ निकालकर प्लेट और पूरी की तरफ बढ़ाकर खड़े रहे। एक प्लेट को धुलते ही कई हाथ पकड़ लेते, छींटाकशी होने लगी, पूड़ियां सिक

0: ही कड़ाई से लोग सीधा निकालने लगे। खाने के समय सबको एक ही जुनून था, बस कैसे ही खाना खा लें। खाने की क्वालिटी स्वाद को सब भूल गए। खाना खाने के बाद सबको लग रहा था कि आज वे महाराजा नहीं मंगते थे। चुनाव में वोट डालने पर एक निशान लगाया जाता है, उसी तरह सभी बारातियों मेहमानों के कपड़ों पर आगे या पीछे सब सब्जी व दही के बड़े बड़े निशान लगे हुए थे। वास्तव में ये बात सही है कि बाराती बाराती होते हैं, उनका सम्मान होना चाहिए, लेकिन यह भी सही है अति सर्वत्र वर्जित तो कहीं कहीं व्यवस्था में कमियां या गलत निर्णय बारातियों के सपनों को धूमिल कर एक अपवाद एक यादगार बना देते हैं।
1: सारूप में अभी आप सुन रहे थे व्यंग्य वार्ता बात एक बारात की। वार्ताकार थे नीरज शर्मा।

सौरभ में अभी आप सुन रहे थे व्यंग्य वार्ता बात एक बारात की। वार्ताकार थे नीरज शर्मा।

जल ही जीवन है, जल है तो कल है, जल है तो हम हैं। जल की एक एक बूंद बचाइए, अपना भविष्य सुरक्षित कीजिए।

हरे भरे वृक्ष प्रकृति का श्रृंगार है। प्रकृति को हरा भरा रखे एक पेड़ अवश्य लगाएं। मानसून के इस मौसम में बरसते हुए बूंदों को सहेजिए और प्रकृति को हरा भरा बनाने का एक संकल्प लीजिए।

आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत की हमारी आज की कलाकार हैं सरिता गोस्वामी। आइए सुनते हैं इनकी गाई कुछ गजलें।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सरिता गोस्वामी की गाई कुछ गजलें। इसी के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स पर और FM 101.6 मेगा हर्ट्स पर सवेरे के 9 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी 3 देशों की यात्रा के अगले चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचेंगे। राज्य में ओबीसी की वास्तविक स्थिति और स्थानीय निकायों में उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी का आकलन करने के लिए आज से डिजिटल सर्वेक्षण किया जाएगा। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में प्रदेश में 33,969 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रह हुआ। ये पिछले वर्ष की तुलना में 12% अधिक। और जोधपुर की पारंपरिक मोजड़ी को GI टैग मिला। स्थानीय कारीगरों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान मिलेगी। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने 3 देशों की यात्रा के अगले चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचेंगे। इससे पहले उन्होंने आज ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों और राजनीतिक सहयोग को प्रगाढ़ करने पर व्यापक चर्चा हुई। इससे पहले श्री मोदी

0: मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कल मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर अचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है। हम अधीर है, बेसब्र है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, लेकिन हम जल्द से जल्द दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनना चाहते हैं।
0: राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की वास्तविक स्थिति और स्थानीय निकायों में उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी का आकलन करने के लिए आज से डिजिटल सर्वेक्षण शुरू हो रहा है। 23 जुलाई तक चलने वाले इस राज्यव्यापी सर्वेक्षण के दौरान ओबीसी परिवारों की सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और जनसांख्यिकी स्थिति का वास्तविक अध्ययन किया जाएगा। सर्वेक्षण के लिए राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने प्रदेश में लगभग 51,000 प्रगणक नियुक्त किए हैं। वहीं अजमेर में जिला स्तर पर करीब 82 और ब्लॉक स्तर पर 765 नोडल और सहायक नोडल अधिकारियों को सर्वे की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके लिए मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से सर्वे टीम और प्रगणकों को तकनीकी और प्रशासनिक प्रशिक्षण दिया जा चुका है। आयोग के सचिव अशोक कुमार जैन ने सभी ओबीसी परिवारों से सर्वेक्षण दल को सटीक और प्रमाणित जानकारी उपलब्ध कराने की अपील की है। राज्य सरकार की ओर से महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत बकाया बिलों का भुगतान जल्द सुनिश्चित किया जाएगा। वीबीजी रामजी आयुक्त पुष्पा सत्यानी ने सभी जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की बैठक लेकर इसके संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने सामग्री मद के लंबित सभी बिल भुगतान आगे भेजने के लिए कहा। आयुक्त ने ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिक नियोजन बढ़ाने, हर ग्राम पंचायत में कम से कम एक सामुदायिक काम शुरू करने और काम की मांग करने वाले प्रत्येक जॉब कार्डधारी परिवार को रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी विभागों और जिला प्रशासन को समयबद्ध कार्रवाई करने को कहा है। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से लागू इन नियमों तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पूरा पालन सुनिश्चित किया जाए। बैठक में स्रोत स्तर पर कचरे का पृथक्करण, घर घर कचरा संग्रहण, वैज्ञानिक प्रसंस्करण और निस्तारण, खुले में कचरा फेंकने और जलाने पर रोक तथा जन जागरूकता कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। पाली जिले के खेवांदी स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का नामकरण अमर शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषिराज सिंह देवड़ा के नाम पर किया गया है। उनके बलिदान दिवस पर आयोजित समारोह में इसकी घोषणा की गई। समारोह में पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल तथा राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने भाग लिया। समारोह में शहीद के परिजनों का सम्मान भी किया गया। इस अवसर पर आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान शिविर भी लगाया गया। गौरतलब है कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषिराज सिंह देवड़ा का फाइटर जेट पिछले वर्ष चूरू जिले के भाणुदा गांव में क्रैश हो गया था। इस हादसे में वो वीरगति को प्राप्त हुए थे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राज्य में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 33,969 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रह हुआ है। ये जानकारी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित राजस्व अर्जन से संबंधित विभागों की समीक्षा बैठक में दी गई। बैठक में बताया गया कि ये पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 11.54% अधिक है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राजस्व चोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और कर संग्रहण में तकनीक तथा नवाचारों का प्रभावी उपयोग करने के निर्देश दिए। उन्होंने वित्तीय वर्ष की पहली से अंतिम तिमाही तक राजस्व संग्रहण की गति

0: बनाए रखने को कहा। जोधपुर की पारंपरिक मोजड़ी को जीआई टैग मिल गया है। केंद्र सरकार की जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री ने यह प्रमाण पत्र जोधपुर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन और ग्राम विकास सेवा संस्थान को प्रदान किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि जोधपुर की मोजड़ी अपने पारंपरिक कारीगरी, हाथ से की जाने वाली बारीक कढ़ाई, टिकाऊपन और विशिष्ट डिजाइन के लिए देश विदेश में अपनी पहचान रखती है। जीआई टैग मिलने से स्थानीय कारीगरों को अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय बाजार में बेहतर पहचान और आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है।
1: करीब 200 वर्ष पुराने जोधपुरी मोजरी उद्योग का घरेलू बाजार वर्तमान में लगभग 100 करोड़ रुपए का है, जबकि करीब 10 करोड़ रुपए का निर्यात हो रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि जीआई टैग मिलने के बाद इसका निर्यात बढ़ेगा और अगले 2 साल में कारोबार दुगना हो सकता है। इसे जोधपुर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों परिवार लाभान्वित होंगे जो पीढ़ियों से मोजरी निर्माण से जुड़े हुए हैं। जीआई टैग मिलने से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान मिलेगी। इससे फर्जी उत्पादों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। कारीगरों और उत्पादकों को बेहतर कीमत मिलने के साथ ही पारंपरिक कला और शिल्प का सांस्कृतिक संरक्षण भी होगा। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: जयपुर स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मोबाइल की लत से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों का विशेष शोध करेगा। संस्थान लत से प्रभावित लोगों का चयन कर उनकी दिनचर्या, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का 6 महीने तक अध्ययन करेगा। रोग निदान विभाग के अध्यक्ष डॉ. सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि शोध का उद्देश्य मोबाइल की लत से होने वाली समस्याओं के लिए प्रभावी आयुर्वेदिक उपचार विकसित करना है।
2: और हमारे जो यूथ है वो भी मोबाइल का प्रति बहुत एडिक्शन ही हो रहा है बहुत से लोगों को, कि वो मोबाइल के बिना रह नहीं पा रहा, क्योंकि मोबाइल में जो कंटेंट जो है उस वो बहुत से कंटेंट ऐसे हैं जो उसको नहीं देखने चाहिए। बहुत से हिंसक कंटेंट हैं, बहुत से वल्गरिटी बढ़ाने वाले कंटेंट हैं। तो एक तो कंटेंट वाइज उस पर बच्चों पर ध्यान देना आवश्यक है, उनके पेरेंट्स को, कि बच्चा क्या देख रहा है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी 3 देशों की यात्रा के अगले चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचेंगे। राज्य में ओबीसी की वास्तविक स्थिति और स्थानीय निकायों में उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी का आकलन करने के लिए आज से डिजिटल सर्वेक्षण किया जाएगा। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में प्रदेश में 33,969 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रह हुआ। ये पिछले वर्ष की तुलना में 12% अधिक और जोधपुर की पारंपरिक मोजड़ी को जीआई टैग मिला। स्थानीय कारीगरों और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान मिलेगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोलामारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। सवेरे के 9:10 हुए हैं। समय है लोक संगीत का। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं वीरेंद्र शर्मा के गाए कुछ राजस्थानी लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत, कलाकार थे वीरेंद्र शर्मा। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस वक्त सुबह के 9:15 हो रहे हैं। अब आपको सुनवा रहे हैं गांधी चर्चा, खुराक के प्रयोग विषय पर बापू के विचार। स्वर है श्री प्रमोद कुमार शर्मा का, प्रस्तुति श्री अशोक विश्नोई की और संयोजन श्री अमित सिंह का। तो आइए सुनते हैं खुराक के प्रयोग विषय पर बापू के विचार

पूज्य बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से एक अंश जो कि खुराक के प्रयोगों के बारे में है। श्रोताओं, पूज्य बापू लिखते हैं, जैसे जैसे मैं जीवन की गहराई में उतरता गया, वैसे वैसे मुझे बाहर और भीतर के आचरण में फेरफार करने की जरूरत मालूम होती गई। जिस गति से रहन सहन और खर्च में फेरफार हुए, उसी गति से अथवा उससे भी अधिक वेग से मैंने खुराक में फेरफार करना शुरू कर दिया। मैंने देखा कि अन्नाहार विषयक अंग्रेजी पुस्तकों में लेखकों ने बहुत सूक्ष्मता से विचार किया था। उन्होंने धार्मिक, वैज्ञानिक, व्यवहारिक और वैदिक दृष्टि से अन्नाहार की छानबीन की थी। नैतिक दृष्टि से उन्होंने ये सोचा था कि मनुष्य को पशु पक्षियों पर जो प्रभुत्व प्राप्त हुआ है, वो उन्हें मारकर खाने के लिए नहीं बल्कि उनकी रक्षा के लिए है। अथवा जिस प्रकार मनुष्य एक दूसरे का उपयोग करते हैं पर एक दूसरे को खाते नहीं, उसी प्रकार पशु पक्षी भी उपयोग के लिए है, खाने के लिए नहीं। और उन्होंने देखा कि खाना भोग के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए ही है। इस कारण कईयों ने आहार में मांस का ही नहीं बल्कि अंडों और दूध का भी त्याग सुझाया और किया। विज्ञान की दृष्टि से मनुष्य की शरीर रचना को देखकर कई लोग इस परिणाम पर पहुंचे कि मनुष्य को भोजन पकाने की आवश्यकता ही नहीं है, वो वन पक्व फल ही खाने के लिए पैदा किया गया है। दूध उसे केवल माता का ही पीना चाहिए, दांत निकलने के बाद उसको चबा सकने योग्य खुराक ही लेनी चाहिए। वैदिक दृष्टि से उन्होंने मिर्च मसालों का त्याग सुझाया और व्यवहारिक अथवा आर्थिक दृष्टि से उन्होंने बताया कि कम से कम खर्च वाली खुराक अन्नाहार ही हो सकती है। मुझ पर इन चारों दृष्टियों का प्रभाव पड़ा और अन्नाहार देने वाले भोजन गृह में मैं चारों दृष्टि वाले व्यक्तियों से मिलने लगा। विलायत में इनका एक मंडल था और एक साप्ताहिक भी निकलता था। मैं साप्ताहिक का ग्राहक बना और मंडल का सदस्य। कुछ ही समय में मुझे उसकी कमेटी में ले लिया गया। यह मेरा परिचय ऐसे लोगों से हुआ जो अन्नाहारियों में स्तंभ रूप माने जाते थे। मैं प्रयोगों में व्यस्त हो गया। घर से मिठाई मसाले वगैरह जो मंगाए थे सो लेने बंद कर दिए और मन ने दूसरा मोड़ पकड़ा। इस कारण मसालों का प्रेम कम पड़ गया और जो सब्जी रिचमंड में मसाले के अभाव में बेस्वाद मालूम होती थी, वो अब सिर्फ उबली हुई स्वादिष्ट लगने लगी। ऐसे अनेक अनुभवों से मैंने ये सीखा कि स्वाद का सच्चा स्थान जीभ नहीं पर मन है। आर्थिक दृष्टि तो मेरे सामने थी ही। उन दिनों एक पंथ ऐसा था जो चाय कॉफी को हानिकारक मानता था और कोको का समर्थन करता था। मैं ये समझ चुका था कि केवल उन्हीं वस्तुओं का सेवन करना योग्य है जो शरीर व्यापार के लिए आवश्यक है। इस कारण मुख्यतः मैंने चाय और कॉफी का त्याग किया और कोको को अपनाया। भोजन गृह के दो विभाग थे। एक में जितने पदार्थ खाओ उतने पैसे देने होते थे। इसमें एक बार में शिलिंग दो शिलिंग का भी खर्च हो जाता था। इस विभाग में अच्छी स्थिति के लोग जाते थे। दूसरे विभाग में 6 पैनी से 3 पदार्थ और डबल रोटी का एक टुकड़ा मिलता था। जिन दिनों मैंने खूब किफायतशारी शुरू की थी, उन दिनों में मैं अक्सर 6 पैनी वाले विभाग में जाता था। ऊपर से प्रयोगों के साथ उपप्रयोग तो बहुत हुए। कभी स्टार्च वाला आहार छोड़ा, कभी सिर्फ डबल रोटी और फल पर ही रहा, कभी पनीर, दूध और अंडों का भी सेवन किया। ये आखिरी प्रयोग उल्लेखनीय है। ये 15 दिन में नहीं चला। स्टार्च रहित आहार का समर्थन करने वालों ने अंडों की खूब स्तुति की थी और ये सिद्ध किया था कि अंडे मांस नहीं है। ये तो स्पष्ट ही है कि अंडे खाने में किसी जीवित प्राणी को दुख नहीं पहुंचता। इस दलील के भुलावे में आकर मैंने माताजी के सम्मुख की प्रतिज्ञा के रहते भी अंडे खाए, पर मेरा मोह क्षणिक था। प्रतिज्ञा का नया अर्थ करने का मुझे अधिकार न था। अर्थ तो प्रतिज्ञा कराने वाले का ही माना जा सकता था। मांस न खाने वाली प्रतिज्ञा कराने वाली माता को अंडों का तो ख्याल ही नहीं हो सकता था। इसे मैं जानता था। इस कारण प्रतिज्ञा के रहस्य का बोध होते ही मैंने अंडे छोड़े और प्रयोग भी छोड़ा। ये एक सूक्ष्म रहस्य है और ध्यान में रखने योग्य है। विलायत में मैंने मांस की 3 व्याख्याएं पढ़ी थी। एक के अनुसार मांस का अर्थ पशु पक्षी का मांस था, अतः ये व्याख्याकार उसका त्याग करते थे, पर मछली खाते थे, अंडे तो खाते ही थे। दूसरी

व्याख्या के अनुसार साधारण मनुष्य जिसे जीव के रूप में जानता है उसका त्याग किया जाता था। इसके अनुसार मछली त्याज्य थी पर अंडे ग्राह्य थे। तीसरी व्याख्या में साधारणतया जितने भी जीव माने जाते हैं और उनसे उत्पन्न होने वाले पदार्थों के त्याग की बात थी। इस व्याख्या के अनुसार अंडों का और दूध का भी त्याग बंधनकारक था। यदि मैं इनमें से पहली व्याख्या को मानता तो मछली भी खा सकता था, तो मैं समझ गया था कि मेरे लिए तो माताजी की व्याख्या ही बंधनकारक है। अतएव यदि मुझे उनके सम्मुख ली गई प्रतिज्ञा का पालन करना हो तो अंडे खाने ही नहीं चाहिए। इस कारण मैंने अंडों का त्याग कर दिया। पर मेरे लिए ये बहुत कठिन हो गया, क्योंकि बारीकी से पूछताछ करने पर पता चला कि अन्नाहार वाले भोजन गृह में भी अंडों वाली बहुत सी चीजें बनती थी। तात्पर्य ये कि वहां भी भाग्यवश मुझे तब तक परोसने वालों से पूछताछ करनी पड़ी थी जब तक कि मैं अच्छा जानकार न हो गया, क्योंकि कई तरह के पुडिंग में और कई तरह की केक में तो अंडे होते ही थे। इस कारण एक तरह से तो मैं जंजाल से छूटा, क्योंकि थोड़ी और बिल्कुल सादी चीजें ही ले सकता था। दूसरी तरफ थोड़ा आघात भी लगा, क्योंकि जीभ से लगी हुई कई चीजों का मुझे त्याग करना पड़ा था, पर वो आघात क्षणिक था। प्रतिज्ञा पालन का स्वच्छ सूक्ष्म और स्थायी स्वाद उस क्षणिक स्वाद की तुलना में मुझे अधिक प्रिय लगा। श्रोताओं, ये थे पूज्य बापू के खुराक के प्रयोग पर विचार, और आइए सुनते हैं एक भक्ति गीत।

गांधी चर्चा में अभी आप सुन रहे थे खुराक के प्रयोग विषय पर बापू के विचार। वाचक स्वर श्री प्रमोद कुमार शर्मा का था, प्रस्तुति श्री अशोक कुमार की और संयोजन था श्री अमित सिंह का। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। सवेरे के 9:30 हो रहे हैं। अब सुनिए एनसीईआरटी का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
0: और मैं हूं अजीत। नमस्कार। कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: माँ पिता भगवान का वो अनमोल उपहार हैं जिनका प्रेम और आशीर्वाद जीवन को हर कठिनाई से पार करा देता है।
0: बहुत बहुत सुंदर विचार, इसके लिए आपका धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी का। लिखते हैं,
2: विमलेश जी, अजीत जी नमस्कार, जय जोहार। 18 तारीख को चिड़िया की बच्ची कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। अच्छी प्रस्तुति के लिए NCERT उमंग के साथ विमलेश जी और अजीत जी को बहुत बहुत बधाई।

0: पेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश कुमार और नियति कुमारी।
1: मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर।
0: और गांव बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से अमन वर्मा, रमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा, डॉक्टर मदन लाल वर्मा और वर्मा परिवार के सभी सदस्य।
1: और कुतुबपुर तहसील हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा।
0: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों को भेजने के लिए। और आइए एक बार फिर से चलते हैं हमारी आपकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में कुछ और नई और रोचक जानकारियों के साथ।
1: श्रोताओं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पेड़ों की। जैसा कि हमने इस सप्ताह की पहली कड़ी में सुना था, पेड़ सिर्फ पेड़ ही नहीं, वे इस धरती के सबसे प्राचीन जीव हैं। उनके आने के बाद ही दूसरा जीव जगत शुरू हो सका, क्योंकि वे वर्षा, भोजन, औषधि और श्वसन के मुख्य स्रोत हैं।
0: श्रोताओं, क्या आप जानना चाहेंगे कि पेड़ों की उत्पत्ति कैसे हुई? तो चलिए आपको बताते हैं।
1: पेड़ों की उत्पत्ति पृथ्वी के इतिहास की सबसे अद्भुत घटनाओं में से एक है। कहते हैं लगभग 4 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर पेड़ नहीं थे, केवल सूक्ष्म जीव थे। कालांतर में समुद्रों में शैवाल जैसे जीव विकसित हुए जो तैरते थे और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते थे।
0: धीरे धीरे ये शैवाल जैसे जीव समुद्र से निकलकर भूमि पर आए। इन्हीं से प्रथम स्थलीय पौधों का विकास हुआ।
1: प्रश्न ये है कि इन पौधों ने क्यों बढ़ना शुरू किया। इसका कारण ये था कि जीने के लिए वे अधिक सूर्य का प्रकाश पा सकें और दूसरे पौधों से प्रतिस्पर्धा कर सकें। इसी क्रम में ये पौधे बढ़ते बढ़ते पेड़ बन गए। ध्यान दें तो इस प्रक्रिया में विकासवाद का सिद्धांत काम करता है, यानी सफलतम ही टिका रहता है।
0: तो श्रोताओ, ये थी पेड़ों की उत्पत्ति की वैज्ञानिक कथा। अब जरा ध्यान दें, गर्मी का मौसम है, राह चलते चलते जब बहुत गर्मी लगती है तो आप किसी पेड़ की छाया में शरण लेते हैं
1: जी।
0: क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ठीक उस समय जब आप उसकी छाया का आनंद ले रहे होते हैं, उस समय वो पेड़ क्या क्या कर रहा होता है?
1: ध्यान से सुनिए मित्रों, उस समय वो हवा को ठंडा कर रहा होता है, क्योंकि वो वाष्पोत्सर्जन द्वारा एक प्रकार से प्राकृतिक एसी की तरह काम कर रहा होता है।
0: श्रोताओं, ठीक उस समय वो हमें ऑक्सीजन दे रहा होता है और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को अवशोषित कर रहा होता है जो हमारे लिए हानिकारक है।
1: उस समय वो शोर को कम कर रहा होता है, क्योंकि पत्तियां और शाखाएं प्रदूषित वायु को ही नहीं शोर को भी अवशोषित करती हैं। तभी तो कहते हैं पेड़ों के नीचे या जंगलों में एक शांति का आभास होता है।
0: श्रोताओं, एक बात और, ठीक उस समय वो पेड़ वर्षा और जल संरक्षण में योगदान दे रहा होता है, जिससे भविष्य में हमें भूजल और वर्षा का जल लगातार मिलता रहे।
1: उस समय वो हजारों कीटों, कवकों, पक्षियों और जीवों को आश्रय देकर प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में मदद कर रहा होता है।
0: सचमुच श्रोताओं, एक पेड़ हमारे और दूसरों के लिए मौन रहकर भी इतनी सेवा कर रहा होता है। वह बेशक मौन है, लेकिन मानो कहता है मैं तुम्हारे लिए हवा को शुद्ध कर रहा हूँ, धरती को ठंडा करके जलवायु परिवर्तन की गति को यथासंभव रोक रहा हूँ,
1: स्वयं धूप सहकर तुम्हें छाया दे रहा हूँ, वर्षा लाने में सहायता कर रहा हूँ, मिट्टी के कटाव को रोक रहा हूँ। बदले में मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे और अन्य पेड़ों को जीवित रहने दो। हम सभी पेड़ धरती के फेफड़े हैं।
0: जी हाँ श्रोताओ, अब जब किसी पेड़ को देखें तो इन बातों को जरूर स्मरण कीजिएगा। पेड़ वास्तव में हमारे लिए प्रकृति के मौन लेकिन सबसे बहुमूल्य उपहार हैं।
1: तो ये थी पेड़ों के बारे में हमारी रोचक जानकारी इस सप्ताह की श्रृंखला में। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
0: जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो उस समय वो क्या क्या कर रहा होता है? कोई 2 या 3 कारण बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो उस समय क्या क्या कर रहा होता है? कोई 2 या 3 कारण बताइए।
0: 8800440559 पर जो हमारा IVRS नंबर है और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम जो एक गीत के रूप में देश को समर्पित है। शीर्षक है प्यारा भारत।
1: ये कक्षा 3 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक सितार की एक नज्म पर आधारित है। श्रोताओं, ये खूबसूरत नज्म आपको ले जाएगी भारत के गगनचुंबी पर्वतों, कलकल करती नदियों, लहलहाती फसलों के मैदानों, घाटियों और फलों के बगीचों में।
0: तो आइए करते हैं भारत भ्रमण इस नज्म के साथ। शीर्षक है भारत प्यारा।

0: अभी आप सुन रहे थे गीत भारत प्यारा।
1: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मौर्यकालीन पाटलिपुत्र।
0: इस कार्यक्रम में मौर्य साम्राज्य के महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बारे में विस्तार से बताया गया है। विशेषकर ये उल्लेख किया गया है कि उनके शासनकाल में जनतांत्रिक मूल्य कितने ऊंचे थे, खुफिया व्यवस्था कैसी थी और चीन के यात्रियों ने उनकी कीर्ति की कैसी प्रशंसा की।

मेरा नाम है पाटलिपुत्र। अब लोग मुझे बिहार प्रदेश की राजधानी पटना के नाम से जानते हैं। मेरा इतिहास बहुत पुराना है। इस बात को 2000 वर्ष से भी अधिक बीत चुके हैं जब एक छोटा सा गांव था मैं। नाम था पाटली। यहां वहां कुछ खेत, कुछ झोपड़ियां, पास में कल कल करती गंगा की निर्मल धारा। एक घाट था गंगा पार जाने के लिए। वहां एक दो नौकाएं खड़ी रहती। उसी घाट से महात्मा बुद्ध ने नदी पार की थी वैशाली जाने के लिए।

0: महात्मा बुद्ध का नाम मशहूर हो रहा था।
1: उन दिनों मगध पर मौर्यों का राज्य था, जो बिहार के पटना और गया जिलों में फैला हुआ था। मगध की सीमाओं को बढ़ाया बिंबिसार ने। एक बार वहां भयानक आग लग गई। इसके बाद बिंबिसार ने पास ही में नई राजधानी

0: राजा बिंबिसार के बाद मगध के सिंहासन पर बैठा अजात शत्रु। महात्मा बुद्ध के सम्मान में अजात शत्रु ने घोषणा करवाई,
1: सुने सुने सुने, सभी ग्रामवासी सुने, सम्राट अजात शत्रु ने महात्मा बुद्ध के सम्मान में ये घोषणा की है कि आज से पाटली दुर्ग का मुख्य द्वार गौतम द्वार और गंगा नदी का घाट गौतम घाट कहलाएगा।
2: सुने, सुने, सुने, सुने, सुने, सुने, सुने, सुने, सुने।

0: महात्मा बुद्ध के सम्मान में अजात शत्रु ने घोषणा करवाई।
1: सुने सुने सुने, सभी ग्रामवासी सुने, सम्राट अजात शत्रु ने महात्मा बुद्ध के सम्मान में ये घोषणा की है कि आज से पाटली दुर्ग का मुख्य द्वार, गौतम द्वार और गंगा नदी का घाट गौतम घाट कहलाएगा।
2: सुने, सुने, सुने, सुने, सुने, सुने, सुने, सुने, सुने।

महात्मा बुद्ध ने पाटली के विषय में भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में पाटली एक प्रमुख नगर और व्यापार का बड़ा केंद्र बन जाएगा।

जब बुद्ध पाटलीग्राम आए थे तो वे 79 वर्ष के थे। इसके एक वर्ष बाद ही कुशीनगर में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया।

0: अजात शत्रु ने वैशाली को जीत लिया। उसके बाद पाटली दुर्ग का महत्व और भी बढ़ गया।
1: अजात शत्रु के बाद राजा बना उसका पुत्र उदयभद्र। उदयभद्र अपने पिता अजात शत्रु की तरह विजेता तो न था, पर उसे नए नए राजमहल बनवाने का शौक था। उदयभद्र ने ही मुझे मगध की राजधानी बनाया।

0: वो 16 वर्षों तक मगध का राजा बना रहा।
1: समय बदला, मगध का सिंहासन महापद्म नंद के पास चला गया। इसी ने नंद वंश चलाया था।
0: पर मैं खुश नहीं था। मैं एक बड़ा नगर जरूर बन गया था। मेरा नाम दूर दूर तक मशहूर हो गया था, लेकिन मगध की जनता दुखी थी। महापद्म नंद के अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे।

0: भागो भागो जाओगे अरे भागो अरे अरे सिपाही आ गए अरे अरे बाहर जाओ भागो भागो भागो छुप जाओ
1: अरे मैंने कुछ नहीं किया
2: महापद्म नंद के बाद मगध का राजा बना धननंद। बड़ी सेना अपार धन संपत्ति थी उसके पास, मगर था वो बहुत ही घमंडी। धननंद ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी जो उसके पतन का कारण बनी। उसने तक्षशिला के प्रसिद्ध आचार्य कौटिल्य का भरे दरबार में अपमान कर दिया। अपमानित कौटिल्य ने प्रतिज्ञा की

0: वादा करता हूँ कि तेरा सर्वनाश करूंगा, सर्वनाश।
1: और अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को चुना। मौर्य कुल का वो वीर युवक अपना देश छोड़कर भटक रहा था। कौटिल्य ने उसे तक्षशिला में शिक्षा दी।
2: और उधर भारत से बहुत दूर मैसिडोनिया में साहसी सिकंदर अपने पिता फिलिप के बाद राजा बना था। समय था ईसा से 336 वर्ष पूर्व। सिकंदर का सपना था विश्व विजेता बनने का। उसकी आंधी सारी दुनिया पर छा जाने के लिए उमड़ने लगी।
3: सिकंदर
4: बढ़े चलो।

सिकंदर बढ़ता गया, उसकी आंधी बढ़ती गई। 11 वर्षों में हर तरफ अपनी जीत के डंके बजाता हुआ सिकंदर भारत की सीमा पर आ खड़ा हुआ। छोटे छोटे राज्यों में बटा था तब का भारत। लोग वीर थे लेकिन आपस में लड़ते रहते थे। अभिसार के राजकुमार आम्भी ने सिकंदर का स्वागत किया, लेकिन राजा पुरु ने सिकंदर का डट कर मुकाबला किया।

उरु की पराजय हुई। सिकंदर जीत तो गया, परंतु अब उसके सैनिक थक गए थे। उनका मनोबल गिरता जा रहा था। उन्हें कदम कदम पर कड़ी टक्कर मिल रही थी। आगे बढ़ने की हिम्मत खत्म हो रही थी।

0: गजब हो गया। सेना आगे बढ़ने से मना कर रही है वीर से गद्दार।
1: क्या आगे बढ़ने से मना कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मैसिडोनिया का विश्व विजयी बनने का सपना चूर चूर हो जाएगा?
2: वीर सिकंदर, आप स्वयं सैनिकों से बात क्यों नहीं करते?
1: मैं ऐसा ही करूंगा। जाओ, सारे सैनिकों को एक जगह इकट्ठा करो। ये सिकंदर का आदेश है।
3: जी सम्राट, ऐसा ही होगा।
2: ऐसा ही होगा।
3: ऐसा ही होगा।
1: मेरे वीर सैनिकों, क्या मैंने ठीक सुना है कि मैसिडोनिया की बहादुर सेना ने अब आगे बढ़ने से इनकार कर दिया है और वो वापस लौटना चाहती है? मैं पूछता हूं, ऐसा क्यों? जिस काम के लिए हमने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा, जिस काम में हमने अपने बहादुर साथियों की जान की बाजी तक लगा दी, आज उसी काम से तुम सब भागना चाहते हो? याद है तुम्हें, हमारी आंधी के सामने बड़े बड़े सम्राट तक उखड़ गए और आज चारों ओर सिकंदर का डंका बज रहा है। चुप क्यों हो? मुझे जवाब चाहिए। क्या हमारी तलवारों की धार खत्म हो गई है? क्या हमारी भुजाएं खोखली हो गई है? ये व्यास नदी देख रहे हो ना, इस नदी को पार करते ही
3: हम वापस लौटना चाहते हैं।
1: सुनो मेरे वीरों, व्यास नदी को पार करते ही

0: हमें दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिलेगा। हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हम लड़ सकते हैं।
1: मैसिडोनिया चलो,
0: वापस
1: चलो
0: सम्राट, मैसिडोनिया चलो। सुनो मेरे वीरों, सुनो मेरे वीरों,
2: सबर करो साथियों। अरे कुछ तो सबर करो साथियों, जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो आगे क्यों ना बढ़ा जाए। अगर मैसिडोनिया वापस चले भी गए तो लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? हम सम्राट की बात नहीं कर सकते।
3: शाबाश मेरे वीरों, मुझे तुमसे यही आशा थी।

0: पकड़ो दोस्तों को, भाग ना पाए, पकड़ो पकड़ो इन्हें।
1: तुम सब सैनिकों के घेरे में हो। इस निर्जन खंडहर में आधी रात को क्या षड्यंत्र हो रहा था हम जान चुके हैं।
2: महाराज चंद्रगुप्त आप?
1: हाँ
3: महाराज, देखिए आचार्य कौटिल्य भी आ रहे हैं।
1: आचार्य प्रणाम, आप इस वक्त यहाँ?
4: आश्चर्य न करो चंद्र, मगध को असंख्य नेत्रों वाली गुप्तचर व्यवस्था चाहिए, मैं सावधान हूँ।
1: धन्य हो आचार्य, मौर्य साम्राज्य को आपकी बहुत आवश्यकता है।
5: धन्य हो आचार्य, धन्य हो आचार्य,
6: धन्य हो
5: आचार्य,
6: धन्य हो।
7: मगध सुखी था, चंद्रगुप्त प्रजा की भलाई करने वाला न्यायप्रिय शासक था, मगर एक बार फिर संकट सिकंदर के सेनापति निकेटर सेल्यूकस के रूप में बढ़ा आ रहा था।

0: सेल्यूकस भारत को जीतने का सपना लेकर आ रहा था, लेकिन अब भारत बदल चुका था। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को बुरी तरह पराजित किया।
1: बेचारा सेल्यूकस भारत को जीतने आया था, पर उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। मेगस्थनीस सेल्यूकस का राजदूत बनकर आया था। वो 4 वर्ष तक दरबार में रहा।

0: समय बदला। चंद्रगुप्त के शासन के 25 वर्ष बाद बिंदुसार राजा बना और फिर बारी आई उसके मझले बेटे अशोक मौर्य की। अशोक बहुत वीर था। उसने उज्जैनी और तक्षशिला के विद्रोह को सफलतापूर्वक शांत कर दिया और फिर हुआ कलिंग युद्ध।
1: ये क्या कर डाला मैंने, इतना रक्तपात सिर्फ विजय प्राप्त करने के लिए? नहीं नहीं, आगे ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अशोक मौर्य प्रतिज्ञा करता हूं, कभी युद्ध नहीं करूंगा। अब कभी युद्ध नहीं करूंगा। हाँ, अब कभी युद्ध नहीं करूंगा।
0: कलिंग ने अशोक का जीवन बदल डाला। उसकी रुचि अहिंसा में, बौद्ध धर्म में हो गई।

उसने बौद्ध विहार बनवाए, शिलालेख खुदवाए। अगर अशोक का स्तंभ लेख न होता तो हम कभी न जान पाते कि बुद्ध का जन्म कहां हुआ था। तभी श्रीलंका के राजा तिस का मैत्री संदेश आया तो अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। इसी तरह बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा एशिया के और हिस्सों में भी हुआ। अशोक के बाद मौर्य वंश सशक्त नेतृत्व के अभाव में बिखरता चला गया। सम्राट आए, सम्राट गए, किसी को ऐश्वर्य मिला, किसी की सत्ता छीनी, पर मैं वहीं का वहीं खड़ा हूं। समय के बहाव को देखते हुए और भारत की गोद में अपना स्थान बनाए हुए,

0: मौर्यकालीन पाटलिपुत्र, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और श्रोताओं इसी कार्यक्रम के साथ अब हम अपने कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। श्रोताओं, समय मिलाना चाहें तो स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त सुबह के ठीक 10 बज रहे हैं। पेश है फिल्म संगीत। प्रोग्राम का पहला गीत, जिसे लिखा है विराग मिश्रा ने, संगीत विराग मिश्रा का और फिल्म का नाम है तन्नू वेट्स मनु। गीत को स्वर दिया है लिहम्बर हुसैन पुरी ने।

पलक शाबिर की आवाज में अभी आपने सुना फिल्म सनम रे का ये गीत। गीत को लिखा था मनोज मंतशिर ने और संगीत था अमाल मलिक का। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं। लीजिए कार्यक्रम में अब सुनिए मनोज यादव के लिखे गीत को। संगीत दिया है अमाल मलिक ने। गीत को गाया है अमाल मलिक, अरमान मलिक और पलक मुचाल ने। फिल्म का नाम है सनम रे।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में अब सुनिए अल्तमश फरीदी की आवाज में फिल्म दो लफ्जों की कहानी। गीत को लिखा है संदीप नाथ ने और संगीत बाबली हक का।

0: और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं। लीजिए कार्यक्रम में आप सुनिए तुलसी कुमार की आवाज में

फिल्म रेडी का ये गीत। गीत को लिखा है नीलेश मिश्रा ने, संगीत गुलशन कुमार का।

शब्बीर अहमद के लिखे गीत को संगीत दिया था कनिका कपूर ने, फिल्म थी बाजार और गीत को गाया था अरिजीत सिंह ने। प्रोग्राम का अगला गीत जिसे गाया है तुलसी कुमार ने, गीत को लिखा है मनोज मुंतशिर ने और संगीत तनिष्क बागची का, फिल्म का नाम है बादशाह हूं।

अल्तमश फरीदी की आवाज़ में ये गीत अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था दो लफ्ज़ों की कहानी, बोल थे संदीप नाथ के और संगीत था बबली हक का। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओ, हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 11 बजे हैं। लीजिए, अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत एक नए अंदाज में, जिसमें आप सुनेंगे भूले बिसरे गीत।

मुकेश की आवाज़ में ये गीत अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था मेरा नाम जोकर। बोल थे शैलेंद्र के और संगीत था शंकर जयकिशन का। लीजिए अगला गीत सुनेगा लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म ज्वेल थीफ से। इस गीत के बोल लिखे हैं शैलेंद्र ने और संगीत है SD बर्मन का।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत अभी आपने सुना फिल्म गाइड से, बोल थे शैलेंद्र के, संगीत था एस डी बर्मन का। लीजिए अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बाजार से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने, बोल है मीर ताकिर मीर के और संगीत है खयाम का।

जो सड़कने लगा, रुख से पर्दा जरा जो

महबूब की मेहंदी से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज थी मोहम्मद रफी साहब की, बोल थे आनंद बख्शी के और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। लीजिए मोहम्मद रफी की आवाज में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं बंबई का बाबू से। मोहम्मद रफी का साथ दिया है आशा भोसले और साथियों ने, बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी साहब ने और संगीत है SD बर्मन जी का।

फिल्म छलिया से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। बोल थे लता मंगेशकर के और संगीत था कल्याण जी आनंद जी का। लीजिए अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में। फिल्म का नाम है सरगम। गीत के बोल हैं पीएल संतोषी के और संगीत है सी रामचंद्र का।

गुन से ये गीत अभी आपने सुना गीता रॉय की आवाज़ में। संगीत था बुलो सी रानी का। लीजिए अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बात एक रात की से। गीत के बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत है एसडी बर्मन का और गीत को आवाज़ दी है हेमंत कुमार ने।

फिल्मजाल से ये गीत अभी आप सुन रहे थे हेमंत कुमार की आवाज़ में। बोल थे साहिर लुधियानवी के और संगीत था SD बर्मन का। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म साहब बीबी और गुलाम से। इस गीत को गाया है गीता दत्त ने। बोल हैं शकील बदायूनी के।

0: मोहब्बत के इस फसाने में हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने।
1: इस्माइल आजाद कव्वाल की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था अल हिलाल। लीजिए फिल्म संगीत में आखिरी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह की आवाज में। फिल्म का नाम है साथ साथ। गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और संगीत है कुलदीप सिंह का।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल आप सुन रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अपराह्न के 12 बजने को हैं। लीजिए अब सुनिएगा हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की अपनी ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न कर ली है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भी दोनों देशों ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। भारत को ऑस्ट्रेलिया से दीर्घकालिक यूरेनियम आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को अंतिम रूप दिया गया। यात्रा का सबसे प्रभावशाली जनसंपर्क कार्यक्रम मेलबर्न के मावल स्टेडियम में आयोजित मेलबर्न मीट्स मोदी प्रवासी भारतीय सम्मेलन रहा, जिसमें लगभग 25,000 लोग उपस्थित थे। प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग 10 लाख भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई लोगों को दोनों देशों के बीच जीवंत सेतु बताया।
2: भारत ऑस्ट्रेलिया मैच का रोमांच और दूसरा यह एहसास कि दोनों देशों में क्रिकेट केवल एक खेल नहीं लेकिन एक साझा जुनून है। लेकिन आज यहाँ कोई लास्ट ओवर फिनिश का प्रेशर नहीं है, आज यहाँ केवल खेल की खुशी है, हमारी मित्रता की गर्मजोशी है और फ्यूचर चैंपियंस की एनर्जी है।
1: प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भी भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये बहु सांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। प्रधानमंत्री तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का आकलन करके प्रवर्तन में सुधार के उपायों की पहचान कर देश के सीमा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना था। इस अवसर पर गृहमंत्री ने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है।
3: विगत 12 साल में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ सीमा सुरक्षा के लिए काम हुआ है।

0: सबसे पहले बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर राजस्व खर्च होना, इसकी प्रायोरिटी चिन्हित करना और चिन्हित प्रायोरिटी पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना। हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो 2013 का बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और आज के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में 400% का परिवर्तन है। बॉर्डर सुरक्षा की पहली जो रिक्वायरमेंट थी, बॉर्डर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, इसको सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से किया है।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। हालांकि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जिन्हें विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज बढ़त का रुख है। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 803 अंक बढ़कर 77,545 जबकि निफ्टी 243 अंक की बढ़त के साथ 24,205 पर पहुंच गया। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान में मेजबान इंग्लैंड के साथ ऐतिहासिक एक दिवसीय टेस्ट मैच खेलेगी। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे से शुरू होगा। ये पहली बार है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोल हमारो चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 12:05 हो चुके हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम और उनका विवरण।

हमारे जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से उर्दू कार्यक्रम गुलिस्तां सुनना न भूलिएगा रात्रि 10 बजे और इसी केंद्र से शाम 6:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम जिले की चिट्ठी।

अब से कुछ ही देर में यानी 12:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत हमारे आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से और इसी केंद्र से। आगे आप सुनेंगे दोपहर 12:40 पर फिल्म संगीत और 1:05 पर बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम महिला जगत। आज इस कार्यक्रम में चर्चा रहेगी साहित्य में महिलाओं का योगदान, पीसीओएस की समस्या और लाइफस्टाइल, कपड़ों में ब्लॉक प्रिंटिंग और कसीदाकारी, बच्चों में मोटापा रोकने के सहज उपाय। वहीं कार्यक्रम में होगी एक वार्ता जिसका विषय रहेगा पर्यावरण संरक्षण और महिलाओं का योगदान। वार्ताकार होंगी श्रीमती मीना सैनी। आज का यह कार्यक्रम आपके लिए प्रस्तुत करेंगी अन्विति गोस्वामी और डॉक्टर शर्मिला। 2:30 पर सुनना न भूलेगा फिल्म संगीत और शाम 5:05 पर हमारे युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी। इस कार्यक्रम में आज की बात में चर्चा रहेगी सोशल मीडिया की मित्रता के मायने, लघु जानकारी के विषय रहेंगे रॉकी पर्वत, ट्रेंड्स के बजाय अपनी जरूरत पहचाने, खुद को दें अहमियत, राजस्थान के

और साथ ही कार्यक्रम में सुना न भूलिएगा एक वार्ता जिसका विषय रहेगा कृत्रिम बुद्धिमत्ता यात्रा वर्तमान और भविष्य। वार्ताकार रहेंगे श्री भूपेश धनेवा, प्रस्तुति श्री रेवंत रामलेखा, संयोजन श्री अमित सिंह का रहेगा। शाम 6:05 पर सुनेगा फिल्म संगीत। शाम 7 हमारे ग्रामीण भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्रामीण जगत। आज इस कार्यक्रम में चर्चा रहेगी ग्रीष्मकालीन कुष्मांड कुल की सब्जियों के बारे में, हरे चारे को सुखाकर संग्रह करने की विधियां, समग्र ग्रामीण विकास के लिए केंद्र सरकार की योजनाएं और पशुओं की मांगनी है उत्तम कार्बनिक खादें। सुगम संगीत का रहेगा समय 7:45 से और वहीं फिल्म संगीत आप सुनेंगे रात्रि 8 से। 8:30 पर सुनना न भूलेगा लोक संगीत और 9:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 9:30 पर हमारे केंद्र से आप सुनेंगे स्थानीय नाटक इंद्रलोक, लेखक होंगे श्री भागीरथ रेवाड़। 10:30 पर सुनना न भूलेगा शास्त्रीय संगीत श्री वीजी जोग के साथ, वायलिन पर राग दुर्गा और तबला संगत रहेगी श्री अरुण घोषाल की। श्रोताओं, ये थे हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम और उनका विवरण। आप आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मालू चैनल सुन रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 12:10 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत में ये पहली पेशकश स्वाति नाटेकर की आवाज में।

सोनाली राठौर की आवाज में ये सुगम संगीत अभी आप सुन रहे थे। लीजिए हमारी अगली पेशकश है सरिता गोस्वामी की आवाज में।

ये सुगम संगीत आप सुन रहे थे सीमा अनिल सहगल की आवाज में। लीजिए अगला सुगम संगीत हम आपको सुनवा रहे हैं।

आप सुन रहे थे सुगम संगीत। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो के करीब है, ठीक 12:40 हुए हैं। लीजिए, अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का आगाज आज हम कर रहे हैं इस गीत से, जिसको गाया है जुबीन ने। फिल्म का नाम है आशाएं। गीत के बोल लिखे हैं मीर अली हुसैन ने और संगीत है सलीम सुलेमान का।

गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म बंजारे से, क्षमा कीजिएगा, ये गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म फुगली से। इस गीत को गाया था योयो हनी सिंह ने, बोल और संगीत भी योयो हनी सिंह का था। लीजिए अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की आवाजों में, फिल्म का नाम है हैप्पी न्यू ईयर। गीत के बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने और संगीत है विशाल शेखर का।

ये गीत अभी आप सुन रहे थे अशफक अमानत अली खां की आवाज में। फिल्म का नाम था कभी अलविदा ना कहना। साथ दिया था शंकर महादेवन और कैरलीसा ने। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, दोपहर के ठीक एक बजने को है, लीजिए अब सुनिएगा हमारे जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

विभिन्न संस्थाएं अपनी तकनीकी जानकारी और अनुभव के आधार पर विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग करेंगी। इसके तहत प्राकृतिक और जैविक खेती, जल संरक्षण, आधुनिक कृषि तकनीकों के उपयोग, किसान प्रशिक्षण, डिजिटल कृषि और कृषि आधारित उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे किसानों तक योजनाओं का लाभ अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचेगा और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा मिलेगा। राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग की वास्तविक स्थिति और स्थानीय निकायों में उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी का आकलन करने के लिए आज से डिजिटल सर्वेक्षण किया जा रहा है। 23 जुलाई तक चलने वाले इस राज्य व्यापी सर्वेक्षण के दौरान ओबीसी परिवारों की सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और जनसांख्यिकी स्थिति का वास्तविक अध्ययन किया जाएगा। सर्वेक्षण के लिए राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने प्रदेश में लगभग 51,000 प्रगणक नियुक्त किए हैं। इसके लिए मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से सर्वे टीम और प्रगणकों को तकनीकी और प्रशासनिक प्रशिक्षण दिया जा चुका है। राजस्थान समान नागरिक संहिता 2026 यूसीसी के प्रारूप पर आम जन के सुझाव लेने के लिए विभिन्न स्तरों पर जनसुनवाई की जा रही है। इन जनसुनवाइयों के माध्यम से विभिन्न वर्गों से यूसीसी पर सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं। इसी कड़ी में आज जयपुर जिला कलेक्ट्रेट में जयपुर संभाग स्तरीय जनसुनवाई की शुरुआत हुई। 2 दिन की इस जनसुनवाई में पहले दिन विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों और अधिवक्ताओं से सुझाव मांगे जा रहे हैं। वहीं कल आमजन अपने सुझाव प्रस्तुत करेंगे। उधर भरतपुर में भी संभाग स्तरीय जनसुनवाई आयोजित हो रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो रही इस बैठक में भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर और डीग जिलों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। प्रदेश में मॉनसून की रफ्तार कुछ धीमी पड़ी है। हालांकि पिछले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात हुई। सबसे अधिक 56 मिलीमीटर बारिश अजमेर जिले के केकड़ी में रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा बारां के अंता, अलवर के बनसूर तथा चूरू के तारानगर रेणी क्षेत्र में भी अच्छी बरसात हुई। मौसम विभाग ने आज उत्तर पूर्वी भागों में छुटपुट स्थानों पर बरसात की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार मानसून के कमजोर पड़ने से राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले एक सप्ताह तक ज्यादातर स्थानों पर मौसम के शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज तमिलनाडु के कोयंबटूर में मानव वन्य जीव संघर्ष उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला भी रखी गई है। कार्यशाला को संबोधित करते हुए श्री यादव ने कहा कि मानव वन्य जीव संघर्ष देश के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है और इसके समाधान के लिए आधुनिक तकनीक तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि

नया केंद्र अनुसंधान नवाचार क्षमता निर्माण और नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि लगातार दूसरी बार स्वच्छ ऊर्जा ने देश की 50% से अधिक बिजली की मांग पूरी की है। सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री जोशी ने बताया कि 6 जुलाई को नवीकरणीय स्रोतों से 50.2% बिजली आपूर्ति हुई। उन्होंने इसे भारत के स्वच्छ ऊर्जा इकोसिस्टम की बढ़ती मजबूती और विश्वसनीयता का प्रमाण बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 1:05 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है महिलाओं का कार्यक्रम महिला जगत। आज का ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आई है श्रीमती अन्विती गोस्वामी और डॉक्टर शर्मिला।

0: महिला जगत सुनने वाली सभी सखियों का स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ हैं मैं हूं डॉक्टर शर्मिला
1: और मैं अनविति गोस्वामी।
0: तो कीजिए स्वीकार हमारा स्नेह भरा नमस्कार।
1: शर्मिला, रोज की भागदौड़ के बाद जो फुर्सत के पल हमें मिलते हैं ना कार्यक्रम के माध्यम से, और जब हम खुद से मिलने का मौका पाते हैं, हमको समझने का मौका मिलता है, हमें खुद को व्यक्त करने का मौका मिलता है, तो ये जो पल है ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं।
0: बिल्कुल अनविति, वैसे तो जिंदगी की भागदौड़ में फुर्सत के पल बहुत कम मिलते हैं, पर ऐसे पल जब भी मिले ना तो हमें अपने शौक जरूर पूरे कर लेने चाहिए। जैसे हमारे ये कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगता है ना, तो हम इसको सुन के अपना शौक पूरा करते हैं। किसी को किताबें पढ़ने का बहुत शौक होता है तो वो किताब पढ़ के अपना, किसी को म्यूजिक सुनने का शौक है या किसी को शॉपिंग का, है ना।
1: शॉपिंग, तो शॉपिंग से मुझे याद आया है कि कल मैंने भी तुम्हें मार्केट में देखा था।
0: हाँ, मेरा मन किया कल शॉपिंग, मौसम बहुत अच्छा था।
1: हाँ, बहुत सारा सामान लेकर आई थी तुम्हें ना बातों में, तो जरा बताओ तो हम सखियों को क्या क्या खरीदारी कर ली।
0: अरे कुछ खास नहीं, बस घर के लिए थोड़ा सा सामान ले आई थी, और हाँ एक बहुत सुंदर कप सेट भी लेकर आई हूँ, सोच रही हूँ उसे खास मौके के लिए रख दूँ।
1: अच्छा, तो फिर वो खास मौका तो मैं ही तुम्हें दे देती हूँ, कल ही आ जाती हूँ तुम्हारे
0: घरे। क्यों नहीं, जरूर आओ अनविति, चाय पे, इसमें कोई कहने की बात होगी।
1: वैसे तो खैर ये मजाक की बात हुई शर्मिला, पर सच कहूँ ना तो हम सभी की आदत होती है ये, जब हम कोई भी सामान लेकर आते हैं जैसे कि कोई साड़ी हो गई, कोई बेडशीट हो गई, पसंदीदा क्रॉकरी हो गई, तो हम उसे अक्सर किसी खास मौके के लिए रखते
0: हैं। बिल्कुल, पर मैं तो पता है कोई भी नया सूट सिलवाती हूँ ना तो ये सोच के रख देती हूँ कि नहीं अभी तो कोई अच्छा सा फंक्शन होगा या कुछ अच्छी जगह पे जाऊंगी या किसी में कोई अच्छा सा मूड होगा या कोई मेहमान आएंगे घर पे, है ना, या कोई त्यौहार होगा, मतलब खास दिन का इंतजार करते रहते हैं।
1: हाँ, तो मैं भी पता है तुम्हारी तरह ही सोचा करती थी, है ना, लेकिन एक अनुभव हुआ और वो अनुभव मैं सबसे शेयर करना चाहूंगी। क्या हुआ कि मेरी शादी के टाइम पे किसी ने मुझे एक बहुत ही प्यारा सा टी सेट गिफ्ट किया।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो जिसे मैंने ये सोचकर संजो कर रख दिया, या वो कहते हैं ना कि मन में एक तस्वीर बनाई थी मैंने कि जब अपना घर बनेगा तो या लॉन में बैठकर मैं और मेरे जो पति हैं वो उसी सेट में चाय पियेंगे बड़ी फुर्सत के साथ।
0: अरे वाह, कितना प्यारा ख्याल था। फिर क्या हुआ अनविति?
1: फिर जिंदगी की भागदौड़ चलती रही, जिम्मेदारियां बढ़ती रही, और फुर्सत के पलों में इस्तेमाल करूंगी ऐसा सोचकर जो अलमारी में टी सेट रखा था ना वो अलमारी में ही रखा रहेगा। और उस दिन समझ आया कि ये जो छोटी छोटी सी चीजें होती है ना जो हमें खुशी देती है।

0: चाहे वो आपका पसंदीदा बेडशीट बिछाकर आपको मिलती हो या एक कप में चाय पीते हुए ही मिलती हो, इसे बाद के लिए हमें नहीं रखना चाहिए, वरना समय निकल जाएगा और उम्र भी निकल जाएगी।
1: बिल्कुल सही कहा हुई थी, जो चीज हमारे चेहरे पर मुस्कान ले आए उसके लिए किसी खास मौके का इंतजार हम क्यों नहीं करें। तो सखियों, अनुमिति की बात से हम भी लेते हैं सीख, आप भी ये काम जरूर कीजिएगा। वो जो आप किसी खास दिन के लिए संजोए बैठी है उसे अलमारी से निकालिए और उसे एंजॉय कीजिए, हर पल को भी जी लीजिए भरपूर इसी गाने के साथ।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अनिति, अभी हम बात कर रहे थे ना खुशियों की, कि बाद के लिए नहीं टालना चाहिए, है ना। कई बार ऐसे होता है ना कि अपने को किसी चीज में रुचि होती है, है ना, कि जैसे मुझे डांस सीखने का बड़ा मन करता है, पर मैं पता हमेशा सोचती रहती हूँ कि चलो ठीक है, अभी बच्चे पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा फ्री हो जाएं तब सीखेंगे, है ना। ऐसे सबकी अपनी भी रुचियां होती है, लेकिन हम किसी ना किसी बहाने से उनको टालते रहते हैं।
3: बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन यहाँ पे फिर वही बात हो जाती है ना कि उम्र के साथ जब जिम्मेदारियों का दायरा बढ़ता है ना, तो ऐसे में रुचियों के लिए आगे कम पड़ जाती है, इसलिए हम अपने आप रोक लेते हैं। याद है ना बचपन में हमारे पास वक्त ही वक्त था, याद किया तुमने कभी?
2: अरे बिल्कुल।
3: तो उस समय क्या होता था ना कि ड्राइंग और पेंटिंग जो भी हमारी हॉबीज होती थी ना, उसके लिए हम कैसे भी करके समय निकाल लेते थे, है ना। लेकिन अब तो ये सोचना भी मुश्किल लगता है मुझे।
2: हाँ, वो तो है अनिति, लेकिन मैं तो ये कहना चाहूंगी कि आज भी अगर रोज हम अपनी जिंदगी में 15-20 मिनट ही, है ना, मतलब ज्यादा बहुत ज्यादा हम सोचें कि बहुत सारा टाइम 2-4 घंटे का मिलेगा, वो तो मिलता भी नहीं है ना। तो 15-20 मिनट भी अगर हम अपनी हॉबीज के लिए निकाले ना, तो मन बहुत खुश रहता है और जीवन में एक नई ताजगी बनी रहती है, क्योंकि नयापन है ना हमेशा जिंदगी को खुशियों से भर देता है।
3: बिल्कुल, बात तो एकदम सही कह रहे हो तुम। और पता है तुम्हारी बात सुन के मुझे अपनी एक सहेली की भी याद आई।
2: अच्छा,
3: हाँ, कुछ समय पहले क्या हुआ, उसके घुटने का ऑपरेशन हुआ।
2: अच्छा,
3: था। और जब मैं उससे मिलने गई ना, तो मेरे मन में एक अलग ही छवि बनी हुई थी कि वो घर में बैठी
2: हुई। अच्छा,
3: परेशान हो रही होगी, ऐसा होता है ना।
2: हाँ,
3: ना सोच रही थी कि उसको समय जाने कैसे कटता होगा एक ही जगह पे बैठा,
2: क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो किसी बीमारी में होते हैं तो वो जाकर के उसी तरह से परेशान होते रहते हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ। तुमने भी एक ऐसा इमेजिनेशन तैयार किया होगा, लेकिन हुआ कुछ उल्टा है मुझे लग रहा है।
3: हाँ, हाँ, बिल्कुल। हाँ, वहाँ जाकर तो पता है मैं हैरान रह गई।
2: अच्छा,
3: पता है बड़े मन से वो बैठकर कपड़े पर कशीदाकारी कर रही थी, रंग बिरंगे धागों से कपड़े पर बड़े सुंदर सुंदर डिजाइन बना रही थी। और तब मुझे लगा कि एक तो खाली समय यूं ही बिता देना और खाली समय को खूबसूरत बना देना, इन दोनों चीजों में क्या अंतर है?
2: बिल्कुल अनिति। और एक बात पूछूं, तुम्हारी सखी का घुटने का ऑपरेशन हुआ है फिर भी वो इतने उत्साह से कशीदाकारी कर रही थी, ये हौसला, ये प्रेरणा, मतलब सोचने वाली बात है कि ये छोटी सी चीज नहीं है ना, कहां से आई होगी? क्योंकि शायद उसकी जगह अगर कोई दूसरा होता जिसका हौसला इतना बड़ा नहीं होता, तो वो शायद अपना टाइम पास या तो मोबाइल से कर रहा होता या लोगों के सामने अपने दुख गा रहा होता कि अरे बहुत ऐसा हो गया, ऐसे ऐसे करके मेरे ये घुटने पे हुआ, मैं बहुत तकलीफ में, मतलब अपने दर्द को शायद गा के और ज्यादा बढ़ा रहा होता है ना।
3: बिल्कुल, मैंने भी बिल्कुल यही उससे पूछा था और यही कहा था कि शायद मैं होती ना तो मैं तो मोबाइल ही स्क्रॉल करती रहती, है ना। और ये पूछा भी जो तुम पूछ रहे हो कि ये हौसला तुम्हें किसने दिया, कैसे कर लेते हो ये सब, तो उसने कहा कि ऐसा नहीं है कि कभी मैं उदास रहती हूँ, मैं भी कभी कभी ऐसे ही माहौल में उठ जाती हूँ, निराशा के गर्त में चली जाती हूँ।

0: सही है, लेकिन फिर भी वो संभाल लेती होगी ना। तो अनुमिति थोड़ा सा अपनी बहनों से बता दें कि वो और क्या क्या करती होगी, क्योंकि तुम तो उससे मिलके आई हो ना, तो उसकी बहुत सारी बातें तुमने जानी है, तो उसी के तो देखा है, और वो क्या करती है।
1: बिल्कुल, तो ऐसे में वो किताबों की दुनिया को अपना साथी बना लेती है, खास करके महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, मन्नू भंडारी और कृष्णा सोबती जैसे जो साहित्यकार है उनकी रचनाएं उन्हें प्रेरणा देती है।
0: अरे ये तो हमारी हिंदी साहित्य की इतनी महान साहित्यकार है कि जिनकी मतलब लेखनी में ऐसी चीज है, मतलब समाज की ऐसी संवेदनाएं हैं, रिश्तों और जीवन के कई ऐसे पहलू हैं जिनको उन्होंने बड़े सुंदर ढंग से मतलब हमारे सामने रख दिया है, और उनकी रचनाएं आज भी हमें नई दिशा देती हैं, नई सोच देती हैं और आगे बढ़ते रहने का हौसला भी देती है ना।
1: तो शर्मिला क्यों ना हम भी अपने खाली समय का उपयोग करें कुछ नया सीखकर, कुछ किताब के पन्नों में खोकर या फिर किसी पुराने हुनर को फिर से अपनाकर।
0: हां ना, तो जैसे तुम्हारी सखी ने रंग बिरंगे धागों से मुंह कर लिया था, क्यों ना हम वैसे ही थोड़ा सा कुछ और मनोरंजन से मुंह कर ले।
1: बिल्कुल।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।
2: शर्मिला, तुम्हारे दुपट्टा है ना, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है मुझे, कब से देख रहे हो ना, कितना सुंदर काम है ना इसमें। वैसे कहाँ से खरीदा है ये?
3: अरे नहीं, ये तो मैंने खुद बनाया है लगता है।
2: अच्छा अच्छा अच्छा,
3: तुम्हें मेरा दुपट्टा बहुत अच्छा लग गया, मतलब मुझे भी ये दुपट्टा बहुत अच्छा लगता है।
2: तभी मैं सोचूं कि तुम ऐसा क्यों कह रही थी कि 15-20 मिनट अपनी हॉबी के लिए निकालने चाहिए। तुम भी अपने खाली वक्त का भरपूर उपयोग कर रहे हो।
3: बिल्कुल अनिति, ये ब्लॉक प्रिंटिंग कही जाती है, जैसे इन कसीदाकारी के जो होते हैं ना धागे, मतलब वो बहुत ही खूबसूरती से उभरते हैं ना, वैसे ही ब्लॉक प्रिंटिंग में रंग अपनी कहानी कहते हैं। तुमने बगरू प्रिंट, सांगानेरी प्रिंट या अजरक प्रिंट, ये नाम तो सुने ही होंगे ना?
2: बिल्कुल सुने, और मेरे पास तो इन प्रिंट्स के बेडशीट हैं, बैग्स का अच्छा खासा कलेक्शन कह सकते
3: हैं। यही तो ब्लॉक प्रिंटिंग के उदाहरण है। इसमें क्या होता है कि लकड़ी या रबड़ के बने अलग अलग डिजाइन वाले ब्लॉक्स होते हैं।
2: अच्छा।
3: उनको क्या करते हैं कि रंगों में डुबो लेते हैं और फिर कपड़ों पे छाप लेते हैं।
2: अच्छा, लेकिन एक बात तो बताओ कि ऐसे सुंदर सुंदर ब्लॉक्स खरीदने में तो फिर खर्चा भी बहुत आया होगा।
3: यही तो मजेदार बात है, इस दुपट्टे में मैंने ना बाजार वाले ब्लॉक्स इस्तेमाल ही नहीं किए।
2: अच्छा,
3: रसोई में रखी सब्जियां ही मेरी ब्लॉक्स बन गई। देखो कैसे किया मैंने कि भिंडी को बीच में से काटा तो जैसा डिजाइन बन गया, आलू को मनचाहे आकार में काट कर उस पर डिजाइन बना लिया।
2: अच्छा,
3: यहाँ तक कि करेले से भी सुंदर डिजाइन बन गया, उन्हें काट कर अपने मनचाहे रंगों में डुबोया और खिल गया मेरा ये प्यारा सा दुपट्टा।
2: बहुत ही अच्छी बात है, तो यानी कि जो सब्जियां रोज कढ़ाई में जाती हैं वो अब कलाकार बन गए हैं ना। और सबसे अच्छी बात ये है कि तुमने बड़ी ही किफायत के साथ अपनी कल्पनाओं को रंग दिया। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि रसोई में रखी सब्जियां भी इतनी सुंदर छाप छोड़ सकती हैं।
3: क्यों नहीं छोड़ सकती अनिति, अगर हम अपनी सोच में थोड़ी सी रचनात्मकता ले आए, थोड़ा सा समय अपने हुनर को आजमाने के लिए लगाए, तो साधारण सी वस्तु में भी खूबसूरत कला का रूप ले सकती है।
2: यानी जरूरत है हमें बस थोड़ा सा खुद को तराशने की, अपने हुनर को भी और अपने आप को भी। और ये गीत भी तो कुछ यही कह रहा है।

0: प्रकृति हमें जीवन देती है और उसकी रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को निभाने में महिलाओं की भूमिका हमेशा से महत्वपूर्ण रही है। इसी भूमिका पर हम आपको सुनवा रहे हैं एक वार्ता जिसका विषय है पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं का योगदान। वार्ताकार हैं श्रीमती मीना सैनी।
1: पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं का योगदान। घटाटोप, घनघोर हो बारिश या सूखा हो हाहाकारी, दोनों ही परिस्थितियों में कटना, फटना और दरकना पड़ता है धरा ही को। अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, अनावृष्टि, बाढ़, सूखा, सभी परिस्थितियों में धरा ही जहां धारिणी होती है, नारी भी एक शक्ति है, कर्मठता है, उत्पादक है, संरक्षण

आवश्यक है। नारी समाज की संजीवनी है, वह संतति जन्म, समाजीकरण, संरक्षण, पालन पोषण, चरित्र निर्माण करने वाली तथा सांस्कृतिक विरासतों का हस्तांतरण करने वाली है। इस शक्ति के कार्योपासना श्रम साधनों की चर्चा करेंगे तो एक महाकाव्य लिखा जा सकता है इस विषय पर, परंतु आज मेरे कथन का विषय वस्तु केवल पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं का योगदान ही है। बातों बातों में चाहे महिला को परिवार की धुरी कहकर संबोधित किया जाता रहा है, परंतु मेरे विचार में यह शक्ति केवल परिवार के पोषण संरक्षण तक ही सीमित नहीं है। और हाँ, यह विचार मात्र मेरा ही नहीं है, प्रसिद्ध चिंतक कार्ल मार्क्स के अनुसार सृष्टि में बड़े से बड़ा बदलाव महिलाओं के बिना नहीं हो सकता। महिलाओं में यह जागृति, यह विचारधारा कोई हाल ही में नहीं पनपी है। महिलाएं वैदिक काल से ही पर्यावरण संरक्षण की पक्षधर रही हैं। तुलसी, पीपल, वट, केला आदि वृक्षों का पूजन, सिंचन, सूर्य चंद्रमा के उदय अस्त की समझ, उनको अर्घ्य देना, जलवा पूजन, कुआं पूजन, भूमि पूजन और नैमित्तिक स्नान आदि भारतीय संस्कृति को अक्षुण रखने वाली परंपराओं का पालन करने में महिलाएं सदा सर्वदा आगे रही हैं। स्वस्थ पर्यावरण सभी प्राणियों के जीवन चक्र का अहम हिस्सा है, इसके बिना सुचारू जीवन चक्र की कल्पना ही नहीं की जा सकती। अतः इसके समुचित संरक्षण का मानव मात्र का तो प्रथम कर्तव्य हो जाता है, क्योंकि मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो सुविकसित मस्तिष्क का धनी है। तो इस प्रकार पांच तत्वों से मिलकर बने प्राणी का, पांच तत्वों यानी जल, भूमि, वायु, अंबर और अग्नि को प्राणी मात्र के लिए सकारात्मक बनाए रखने का उत्तरदायित्व मानव का हो जाता है। और समाज में इस दायित्व को हम महिलाएं भली भांति निभा भी रही हैं। इस संदर्भ में सबसे पहले जो नाम आता है वह है राजस्थान का सुप्रसिद्ध खेजड़ली आंदोलन। सन 1730 में जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में तत्कालीन राजा के कारिंदों द्वारा किए जा रहे खेजड़ी वृक्षों की कटाई के कार्य का विरोध सर्वप्रथम एक नारी शक्ति ने ही किया था। वह महिला थी अमृता देवी बिश्नोई। खेजड़ी का पेड़ ना काटा जा सके इसके लिए वह खेजड़ी से चिपक कर खड़ी हो गई। उनकी दो पुत्रियों ने भी उनका अनुसरण किया, परंतु राजाज्ञा का हवाला देकर उन महिलाओं के बलिदान के साथ खेजड़ी के पेड़ भी कटने लगे। यह देखकर सारे ग्रामीण विरोध स्वरूप आगे आए। इस आंदोलन में 363 लोग शहीद हुए और महिला द्वारा आहूत इस आंदोलन में 69 महिलाओं का भी बलिदान हुआ। यह शहादत व्यर्थ नहीं गई, वृक्षों की कटाई रोकनी ही पड़ी। पर्यावरण हानि पर मुखर विरोध का एक और उदाहरण है रेनी गांव उत्तराखंड की 27 महिलाओं का प्राणोत्सर्ग। यहां भी वनों की कटाई रोकने के लिए, वन संपदा का संरक्षण करने के लिए इसी गांव की महिला गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन का सूत्रपात किया गया। इस चिपको आंदोलन का घोष वाक्य है, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। वी एक्ट फॉर एनवायरमेंटल जस्टिस संस्था की सह संस्थापक भारत की ही एक और प्रसिद्ध पर्यावरण संरक्षक का नाम आता है, वो है मेधा पाटकर। हरित राजनीति की समर्थक मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रणेता रही हैं। प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन, टिकाऊ पर्यावरण संरक्षण को लेकर महिलाएं कितनी सजग हैं, इसका एक और भारत का ही उदाहरण है चंडीगढ़ की मधु सरीन, जिन्होंने नाडा गांव की घटना से प्रेरित होकर नाडा चूल्हे, जिसे निर्धूम चूल्हा भी कहा जाता है, का आविष्कार किया ताकि पर्यावरण के साथ साथ पहाड़ों, मैदानों में जलाऊ लकड़ी बटोरने ढोने वाली महिलाओं का स्वास्थ्य भी ठीक रहे। सौर कुकर या सौर चूल्हा भी पर्यावरण संरक्षण में रुचि रखने वाली महिलाओं द्वारा काम लिया जाने वाला उपकरण है जो ऊर्जा का उत्पादन एवं बचत करता है, साथ ही यह वातावरण को प्रदूषित होने से भी बचाता है। तो बचत, उत्पादन एवं संरक्षण का यह कार्य करने वाला उपकरण महिलाओं का पसंदीदा उपकरण है। राजस्थान का खेजड़ली आंदोलन वन्य जीवन, जंगल, वृक्षों के संरक्षण तथा प्रकृति की ओर वापसी की अवधारणा के लिए विसल ब्लोवर साबित हुआ है। राजस्थान जहां मान्यता रही है सिर सांठे रूख बचे तो भी सस्तो जान, प्रकृति प्रेम का इससे शानदार उदाहरण और क्या हो सकता है। कुछ ऐसे ही कार्य को अग्रसर भारत की एक और सबसे बड़ी गैर

सरकारी संस्था जिसे चिपको संस्था भी कहा जाता है वह है दसौली ग्राम स्वराज्य मंडल। एक अध्ययन के अनुसार इस चिपको संस्था ने 15 लाख नए पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा था और बताया जाता है कि इस वन संवर्धन कार्यक्रम में जीवित रहने वाले पेड़ों की संख्या 85% है, क्योंकि पेड़ों की देखरेख में गांव की महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। महिलाएं द्वारा आहूत एक और आंदोलन का नाम आता है नवधान्या आंदोलन। यह भी जैविक विविधता के संरक्षण के लिए महिला केंद्रित आंदोलन है। इसकी शुरुआत भी भारत की प्रसिद्ध पर्यावरणविद डॉक्टर वंदना शिवा द्वारा की गई थी। पृथ्वी तथा जैव संरक्षण के प्रति समर्पित डॉक्टर वंदना शिवा अंतर्राष्ट्रीय संगठन महिला पर्यावरण एवं विकास संगठन WEDO की भी सह संस्थापक हैं। चर्चा भारत से बाहर गई है तो कतिपय अंतर्राष्ट्रीय महिला पर्यावरणविदों का उल्लेख करना भी समीचीन होगा। अमरीकी जीव विज्ञानी पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयासरत लेखिका एवं अधिवक्ता राचेल कार्सन को मैं सर्वप्रथम नामांकित करना चाहूंगी। वन्य जीवन पर कीटनाशकों का उपयोग कितना विनाशकारी है इस पर उनके द्वारा किए गए अध्ययन और प्रसिद्ध पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग ने 60-65 वर्ष पूर्व ही अमेरिका में पर्यावरण जागरूकता के प्रति लोगों में काफी हलचल पैदा की थी। यह अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी EPA की सदस्य भी रही है। इसी प्रकार नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजी गई केन्या की महिला जीव विज्ञानी वांगारी मथाई भी ग्रीन बेल मूवमेंट की विसल ब्लोअर रही हैं। इन्हें पेड़ों की महिला भी कहा जाता है। इनके अलावा ग्लोबल वार्मिंग पर आवाज उठाने वाली कनाडा की शीला वॉट क्लाउटियर का योगदान भी महत्वपूर्ण है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति ये समर्पित हैं। इन्हें भी 2007 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। ओजोन परत में छेद की अवधारणा पर पहली बार 1974 में आवाज उठाने वाले शेरवुड रोलैंड की सहयोगी भी एक महिला ही थी। नाम था मारियो मोलिना। यह फेहरिस्त तो बहुत लंबी हो सकती है। कुल मिलाकर प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और टिकाऊ पर्यावरण संरक्षण, मिट्टी का स्वास्थ्य, मिट्टी की उर्वरता, ग्लोबल वार्मिंग, रेगिस्तानीकरण, पहाड़ों का क्षरण, कृषि पद्धतियों की नवीनतम जानकारी व उपयोग, कहां नहीं है महिलाओं का हस्तक्षेप एवं योगदान। कृषि की नवीनतम जानकारी की हेतु छात्राओं की उपस्थिति इसी बात का संकेत है कि महिलाएं पर्यावरण के प्रति कितनी सजग हैं, जागरूक हैं। फिर वह चाहे हरियाणा का चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हो या बीकानेर राजस्थान का स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय। यह तथा ऐसे ही असंख्य संस्थानों में अध्ययनरत छात्राएं मेरी बात का प्रमाण है कि महिलाएं स्वस्थ पर्यावरण के लिए प्रयासरत हैं। दादी नानी की कहानियां ही प्रसिद्ध है, दादा नाना की नहीं। दादी नानी द्वारा छोटे बालकों में कहानी कथन के माध्यम से बचपन में ही जीव हिंसा न करने, पशु पक्षियों, वनों का संरक्षण करने का वैचारिक पौधारोपण कर दिया जाता है। पुराणों की, पंचतंत्र की कहानियां, जातक कथाएं कहते हुए भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों का हस्तांतरण कथाओं, गीतों और लोरी के माध्यम से मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। दुर्लभ प्रजातियों के पशु पक्षियों का, वृक्षों का ही नहीं वरन प्राणी मात्र की संरक्षा सुरक्षा का पाठ महिलाओं द्वारा पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट जनरेशन के लिए बेहतर पर्यावरण उपलब्ध हो इसके लिए प्रयासरत महिलाओं के लिए गौरव की बात यह बनती है कि वर्ष 2001 को भारत में महिला वर्ष घोषित किया गया था। वर्ष 2003 महिला सशक्तिकरण के रूप में जाना गया और 8 मार्च प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में जाना जाता है। आखिर महिलाओं की भूमिका को पहचान मिल रही है, फिर भी ग्रीन रिकवरी की आवश्यकता को देखते हुए प्रकृति के संरक्षण के उद्देश्य की पूर्ति हेतु पर्यावरणीय नीतियों पर चर्चा करने, आकलन करने वाले निकायों में महिलाओं की अहम भूमिका सुनिश्चित की जानी चाहिए, उनकी आवाज को सुना जाना चाहिए। अब वह बात अलग है कि महिलाएं ऐसे निकायों के बाहर रहकर भी पर्याप्त सक्रिय थी, हैं और रहेंगी, क्योंकि महिलाएं किसी मीटिंग, सभा, शिविर की मोहताज नहीं है। महिलाएं निरंतर प्रतिदिन एक्टिव हैं अपने लक्ष्य के प्रति, फिर चाहे वह खाद्य सुरक्षा बढ़ाने वाले किचन के डब्बों की सार संभाल हो या स्वच्छ जल की व्यवस्था परिवार के लिए भी और पशु पक्षियों के लिए भी।
इस संदर्भ में जल के सदुपयोग

0: भी चर्चा करनी होगी। ड्रेनेज वाटर का बेहतर उपयोग किचन गार्डन के रूप में करने के लिए महिलाएं सदैव ही लालायित रहती हैं और किचन वेस्ट जैसे फल सब्जियों के छिलकों आदि से पेड़ पौधों की खाद बनाने का काम भी वे उत्साहित होकर करती आ रही हैं। तो इस प्रकार से प्रकृति की क्षमताओं के सुधार एवं वृद्धि में और प्रकृति की सुरक्षा में महिलाओं के महत्वपूर्ण योगदान को नकारा नहीं जा सकता।
1: सखियों, हमारा हर छोटा प्रयास पर्यावरण को बचाने की दिशा में एक बड़ा कदम है और आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारा कर्तव्य भी। हमने सुनी वार्ता जिसका विषय था पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं का योगदान। वार्ताकार थी श्रीमती नीना सैनी। मिलते हैं एक अंतराल के बाद।
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल

0: पहले और चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: वैसे मेरी थी आज पता है, मैं सुबह जब घर से निकल रही थी ना तो मौसम बड़ा ही प्यारा सा था और रास्ते में मैंने देखा कि अपनी ही एक कॉलोनी की छोटी सी बच्ची है ना जो अभी भी कॉलेज जाने ही लगी थी शायद, है ना।
2: अच्छा।
1: तो वो पार्क के कोने में बहुत ही उदास सी ऐसे बैठी हुई फोन चला रही थी, लेकिन उसका चेहरा ना ऐसे बहुत ही मुरझाया हुआ लग रहा था मुझे।
2: अच्छा। वैसे आजकल मैं भी ये बहुत नोटिस करती हूँ, हमारी सखियां हमारी बेटियां बाहर तो अच्छे से तैयार होके कॉलेज या ऑफिस के लिए निकलती है, पर उनके चेहरों के पीछे एक अनकही सी उदासी होती है, जैसे लगता है कि सब कुछ होते हुए भी जैसे अंदर ही अंदर कोई उनके जंग चल रही हो।
1: बिल्कुल सही पकड़ा तुमने अनिति। और पता है जब मैंने उससे बात की ना तो उसने रोते हुए बस एक ही बात कही कि दीदी पता नहीं मेरे शरीर और मूड को क्या हो गया है, मतलब ऐसा उसको लग रहा है कि मुझे पता नहीं है कि मुझे हो क्या है, खुद को समझ नहीं आ रहा है। लेकिन मैंने उसकी बातों से जो से बहुत सारी बातें की ना तो मुझे पता चला कि ये एक जो महिलाओं में अक्सर आजकल हो रहा है PCOS, है ना, वो मुझे ऐसे लगा उसकी बातों से, है ना। और बहनों ये एक ऐसी समस्या है जो आज हर 5 में से एक महिला की जीवन शैली और उनकी खुशियों को प्रभावित कर रही है।
2: सच कहा शर्मिला, ये सिर्फ हार्मोन का बिगड़ना नहीं है, ये एक लड़की के पूरे वजूद और उसके आत्मविश्वास उसकी मानसिक शांति पर हमला है। तो चलो ना आज इस माइक के जरिए हम अपनी सभी सखियों से दिल का दर्द बांटते हैं और इस पर खुलकर बात करते हैं।
1: आईने में खुद को देख वो अक्सर हैरान होती है, जो लड़की कभी खिलखिलाती थी अब उदास होती है। अचानक वजन बढ़ना और चेहरे के अनचाहे निशान कोई नहीं समझ पाता उसके भीतर का ये घमासान।
2: शर्मिला, और सबसे बड़ा दर्द वो तारीखें देती हैं जो आती हैं और चुपचाप गुजर जाती हैं बिना किसी आहट के। वो सहन जाती है हर महीने समाज की दबी जुबान के सवालों से कि शादी के बाद क्या होगा, क्या कभी माँ बन पाएगी। उसका अपना शरीर उसे बेगाना सा नजर आने लगता है
1: और लोग इसे मूड स्विंग्स या नखरे कह देते हैं ना, नीति के बारे में कहते हैं ना कि ये तो बहुत ही नखरे वाली लड़की है। पर कोई नहीं जानता कि हार्मोन के इस उतार चढ़ाव में खुद को संभाल पाना कितना मुश्किल होता है। डॉक्टर कहते हैं जिंदगी का तरीका बदलो तभी आराम आएगा, पर कोई ये तो बताए इस थके हुए मन में रोज नया हौसला कहाँ से आएगा।
2: आएगा शर्मिला, हौसला भी आएगा क्योंकि हमारी सखियां कमजोर नहीं है, वो योद्धा है। ये सिर्फ डाइट का या कसरत की ही बात नहीं है, ये खुद को दोबारा पाने की जंग है। वो स्वाद की थाली छोड़कर सेहत का रास्ता चुन रही हैं, सुबह की नींद का मोह त्याग कर वो मैदान में कदम रख रही हैं।
1: और अनिति ये बिल्कुल सही है, हम भी अपने आसपास देख रहे हैं और हम खुद को भी तो देख ही रहे हैं, है ना। हम जल्दी उठते हैं कि पूरे दिन के रूटीन से हमें अपने लिए थोड़ा समय निकाल सके, चाहे उसमें हम थोड़ी सैर करके आ सके, थोड़ा घूम सके, है ना। तो ये छोटी छोटी रोजमर्रा की जो आदतें हैं ना वो हमारे पूरे जीवन को बदल कर रख देती हैं।
2: सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे सखियों को सुबह उठते ही खाली पेट चाय या कॉफी पीने की जो ये आदत होती है वो बदल देती है। सुबह सबसे पहले कुछ भीगे हुए बादाम या अखरोट खा लें ताकि हार्मोन्स जो आपके हैं वो संतुलित रहे।
1: और बहनों भोजन में भी सादगी रखें, मैदे चीनी और पैकेट वाले जंक फूड को थोड़ा दूर रखना होगा, थाली में हरी सब्जियां दालें और सलाद को बढ़ाना होगा। इसके साथ ही रोज कम से कम 30 मिनट का व्यायाम या वॉक बहुत जरूरी है ताकि शरीर में इंसुलिन का सुधार स्तर जो है वो सुधर सके, है ना।
2: और शर्मिला शारीरिक सेहत के साथ साथ मानसिक सेहत भी बहुत जरूरी है। यदि तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाए या एंग्जाइटी होने लगे ना तो किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।
1: तो हमारी प्यारी सखियों आज ही उठिए, खुद से प्यार कीजिए और अपनी जीवन शैली को एक नया और स्वस्थ मोड़ दीजिए, क्योंकि आपके बिना आपका घर संसार अधूरा है।

0: सखियों, अपनों का और सेहत का ख्याल रखने के साथ साथ हमें अपडेट रहना भी बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल अनिति,
0: तो सखियों की जानकारी के लिए बता दें कि पीसीओएस का नाम बदलकर अब से पीएमओएस के नाम से जाना जाएगा।
1: हाँ, क्योंकि हमारी सखियों को रहना पड़ेगा बिल्कुल अपडेट, और हम अपनी सखियों से बातें ही करते रहते, सिलसिला चलाते रहते, लेकिन सखियों वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आज की हमारी ज्यादातर बातों का संदेश था सेल्फ लव, यानी खुद से प्यार, खुद को वक्त देने का।
0: और जब खुद का सम्मान करेंगे, खुद से प्यार करेंगे, तो अपनों और अपनी जिंदगी को पूरे दिल से संवार पाएंगे। इसी संदेश के साथ आगे दीजिए अनवित गोस्वामी को
1: और डॉक्टर शर्मिला को नमस्कार।

अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम महिला जगत। आज का ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया श्रीमती अन्विती गोस्वामी और डॉक्टर शमिला बिश्नोई ने। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है।

215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, दोपहर के 2 बजने को है, अब सुनिएगा हमारे दिल्ली केंद्र से मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनक लता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के दौरे पर ऑकलैंड पहुंच रहे हैं। वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा युक्त दवाओं को विनियमित करने के लिए मादक पदार्थ के नियमों में संशोधन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध के दौरान यौन हिंसा की कड़ी निंदा की, इसे युद्ध और आतंकवाद का हथियार बताया। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से, और महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज शाम लंदन में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड पहुंच रहे हैं। श्री मोदी वहां न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। भारत और न्यूजीलैंड इस वर्ष अपने खेल संबंधों के 100 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। हमारे विशेष संवाददाता मंजू मीणा ने बताया है कि हॉकी से शुरू हुई यह यात्रा आज भी दोनों देशों के बीच दोस्ती और सहयोग का मजबूत माध्यम बनी हुई है।
1: भारत और न्यूजीलैंड के खेल संबंधों की शुरुआत वर्ष 1926 में हुई, जब भारतीय सेना की हॉकी टीम न्यूजीलैंड दौरे पर आई। इस ऐतिहासिक टीम का हिस्सा हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद भी थे। यही दौरा उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत माना जाता है और यहीं से उन्होंने दुनिया को अपनी अद्भुत हॉकी का परिचय कराया। एक सदी बाद दोनों देशों के खेल संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। इसी वर्ष ऑकलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को हराकर खिताब अपने नाम किया। पूर्व हॉकी न्यूजीलैंड मुख्य कार्यकारी अधिकारी और 1976 ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता रमेश पटेल ने आकाशवाणी से खास बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा से दोनों देशों के बीच खेल सहयोग को नई गति मिलेगी। सौ वर्षों की इस खेल यात्रा ने यह साबित किया है कि हॉकी केवल एक खेल नहीं, बल्कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मित्रता, विश्वास और लोगों के बीच मजबूत रिश्तों का एक सशक्त सेतु भी है। मंजू मीणा, आकाशवाणी समाचार, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न हो गई है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे।
2: यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भव्य स्वागत और आतिथ्य के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार और वहां की जनता के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: भारत ने युद्ध

0: के दौरान की जाने वाली यौन हिंसा CRSV की कड़ी निंदा करते हुए इसे युद्ध, आतंकवाद, यातना और राजनीतिक दमन का एक हथियार बताया है, जिसका प्रयोग समुदायों को अधीन करने, असहमति को दबाने और मानवीय पीड़ा पहुंचाने के लिए किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पी हरीश ने युद्ध के अवधि में की जाने वाली यौन हिंसा पर कहा कि इस तरह के हिंसा में दंड न दिए जाने के कारण ये जारी है। उन्होंने कहा कि भारत ऐसे जघन्य कृत्यों की कड़ी निंदा करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में हाल में हमलों के बाद इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सेना की नई गतिविधियों के बारे में जानकारी दी है। इसराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार दोनों नेताओं ने कल रात फोन पर बातचीत की और अमेरिका तथा इसराइल के बीच विभिन्न क्षेत्रों में तालमेल बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की। इस बीच ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कल दावा किया कि उसने उत्तरी जॉर्डन में अमेरिका के अल अजराक सैन्य हवाई अड्डे पर 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। उसने कहा कि हमला तेहरान पर हाल ही में हुए अमेरिकी हमले के जवाब में किया गया था। उसने चेतावनी दी कि अमेरिका की ओर से किसी भी सैन्य कार्रवाई किए जाने पर जवाब में क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर और हमले किए जाएंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonaar.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा वाली औषधियों के नियमन को और सख्त करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इथाइल अल्कोहल युक्त औषधियों के लिए अनुसूची के तहत लाइसेंस अनिवार्यता से मिली मौजूदा छूट समाप्त कर दी है। मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार 30 मिलीलीटर से अधिक मात्रा में 12% से अधिक इथाइल अल्कोहल वाली सभी औषधियों को अब छूट प्रदान नहीं की जाएगी। ऐसी औषधियों को औषधि और कॉस्मेटिक अधिनियम 1940 के अंतर्गत आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करना होगा। इस संशोधन से अल्कोहल युक्त औषधि उत्पादों पर नियामक निगरानी और मजबूत होने की उम्मीद है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज वर्चुअल माध्यम से शिमला स्थित भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान की प्रदर्शनी वंदे मातरम एक यात्रा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने सरदार पटेल का दृष्टिकोण, एकीकरण, एकता और संघवाद विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वंदे मातरम में स्वतंत्रता सेनानियों की कई पीढ़ियों को साहस, बलिदान और आशा से प्रेरित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरदार पटेल ने एक राष्ट्र, एक संविधान और साझा राष्ट्रीय भविष्य की मजबूत नींव रखी।
1: Today, Bharat is marching confidently towards the vision set by our Honorable Prime Minister, a Viksit Bharat by 2047. Asian integration, cooperative federalism and unity in diversity remain as relevant as ever. Sardar Vallabhbhai Patel ji believed for a rich, diverse country like India, a strong center was essential to maintain unity and security.
0: गुजरात में राज्य सरकार ने सूरत के बाढ़ प्रभावित इलाकों में हालात सामान्य करने के लिए बड़े पैमाने पर राहत अभियान शुरू किया है। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने प्रशासन को निर्देश दिया कि अगले 48 से 72 घंटों के अंदर सामान्य जीवन और कारोबार पूरी तरह से बहाल किया जाए। गोवा सरकार ने प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को समर्थन दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कहा कि इस कदम से सरकारों को विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करने और बेहतर शासन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। एक रिपोर्ट।
2: एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर विचार विमर्श के लिए गोवा आई संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष गोवा सरकार ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कहा कि एक साथ चुनाव होने से सरकारें विकास कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इस संबंध में अपने सुझाव समिति को सौंप दिए हैं और विश्वास व्यक्त किया है कि यह प्रस्ताव सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेगा। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने बताया कि बैठक में शामिल मंत्रियों ने कहा कि विभिन्न राज्यों में बार बार होने वाले चुनाव का गोवा के पर्यटन क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बैठक में मंत्री सुधीर भोईकर, सुभाष पल देसाई, सुभाष शिरोडकर और दिगंबर कामत भी उपस्थित थे। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से मनीष चोपड़े।
0: पंजाब के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर 11 और 12 जुलाई को दो दिन का विशेष शिविर आयोजित किया है। इससे पात्र मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर जमा कर सकेंगे। ये शिविर सुबह 8 बजे से दोपहर बाद 3

0: तक जारी रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने शत प्रतिशत डिजिटल डेटा कनेक्शन के साथ जनगणना 2027 के पहले चरण यानी हार्वेस्टिंग ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एक महीने तक चले इस ऑपरेशन में केंद्र शासित प्रदेश के 24,000 से ज्यादा हार्वेस्टिंग ब्लॉक शामिल किए गए। अब अगले चरण की तैयारी शुरू होगी। इसमें सितंबर में बर्फबारी वाले इलाकों में जनसंख्या की गिनती और इस साल अक्टूबर तक जिला जनगणना हैंडबुक तैयार करना शामिल है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले दो दिन तक हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर पूर्वी भारत के उत्तरी भागों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कुछ जगह आज तड़के हल्की बारिश हुई। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर शशिकांत ने बताया कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में आज और कल बारिश की कोई चेतावनी नहीं है।
1: 1 जनवरी से लेकर 15 जुलाई तक भारत में -14% वर्षा का अनुमान की गई है और आने वाले अगर हम दो दिन की बात तो वर्षा का मुख्य जोन जो रहने वाला है वो हिमाचल प्रदेश, उत्तरी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा शामिल है। कल भी जो है ये पैटर्न मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्य जहाँ पर वर्षा का स्तर हैवी टू वेरी हैवी के रूप में ऑरेंज कलर के लिए हमने चेतावनी जारी की है।
0: हिमाचल प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि वहां कई हिस्सों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
2: शिमला, सोलन, दसरमौल जिलों सहित अन्य क्षेत्रों में व्यापक वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने व नदी नालों के आसपास न जाने की अपील की है। भारी बारिश के चलते सोलन और सिरमौर जिलों में आज सभी शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित किया गया है। लगातार वर्षा से प्रदेश में विभिन्न इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आई है और कई स्थानों पर बिजली व पेयजल आपूर्ति भी बाधित हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी एक सप्ताह तक प्रदेश भर में मौसम के खराब बने रहने की संभावना जताई है। आज 5 जिलों कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। नितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निस्वार्थ कर्म मानवता की सबसे बड़ी शक्ति है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सेवा और समर्पण की इसी भावना से प्रेरित होकर देश प्रत्येक नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने दिल्ली सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और दिल्ली रिज इकोसिस्टम के संरक्षण के माध्यम से दिल्ली को हरा भरा बनाने की पहल का स्वागत किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लिखे पत्र में उन्होंने इस पहल को पर्यावरण संरक्षण और सतत शहरी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। उधर फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बाप्पे ने 60वें मिनट में और उस्मान डेम्बेले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। एम्बाप्पे 30 साल की उम्र से पहले विश्व कप में 20 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान में मेजबान इंग्लैंड के साथ ऐतिहासिक टेस्ट मैच खेलेगी। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। ये पहली बार है जब लॉर्ड्स मैदान में महिला टेस्ट मैच खेला जाएगा। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर में बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 755 अंक बढ़कर 77,497 पर जबकि निफ्टी 232 अंक की बढ़त के साथ 24,195 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर ऑकलैंड पहुंच गए हैं। वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा युक्त दवाओं को विनियमित करने के लिए मादक पदार्थ नियमों में संशोधन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध के दौरान यौन हिंसा की

0: इसे युद्ध और आतंकवाद का हथियार बताया। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से। और महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज शाम लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोलमारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 2:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत।

रवि की, प्रीति और प्रशांत की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे हर दिल जो प्यार करेगा फिल्म से। बोल थे समीर के और संगीत था अनु मलिक का। अगला गीत लीजिए सुनिए वसुंधरा दास की आवाज में। साथ दिया है के शान और ली मेंडोसा ने। फिल्म का नाम है कल हो ना हो।

फिल्म खाकी से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। इस गीत को गाया था सोनू निगम और श्रेया घोषाल की जोड़ी ने। बोल थे समीर के और संगीत था राम संपत का। लीजिए अगला गीत सुनिए फिल्म ताल से। इस गीत को गाया है अलका याग्निक और सुखविंदर की जोड़ी ने। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत है।

गीत आप सुन रहे थे फिल्म हम आपके हैं कौन से। इस गीत को गाया था एसपी बालसुब्रमण्यम ने, बोल थे देव कोहली के और संगीत था राम लक्ष्मण का। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे थे आकाशवाणी बीकानेर का टोला मारू चैनल, मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं कृपया ध्यान दीजिएगा, ये प्रोग्राम हमारे डीआरएम चैनल 1386 किलोहर्ट्ज़ पर भी उपलब्ध थे। हमारी आज की पहली सभा अब यहीं समाप्त होती है। सायंकालीन सभा में आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।

0: मेरी 215.5 मीटर और 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोल मारू चैनल है। हमारी संध्याकालीन सभा प्रारंभ होती है संध्या के 5 बजे। अब हिंदी में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु की अमूल्य पुरावशेषों की सफल वापसी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पुरावशेषों की वापसी भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री राधाकृष्णन ने सांस्कृतिक धरोहर को देश में वापस लाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। 2014 से अब तक 600 से अधिक कलाकृतियां भारत लौट चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए मिशन संचालन समूह की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि आयुष्मान

0: भारत डिजिटल मिशन में लगभग 94 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता शाखाएं बनाई गई हैं और 105 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े गए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि मिशन के अंतर्गत एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचा का निर्माण किया गया है और अगले चरण में इसके अधिकतम उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद भवन परिसर में आगामी मानसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। संसद का सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के दौरान निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को लागू करने के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस परियोजना का लक्ष्य घनी आबादी वाले रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करना है। दिल्ली मंडल के रेवाड़ी दिल्ली और शाकुर बस्ती भटिंडा खंडों पर कवच प्रणाली का चौथा चरण लागू किया जाएगा। रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्राथमिक केंद्र लोकोमोटिव के तय समय पर होने वाले सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल के लिए जिम्मेदार होता है। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि छत्तीसगढ़ के बालोद जिले ने पिछले एक वर्ष में वर्षा जल संग्रहण और संरक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए लगभग 285,000 जल संरक्षण और पुनर्भरण संरचना स्थापित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कैच द रेन अभियान की गति को बनाए रखने के आह्वान किया था, जिसके बाद बालोद जिला जल संचयन जन भागीदारी के दूसरे चरण के अंतर्गत सामुदायिक जल संरक्षण का एक उल्लेखनीय उदाहरण बनकर उभरा है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने दिल्ली सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और दिल्ली रिज इकोसिस्टम के संरक्षण के माध्यम से दिल्ली को हरा भरा बनाने की पहल का स्वागत किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लिखे पत्र में उन्होंने प्रस्तावित 8 वनों में से कम 20% वृक्षारोपण औषधीय पौधों की प्रजातियों के लिए समर्पित करने या 2 वनों को समर्पित औषधीय वनों के रूप में विकसित करने का सुझाव दिया। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ विशेष श्रृंखला के अंतर्गत पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने का काम कर रहे आशीष अग्रवाल के साथ परिचर्चा प्रसारित होगी। ये परिचर्चा आकाशवाणी FM गोल्ड पर आज शाम 5:10 पर प्रसारित की जाएगी। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सुना जा सकता है। इसका पुनर्प्रसारण कल सुबह 9:10 पर होगा। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत के साथ लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर एकमात्र टेस्ट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 2 विकेट पर 101 रन बना लिए हैं। ये पहला मौका है जब लॉर्ड्स मैदान महिला टेस्ट मैच की मेजबानी कर रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। वहीं विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में आज ब्रिटेन के आर्थर फेरी का मुकाबला अलेक्जेंडर जेरेव और यानिक सिनर का मुकाबला नोवाक जोकोविच से होगा। कल कैरोलिना मखोवा और लिंडा नुस्कोवा ने महिला सिंगल्स के फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलमऊ चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 5:05 हुए हैं। अब युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवा वाणी।

0: नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी एकदम फिट होंगे, मस्त होंगे। आपकी शाम को और भी शानदार बनाने के लिए हम लेकर आ गए हैं आपका अपना कार्यक्रम युवानी। मैं हूं आपके साथ साक्षी
1: और मैं हूं आपका दोस्त रिपुदमन सिंह। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों?
0: रिपुदमन
1: साक्षी, एक बात मैं तुम्हें बताना भूल गया। जैसे कि जिंदगी में काफी सारी नई नई चीजें होती हैं, और वैसे ही आज मेरे साथ एक बहुत बेहतरीन चीज हुई है और जिससे मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया।
0: अरे वाह रिपुदमन, लेकिन इस खुशी की वजह क्या है ये तो बताओ।
1: अरे साक्षी, कल मैंने एक बहुत अच्छी रील बनाई थी, उस पर हजारों लाइक्स आए हैं, और हाँ 50 ऐसे नए दोस्तों ने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। उसका कहने का आज तो बड़ा ही मजा आ गया मुझे।
0: वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात कही तुमने। तुम तो रातों रात सोशल मीडिया स्टार बनते जा रहे हो रिपुदमन। वैसे

0: बात पूछूं?
1: हाँ हाँ बिल्कुल पूछो, आज तो मैं वैसे भी खुश हूँ, पूछो।
0: रिपुदमन, ये जो तुम्हारे स्क्रीन पर, तुम्हारे और हमारे स्क्रीन पर जो फ्रेंड्स और फॉलोवर्स की जो लंबी चौड़ी लिस्ट दिखाई देती है ना,
1: हाँ हाँ,
0: इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें तुम असल जिंदगी में जानते हो या हाँ, जो रात को 2 बजे मुसीबत में तुम्हारे एक कॉल पर दौड़े चले आएंगे?
1: सच कहूं साक्षी, तो शायद 2 या 3, बाकी तो बस हाय हेलो नाइस पिक या हैप्पी बर्थडे वाले दोस्त ही है मेरे।
0: रिपुदमन, यही तो आज के टाइम की हकीकत है। आज हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया की मित्रता के मायने।
1: अच्छा
0: रिपुदमन, आज हमारे पास ऑनलाइन सैकड़ों हजारों दोस्त हैं, लेकिन जब दिल की बात कहने की बारी आती है ना, तो हम खुद को अकेला ही पाते हैं।
1: ये तो बिल्कुल तुमने एकदम सच बात कही साक्षी। कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम किसी से घंटों चैट पर बातें कर रहे हैं, जब वो हमें असल जिंदगी हमें सामने मिल जाते हैं, तो हम एक दूसरे से कहीं ना कहीं नजरें भी चुराने लग जाते हैं।
0: सही कहा, सोशल मीडिया दूरी मिटाने और नए लोगों से जुड़ने का एक बेहतरीन जरिया जरूर है, लेकिन ये कभी भी उस असली वाली दोस्ती की जगह नहीं ले सकता, जहाँ दोस्तों के साथ बैठकर ठहाके लगाना, एक ही समोसे को आधा आधा बांटकर खाना और कंधे पर हाथ रखकर हमेशा साथ रहना, कभी भी अकेला महसूस ना होने देना।
1: सही बात है, वर्चुअल दुनिया की इस चकाचौंध में हमने उन असली दोस्तों को कहीं हम भूलते जा रहे हैं। मतलब वो सुख दुख में हमारे जो साथ खड़े रहा करते थे, वो दोस्त अब सोशल मीडिया स्क्रोलिंग में कहीं पीछे झुकते जा रहे हैं, और आज हमें उन पुराने दोस्तों से मिलना चाहिए, उन्हें उनसे बात करनी चाहिए, उन्हें फोन करना चाहिए, उन्हें याद करना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि डिजिटल नेटवर्क के साथ साथ इमोशनल नेटवर्क का मजबूत होना भी तो जरूरी है ना। तो रिपुदमन, क्यों ना अब हमारे दोस्तों को दोस्ती भरी एक सुंदर सा गीत सुना दे।
1: बिल्कुल क्यों नहीं।

0: शहर।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

0: पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: तो दोस्तों अब समय है आज के प्रोग्राम के क्विज सेगमेंट का, जिसमें हमारा पहला प्रश्न होगा
1: रॉकी पर्वत कहाँ स्थित है, और हमारा दूसरा प्रश्न है
0: राजस्थान के किस किले को सोनार किले के नाम से जाना जाता है।
1: तो दोस्तों हम इन प्रश्नों के जवाब हम आपको कार्यक्रम के अंत में देंगे, पर उससे पहले हम सुनते हैं आज की वार्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यात्रा वार्ता वर्तमान और भविष्य। वार्ताकार श्री भूपेश धनेवा, प्रस्तुति श्री रेवंत राम लेघा और संयोजन श्री अमित सिंह का।
2: आज हम विज्ञान और तकनीक की उस सबसे बड़ी और प्रभावशाली क्रांति पर विचार साझा करने जा रहे हैं, जिसने हमारे जीवन, हमारे समाज और हमारे काम करने के तरीकों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। यह क्रांति है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम संक्षेप में AI या कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। आज का यह विषय सिर्फ विज्ञान की प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे हाथों में मौजूद मोबाइल से लेकर हमारे खेतों, अस्पतालों और शिक्षा के क्षेत्र तक अपनी गहरी पैठ बना चुका है। लेकिन AI के इस विशाल स्वरूप को गहराई से समझने के लिए हमें सबसे पहले समय में थोड़ा पीछे जाना होगा, उस दौर में जब तकनीक की दुनिया बहुत अलग हुआ करती थी। AI के अस्तित्व में आने से पहले मशीनें और कंप्यूटर पूरी तरह से उन नियमों और निर्देशों के गुलाम होते थे जो इंसान उनके अंदर एक एक करके प्रोग्राम करता था। इसे रूल बेस्ड सिस्टम कहा जाता था। अगर कंप्यूटर के सामने कोई ऐसी नई परिस्थिति आ जाती थी जिसके लिए उसे कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिए गए हैं, तो वह आगे काम करने में पूरी तरह असमर्थ हो जाता था। चाहे किसी बड़ी कंपनी के भारी भरकम डेटा का विश्लेषण करना हो, मौसम की सटीक अनुमान लगाना हो, या फिर चिकित्सा क्षेत्र में किसी जटिल बीमारी की पहचान करनी हो, ये सभी काम पूरी तरह से इंसानी मेहनत, समय और मानवीय बुद्धि पर ही निर्भर करते थे। हर छोटी बड़ी चीज में सीधा मानवीय दखल बेहद जरूरी था। मशीनें तेज जरूर थी, लेकिन वे समझदार नहीं थी और ना ही वे अपने पुरानी गलतियों से कुछ सीख सकती थी। तकनीक और विज्ञान की दुनिया में सबसे बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव तब आया जब दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने इस दिशा में विचार करना शुरू किया कि क्या मशीनें को इंसानी दिमाग की तरह सोचने, चीजें देखकर पहचानने और अपने अनुभवों से खुद ब खुद सीखने की क्षमता दी जा सकती है। इसी विचार और शोध से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जन्म हुआ। AI के आने के बाद कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग की परिभाषा पूरी तरह से बदल गई। अब हम मशीनों को हर छोटे काम के लिए एक एक निर्देश नहीं देते, बल्कि हम उन्हें भारी मात्रा में डेटा प्रदान करते हैं।

और मशीन उस डेटा से खुद से पैटर्न खोजना सीखती है। इसे आप बिल्कुल एक छोटे बच्चे के उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे जब कोई बच्चा पहली बार किसी गर्म चीज या जलते हुए दिए को छूकर अपना हाथ जला लेता है, तो वो अपने उस अनुभव से सीख लेता है और उसे दोबारा उस चीज को छूने से पछताता है। AI भी बिल्कुल इसी तर्ज पर काम करता है, जो अपने अनुभवों और डेटा के आधार पर खुद को लगातार बेहतर बनाता रहता है। AI के आने के बाद हमारे रोजमर्रा के जीवन में जो बदलाव हुए हैं वे सच में अद्भुत हैं। आज जब हम अपने मोबाइल पर कोई वीडियो देखते हैं या सोशल मीडिया पर समय बिताते हैं, तो अगली बार जब हम दोबारा फोन देखते हैं तो मोबाइल खुद ब खुद हमारी पसंद के वीडियो हमारे सामने रख देता है। यह कोई जादू नहीं बल्कि AI के रिकमेंडेशन सिस्टम का कमाल है, जो हमारी पसंद को समझ रहा है। इसी तरह जब हमारे घरों के बुजुर्ग या कोई भी आम इंसान कीबोर्ड पर टाइप करने की बजाय सिर्फ बोलकर सवाल पूछते हैं और मोबाइल तुरंत उनकी भाषा और लहजे को समझकर स्क्रीन पर सटीक जवाब ला देता है, तो यह AI की आवाज पहचानने की आधुनिक तकनीक ही है। इस तकनीक ने न केवल हमारे मनोरंजन को बदला है, बल्कि शिक्षा, चिकित्सा और कृषि जैसे बुनियादी और महत्वपूर्ण क्षेत्र की तस्वीरें भी पूरी तरह बदल कर रख दी है। आज हमारे किसान भाई खेतों में किसी अज्ञात बीमारी से खराब हो रही फसल की सिर्फ एक फोटो अपने मोबाइल से खींचते हैं और फोन के अंदर बैठा AI पल भर में उस बीमारी को पहचान कर सही खाद या कीटनाशक की सटीक जानकारी दे देता है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी AI किसी वरदान से कम नहीं है। ये एक्सरे, MRI जैसी जटिल रिपोर्टों का गहराई से अध्ययन करके गंभीर बीमारियों को उनके बिल्कुल शुरुआती चरण में ही पकड़ रहा है, जिससे समय रहते इलाज शुरू हो जाता है और अनगिनत कीमती जानें बचाई जा रही हैं। AI सिर्फ अब एक निर्जीव मशीन नहीं रही, बल्कि हमारा एक बेहद समझदार और बिना थके काम करने वाला सहायक बन चुका है। अब यह सवाल उठना बहुत स्वाभाविक है कि हम यहाँ से आगे कहाँ जा रहे हैं और AI का भविष्य क्या है। सच तो यह है कि हम अभी AI के बिल्कुल शुरुआती दौर में हैं और इसकी असली उड़ान तो अभी बाकी है। आने वाला समय लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी कि LLMs और एजेंटिक AI जैसी और भी उन्नत तकनीकों का है। भविष्य में AI केवल हमारे सवालों के जवाब देने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह हमारे स्वतंत्र रूप से बड़े जटिल और कई चरणों वाले काम पूरे करेगा। भविष्य की चिकित्सा व्यवस्था में पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का चलन होगा। हर इंसान के DNA और जेनेटिक्स का बारीकी से विश्लेषण करके सिर्फ उस व्यक्ति के शरीर के अनुकूल विशेष दवाइयां तैयार करेगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी AI एक बहुत बड़ी क्रांति है। भविष्य में हर विद्यार्थी के पास अपना एक व्यक्तिगत AI ट्यूटर होगा, जो 2400 घंटे उसके साथ रहेगा और विद्यार्थी की मानसिक क्षमता और सीखने की गति के अनुसार ही उसे पढ़ाएगा। आने वाले समय में AI की विशाल गणना क्षमता की मदद से विज्ञान, अंतरिक्ष अनुसंधान, जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर वैश्विक समस्याओं का भी समाधान भी बहुत कम समय में निकाला जा सकेगा। जब भी कोई तकनीक इतनी तेजी से बढ़ती है तो स्वाभाविक रूप से उसमें रोजगार और करियर के असीम अवसर भी पैदा होते हैं। अक्सर समाज में ये भ्रांति और डर फैलाया जाता है कि AI के आने से इंसानों की नौकरियां छीन जाएगी और लोग बेरोजगार हो जाएंगे, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल उलट है। सच यह है कि AI नौकरियां छीनेगा नहीं, बल्कि हमारे काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल देगा। आने वाले समय में जो व्यक्ति AI का इस्तेमाल करना जानता है, वह उस व्यक्ति को पेशेवर दौड़ में बहुत पीछे छोड़ देगा जो तकनीक से दूर भागता है। हमारे देश के युवाओं के लिए AI के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए सबसे सुनहरा और उपयुक्त अवसर है। इस क्षेत्र में एक सफल करियर बनाने के लिए एक स्पष्ट और मजबूत रणनीति की आवश्यकता होती है। सबसे पहले विद्यार्थियों को अपनी तार्किक क्षमता यानी लॉजिकल थिंकिंग मजबूत करना चाहिए। इसके लिए सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स और गणित यानी मैथमेटिक्स की बुनियादी ज्ञान बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ ही पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज के समय की सबसे लोकप्रिय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए। तकनीक की इस नींव को मजबूती देने के लिए युवाओं को मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, SQL और Power BI जैसे डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स पर भी अपनी पकड़ बनानी चाहिए। आज के आधुनिक उद्योग जगत में डीप लर्निंग, जनरेटिव AI और RAG यानी कि रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन जैसी उन्नत तकनीकों की भारी मांग है, जिनके जरिए आप खुद के स्मार्ट चैटबॉट और इंटेलिजेंट एप्लीकेशन बना सकते हैं। इन कौशलों को सीखकर हमारे युवा डेटा साइंटिस्ट, AI इंजीनियर या डेटा एनालिस्ट के रूप में एक बेहद शानदार और सुरक्षित करियर बना सकते हैं। और यह मांग केवल बड़ी बड़ी प्राइवेट IT कंपनियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आज के समय में बैंकिंग सेक्टर और यहां तक कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI जैसे शीर्ष सरकारी संस्थानों में भी डेटा साइंस और सांख्यिकी के विशेषज्ञों की लगातार भर्ती की जा रही है। लेकिन इस सुनहरी तस्वीर के साथ हमें बहुत सतर्क भी रहना होगा। तकनीक की इस

0: पकती हुई तस्वीर के साथ एक बहुत ही बड़ी और गंभीर जिम्मेदारी भी आती है। हर नई तकनीक के दो पहलू होते हैं। AI जितना बड़ा मददगार और सेवक है, अगर हम लापरवाह रहें तो यह उतना ही बड़ा खतरा भी बन सकता है। आजकल साइबर अपराधियों ने AI का इस्तेमाल करके वॉइस क्लोनिंग या डीप फेक जैसी नई और खतरनाक चालें चलना शुरू कर दी हैं। वे इंटरनेट से आपकी या आपके किसी सगे संबंधी की आवाज की हूबहू नकल तैयार कर लेते हैं और फिर फोन करके आर्थिक ठगी करते हैं। इसलिए आज के इस डिजिटल दौर में हमें बहुत ही साक्षर और सतर्क रहने की आवश्यकता है। हमें किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करना है और अपनी निजी जानकारी सुरक्षित रखनी है। इसके साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि तकनीक का इस्तेमाल हमें अपनी बौद्धिक क्षमता और काम करने की ताकत को बढ़ाने के लिए करना है, ना कि अपने खुद के सोचने समझने और मेहनत करने की ताकत को खत्म करने के लिए। कोई भी तकनीक एक बेहतरीन सेवक हो सकती है, लेकिन हमें उसे कभी भी अपना मालिक नहीं बनने देना चाहिए। बदलाव प्रकृति का एक अटल और शाश्वत नियम रहा है, इसलिए तकनीक के इस नए स्वरूप से भयभीत या आशंकित होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इतिहास गवाह है कि जब इस देश में पहली बार कंप्यूटर का दौर आ रहा था, तब भी चारों तरफ यही डर और भारी आशंका का माहौल व्याप्त था कि सारा कामकाज ठप हो जाएगा और बड़े पैमानों पर इंसान बेकार हो जाएंगे। लेकिन आज स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि उसी कंप्यूटर ने पूरी दुनिया में करोड़ों युवाओं के लिए रोजगार के अनगिनत नए रास्ते खोले हैं और मानव जीवन को अकल्पनीय रूप से सुगम बनाया है। बिल्कुल उसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कोई डरावनी चीज नहीं है, बल्कि मानवीय क्षमता और कार्यकुशलता को कई गुना तक बढ़ाने वाला एक बेहद आधुनिक, सकारात्मक और शक्तिशाली डिजिटल औजार है। आज के युवाओं, विद्यार्थियों और विशेष रूप से उनके अभिभावकों को ये कहना चाहिए कि वे AI के बारे में समाज में अधिक से अधिक जागरूकता लाएं, बिना किसी संकोच के आगे बढ़ें और नए डिजिटल युग की कमान पूरे आत्मविश्वास के साथ संभालें। इन सभी अत्याधुनिक और भविष्य की तकनीकों को सीखने के लिए अब किसी भी विद्यार्थियों को घर परिवार छोड़कर दूर दराज के महानगरों की ओर पलायन करने की या फिर वहां जाकर धक्के खाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे शहर बीकानेर में ही केंद्र सरकार के इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे अत्यंत प्रतिष्ठित और प्रमाणिक सरकारी संस्था मौजूद है, जहां बिल्कुल बुनियादी स्तर से आधुनिक तकनीकों का गहन व व्यावहारिक ज्ञान तथा उच्च स्तरीय ट्रेनिंग दी जा रही है। अतः समय की रफ्तार के साथ कदम से कदम मिलाते हुए इस नई तकनीक को सीखना, निरंतर कौशल का विकास करना और समाज तथा संपूर्ण राष्ट्र को प्रगति व तकनीकी सशक्तिकरण के नए और अभूतपूर्व शिखर तक ले जाना ही आज का परम लक्ष्य होना चाहिए।
1: अभी हमने सुनी वार्ता, जिसको प्रस्तुत किया था और संयोजन किया था, उसमें हमारे वार्ताकार थे
2: श्री भूपेश धनेवा, प्रस्तुति श्री रेवत राम लेघा की, संयोजन श्री अमित सिंह जी का। वार्ता थी कि कृत्रिम बुद्धिमता यात्रा वर्तमान और भविष्य।
1: साक्षी, कल रात मैंने एक इंटरनेट पर एक ट्रैवलर का ब्लॉग देखा। वाकई में क्या ही बताऊं, क्या ही नजारे थे। आसमान को छूती हुई बर्फीली पहाड़ियां, घने देवदार के जंगल, शीशे जैसी साफ झीलें और बैकग्राउंड में घूमते हुए भालू हिरण। मेरा तो मन कर रहा था बस अभी टिकट बुक करूं और वहां पर चला जाऊं।
2: रिपुदमन, तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि तुम पक्का उत्तरी अमेरिका के सबसे मशहूर और विशाल रॉकी पर्वत यानी कि द रॉकीज की बात कर रहे हो ना?
1: हाँ साक्षी, तुम्हें कैसे पता चला? कि वो जादू जगह ऐसी है कि उसके बारे में बात करते ही पता चल जाता है। उस श्रृंखला के बारे में, उस विशाल पर्वत के बारे में अगर कोई देखना चाहे तो वो देखता ही रह जाए।
2: रिपुदमन, रॉकी पर्वत दुनिया के सबसे शानदार प्राकृतिक अजूबों में से एक है। ये कोई छोटा मोटा पहाड़ नहीं है, बल्कि कनाडा के से शुरू होकर अमेरिका के कई राज्यों तक लगभग 4,800 किलोमीटर की लंबाई तक फैला हुआ है।
1: 4,800 किलोमीटर, तभी तो इसे बैकबोन ऑफ अमेरिका यानी अमेरिका की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। और साक्षी, है अगर कोई एडवेंचर के शौकीन युवा है तो उनके लिए तो वाकई में ये जन्नत जैसा है ना?
2: बिल्कुल, दुनिया भर के युवा यहाँ ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग और सर्दियों में स्कीइंग करने आते हैं। यहाँ का रॉकी माउंटेन नेशनल पार्क और येलोस्टोन नेशनल पार्क तो इतना खूबसूरत है कि फोटोग्राफर के लिए तो कोई सपने जैसा है।
1: अरे सही बात है साक्षी, लेकिन पता है इन विशाल पहाड़ों को देखकर मुझे क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से ये पहाड़ खड़े हैं इतनी मुश्किलों में, इतनी हर हवा के झोंके को, हर चीज को सहन कर रहे हैं, उसी तरह मेरा भी ये मानना है कि हमें भी

0: अपनी धुन में इसी तरह अडिग और मजबूत खड़े रहना चाहिए।
1: वाह रिपुदमन, ट्रैवलिंग के साथ साथ इतनी गहरी फिलॉसफी, पर बात तो तुमने एकदम सही कही। कुदरत ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। तो दोस्तों, अगर आप भी घूमने फिरने के शौकीन हैं तो अपनी बकेट लिस्ट में इस जादुई रॉकी पर्वत का नाम जरूर शामिल करें।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: बोल बोल के थक गया।
3: क्या हुआ?
2: नया किडबैग चाहिए।
3: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
2: करेक्ट।
3: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किडबैग।
4: RBI कहता है
5: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
6: आपका व्यवसाय आपकी पहचान,
7: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
6: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
7: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
6: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
7: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
6: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
7: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
6: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
7: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
8: नहीं रिपु दमन, सच बता रही हूँ, कल मैंने उसे अपने बीकानेर में इस भयंकर गर्मी में वो भी भारी भरकम लेदर की जैकेट पहने देखा।
9: अच्छा।
8: पसीने से बुरा

0: हाल था, लेकिन जब मैंने टोका तो कहता है, अरे तुम्हें क्या पता आजकल यही ट्रेंड में।
1: अरे बस यही तो बात है, इसी ट्रेंड के चक्कर में आजकल हम बीकानेर की तपती दोपहरी को भूल जाते हैं। मतलब जो चीज हमारे यहाँ के मौसम में, यहाँ के रहन सहन के हिसाब से बनी ही नहीं है, बस सिर्फ इसलिए पहन लेते हैं क्योंकि एक इंटरनेट पर किसी वीडियो में उसे किसी ने पहने हुए देख लिया।
0: बिल्कुल, मुझे तो कई बार लगता है कि हमारी जो जरूरतें हैं वो हम खुद तय नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे लिए कोई और तय कर रहा है। जैसे कल की बात ले लो, मेरे एक जानने वाले ने एक ऐसा महंगा फोन खरीदा जिसमें दुनिया भर के फीचर्स हैं, लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि इसमें आप काम क्या करते हैं, तो उन्होंने बोला बस कॉल और मैसेज। अब बताओ रिपुदमन, जिस काम के लिए एक सामान्य फोन ही काफी था, तो उसके लिए अपनी जमा पूंजी खर्च करने की क्या जरूरत थी।
1: इसे कहते हैं कि पड़ोस के घर में हाथी है तो हमें भी हाथी चाहिए, चाहे हमारे दरवाजे में वो घुसे चाहे ना घुसे। हम भूल जाते हैं कि हम इंसानों की जरूरतें अलग अलग है। मान लो कि मुझे भूख लगी है और मेरी भूख दो रोटियों से मिटेगी, लेकिन ट्रेंड के चक्कर में आकर मैं ये कहने लगूं कि मुझे तो कोई विदेशी फल खाना है, तो इससे मेरी भूख थोड़ी खत्म हो जाएगी।
0: बिल्कुल सही कहा। और हमारे बीकानेर के लोगों की तो भूख वैसे भी रिपुदमन भुजिया पापड़ और रसगुल्लों के बिना शांत कहाँ होती है। असल बात यह है रिपुदमन कि ट्रेंड को फॉलो करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हम बिना सोचे समझे अपनी असल जरूरत को नजरअंदाज करके उसके पीछे भागते हैं ना, तो गड़बड़ होती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सटीक बात कही है। मतलब जो चीज प्रैक्टिकली हमारे लिए जरूरी है उसे अपनाएं, बल्कि ये नहीं कि ट्रेंड के चक्कर में हम कोई भी चीज अपने लिए यूज कर रहे हैं चाहे वो हमारे काम की ही नहीं है, है ना।
0: बिल्कुल,
1: तो बस वही चीज है जो हमारे लिए बेस्ट है। मतलब हम जो चीज अपनाएंगे वही हमारे बेस्ट होगी और वही हमारा ट्रेंड बनेगी, तो वो सबसे अच्छी रहेगी।
0: बिल्कुल, तो श्रोताओं उम्मीद है कि आप भी इस देखा देखी के जंजाल से बाहर निकलकर अपनी असली जरूरतों पर ध्यान देंगे, क्योंकि जब जरूरत अपनी है तो चुनाव भी अपना ही होना चाहिए।
1: और चुनाव की बात हो ही रही है तो एक बेहतरीन गीत को भी हमारे लिए चुन लिया जाता है, क्योंकि इस बातों भरे सिलसिले में दिल को सुकून देने के लिए एक गाने का होना बहुत जरूरी है।

0: रिपुदमन, तुम खुद सोचो, कल मेरा एक दोस्त तेज बुखार में सिर्फ इसलिए उस पारिवारिक समारोह में गया क्योंकि उसे डर था कि अगर वो नहीं गया तो लोग क्या कहेंगे।
1: अरे अरे बस साक्षी, यही तो हमारे यहाँ समाज की सबसे पुरानी और पक्की बीमारी है, लोग क्या कहेंगे के चक्कर में हम खुद की अहमियत को सबसे आखिरी पायदान पर छोड़ देते हैं और दूसरों को खुश रखने के लिए जद्दोजहद में भूल जाते हैं कि हमारा अपना भी शरीर है, उसका भी मन है, वो भी कुछ मांग रहा है।
0: बिल्कुल सही कहा, बचपन से जो हमें ये सिखाया गया है ना कि दूसरों को पहले रखो, मेहमान जो है वो भगवान है, दोस्त यार ही सब कुछ है, बेशक ये बहुत अच्छी बातें हैं और हमारी संस्कृति का हिस्सा भी है, लेकिन इस सब के बीच हम खुद कहाँ खड़े हैं रिपुदमन। अक्सर हम खुद को इतना पीछे छोड़ देते हैं कि जब कभी अपने लिए कुछ करने या फिर अपना मन रखने की बारी आती है ना, तो एक अजीब सी घबराहट सी होने लगती है।
1: बिल्कुल, और इसका सबसे पहला काम और कदम यही हो सकता है कि हम अपने आप को अहमियत देना शुरू करें कि हमें ना कहना सीखना होगा। यकीन मानिए कि ना अपने आप में ही एक पूरा वाक्य है। अगर आप थके हुए हैं और किसी कार्यक्रम में नहीं जाना चाहते तो आप सो बहाने बनाने की बजाय, आप सो बहाने बनाने की जरूरत नहीं है ये कि मेरा पेट दर्द हो रहा है या अचानक मेरे घर में कोई आ गया, आप सहजता से ये कह सकते हैं कि माफ कीजिए, मैं आज थोड़ा थका हुआ हूं और मुझे आराम की जरूरत है। बिल्कुल, और साथ ही साथ में छोटी छोटी चीजों का भी आप जश्न मना सकते हैं, मतलब जैसे कि कभी अपने आप को खुश करने के लिए, क्योंकि अपन किसी दूसरे के लिए मोहताज ना रहे। जैसे आपने कभी खुद के लिए बढ़िया चाय बनाई तो खुद की पीठ थपथपा के कह दीजिए कि वाह क्या बात है रिपुदमन, तुमने तो बहुत अच्छी चाय बनाई है।
0: बिल्कुल, तो श्रोताओं उम्मीद है कि आज आप भी खुद से थोड़ी सी मोहब्बत और करेंगे। थोड़ा सा स्वार्थी होना वो भी अच्छे वाले तरीके से बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब खुद अपनी इज्जत करेंगे ना तभी, और अपने समय की जो कद्र करेंगे तभी ये दुनिया आपकी कद्र करेगी।
1: बिल्कुल साक्षी, और तभी, और अभी कद्र करने की बात जब उठी है तो मैं भी मानता हूँ कि मुझे मेरे कानों की कद्र करनी है, और वो चाहते हैं कि अभी उसे संगीत सुनाया जाए।
0: अच्छा।

0: साक्षी, तुम्हें ये मालूम है कि अपने इस रंगीले राजस्थान में लगभग 250 से भी ज्यादा किले गढ़ है। मतलब यहाँ अगर आप कुछ ही कोस पर निकलते हैं तो इतिहास नई नई कहानियां लेकर खड़ा होता है।
1: क्या 250 से भी ज्यादा किले? ये तो वाकई अचरज की बात है। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ पत्थरों की इमारतें नहीं हैं, ये अपने आप में एक पूरी दुनिया समेटे हुए हैं। तभी तो राजस्थान के 6 पहाड़ी किले यानी कि चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंबोर, गागरौन, आमेर और जैसलमेर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया गया है।
0: सही कहा। और हर किले की अपनी एक ऐसी कहानी है जो रोंगटे खड़े कर देती है। अब कुंभलगढ़ को ही ले लो। तुम्हें पता है कि कुंभलगढ़ के किले की दीवार जो है वो 36 किलोमीटर लंबी दीवार है। चीन की दीवार के बाद में दुनिया की सबसे दूसरी लंबी दीवार मानी जाती है। कहते हैं कि उस समय जब ये दीवार एकदम सही व्यवस्था में थी, उस समय इस पर 8 घोड़े एक साथ दौड़ा करते थे। जरा सोचो, जमाने में बिना किसी आधुनिक मशीन के ऐसा अजूबा कैसे बनाया गया होगा।
1: वाह, वाकई में ये तो अजूबा ही है। रिपुदमन, अगर किलो की बात कर ही रहे हैं तो हम हमारे बीकानेर को तो भूल नहीं सकते।
0: बिल्कुल नहीं।
1: हमारे बीकानेर का किला तो इन सब से बिल्कुल अलग है और अनोखा है। जूनागढ़, इसके बारे में तो कहावत भी है रिपुदमन की दीवारों के कान होते हैं, लेकिन जूनागढ़ की तो दीवारें ही बोलती है।
0: एकदम सही कहा। देखो साक्षी, राजस्थान में ज्यादातर किले ऊंचे पहाड़ पर बने हुए हैं ताकि दुश्मनों से बचा जा सके, लेकिन हमारे बीकानेर का जूनागढ़ का किला समतल जमीन पर बना हुआ है। इसे जमीन का जेवर भी कहा जाता है। राजा राय सिंह जी ने बनवाया था इस किले को, और इसके पीछे की सबसे कमाल की कहानी यह है कि जमीन पर होने के बावजूद भी ये जो अपना जूनागढ़ का किला है बिल्कुल अजय दुर्ग रहा है।
1: अजय मतलब इसे कोई नहीं जीत पाया?
0: बिल्कुल नहीं। इसका इतिहास गवाह है कि भारी आक्रमणकारियों ने इस पर कब्जा करने की बहुत कोशिश की और मतलब कोई सफल नहीं हो पाया। एक बार कुछ आंशिक घंटों के लिए इस पर कब्जा हुआ था, लेकिन उसे तुरंत छुड़वा लिया गया था।
1: अच्छा।
0: वरना जो बिना पहाड़ी के किले हैं वो समतल मैदान पर है, उन्हें दुश्मनों से बचे रहना बहुत मुश्किल है, और इस किले ने उन दुश्मनों के दांत खट्टे करवा दिए थे, उनके पसीने छुड़वा दिए थे।
1: वाह रिपुदमन, ये सुनकर तो सच में सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। जूनागढ़ के अंदर जो अनूप महल है और बादल महल की जो नक्काशी है वो तो वैसे भी

0: देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती है।
1: अपने बीकानेर वालों से तो वो हटके है ही नहीं, क्योंकि सब जानते हैं, और यहाँ जो बीकानेर में रहता है हर एक बच्चा ने जूनागढ़ देखा होगा, क्योंकि इसके ईंट पत्थर साक्षी हमारी पहचान है। ये हमें बताते हैं कि हमारे पुरखों ने अपनी आन बान शान से कैसे कैसे जिया है। आज जब हम इसके किले के झरोखों से देखते हैं तो समय गुजरता हुआ हमें महसूस होता है और कान में फुसफुसाता हुआ महसूस होता है।
0: सच कहा तुमने, इतिहास की इन गहरी और शानदार बातों में खोकर तो जैसे वक्त का पता ही नहीं चला। मन कर रहा है कि अभी निकल पड़े किसी किले की सैर पर।
1: तुमने वक्त की बात करके मुझे कुछ चीजें याद दिला दी। वक्त हो चला अभी कुछ सेगमेंट का, जो हमने शुरुआत में हमारे दोस्तों से प्रश्न पूछे थे उनके जवाब देने का। तो पहला प्रश्न है,
0: रॉकी पर्वत कहाँ स्थित है?
1: तो
0: रिपुदमन बताओ फिर इसका उत्तर।
1: उत्तर है अमेरिका, जिसकी हमने कुछ देर पहले बात की थी। अगर आपने हमारा प्रोग्राम अच्छी तरह से सुना हो तो आपको इसका जवाब मिल चुका होगा। और दूसरा प्रश्न है,
0: राजस्थान के किस किले को सोनार किले के नाम से जाना जाता है? तो बताओ फिर रिपुदमन इसका भी उत्तर।
1: इसका उत्तर है जैसलमेर का किला, अपने राजस्थान रो जैसलमेर रो किलो।
0: हाँ दोस्तों, आज की हमारी रोजगार सूचना का समय हो चुका है। आज की हमारी रोजगार सूचना उन साथियों के लिए है जो प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहते हैं। राजस्थान के रेलवे भर्ती बोर्ड ने टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए बम्पर वैकेंसीज निकाली हैं।
1: और इसके ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि दोस्तों 29 जुलाई 2026 रहेगी। और अधिक जानकारी पाने के लिए आप RRB की ऑफिशियल वेबसाइट
0: rrbapply.gov.in पर विजिट कर सकते हैं दोस्तों।
1: और साथ ही साथ दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आप नोटिफिकेशन अच्छी तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि उसके अंदर अधिक जानकारियां लिखी रहती है। क्योंकि साक्षी, अपन ने आज कितनी सारी बातें की अपने दोस्तों से और कितने सारे सुरीले गीत सुने। नहीं
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: और अपन ने जैसे कि किलों की बात करी और अपने आप को महत्व देने की बात करी दोस्तों।
0: बिल्कुल, और सोशल मीडिया के जो मित्र हैं हमारे, उनके क्या मायने हैं और असल जिंदगी के दोस्तों के क्या मायने हैं, ये भी जाना हमने।
1: देखो दोस्तों, जैसे आपको ये बता देता हूँ कि अपने जो असल जिंदगी में जो दोस्त है वही हमारे सबसे अच्छे दोस्त है। सोशल मीडिया पर चाहे आप कितने भी फॉलोअर्स क्यों ना गेन कर लीजिए, काम आपके वही आने जो आपके साथ हैं और हर मुश्किल घड़ी में आपका साथ निभाते हैं। नहीं
0: बिल्कुल बिल्कुल रिपुदमन, तो अब घड़ी की सुई की टिक टिक जो है वो हमें कह रही है कि हमारे युवा साथियों से विदा हमें लेना ही पड़ेगा।
1: नहीं लेना तो पड़ेगा, पर मेरे तो असल दोस्त यही है जो श्रोता मुझे सुन रहे हैं। पर क्या करें, समय की पाबंदियां हैं कि हमें इनसे अब विदा लेना पड़ेगा। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए नमस्कार।

साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युवाणी। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोल हमारा चैनल है। इस समय संध्या के 5:55 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण।

रात में 8 बजे हमारे श्रोता सुनेंगे फिल्म संगीत। हमारे श्रोता लोक संगीत का रसास्वादन कर पाएंगे रात्रि 8:30 पर।

रात्रि 9:30 पर आज आप सुनेंगे स्थानीय नाटक। नाटक का शीर्षक रहेगा इंद्रलोक और इसके लेखक हैं श्री भागीरथ रिवाड़।

0: उर्दू कार्यक्रम गुलिस्तां आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जयपुर के आमेर चैनल से रिले करेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 10:30 पर आज आप सुनेंगे वीजी जोग से वायलिन पर बजाया राग दुर्गा। इनके साथ तबले पर संगति करेंगे श्री अरुण घोषाल। ये था हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। संध्या के 6 बजने को ही अब हिंदी में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु की अमूल्य धरोहरों की वापसी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री राधाकृष्णन ने सांस्कृतिक धरोहरों को देश में वापस लाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। वर्ष 2014 से अब तक 600 से अधिक कलाकृतियां स्वदेश आ चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए आज मिशन संचालन समूह की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में लगभग 94 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता बनाए गए हैं और 105 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े गए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि मिशन के अंतर्गत एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि अगले चरण में इसके अधिक

0: उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में अंतर विभागीय सहयोग बेहतर बनाने, संस्थागत क्षमता मजबूत करने तथा उत्पादकता और सेवा वितरण को विकसित करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से एकीकृत, कुशल और भविष्य के लिए तैयार की गई पहलों की समीक्षा की। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली का कवच कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस परियोजना का लक्ष्य घनी आबादी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करना है। रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया है कि छत्तीसगढ़ के बलोद जिले ने पिछले एक वर्ष में वर्षा जल संग्रहण और संरक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए लगभग 285,000 जल संरक्षण और पुनर्भरण संरचनाएं स्थापित की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कैच द रेन अभियान की गति बनाए रखने का आह्वान किया था। इसके बाद बलोद जिला जन भागीदारी के दूसरे चरण के अंतर्गत सामुदायिक जल संरक्षण का एक उल्लेखनीय उदाहरण बनकर उभरा है। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इससे पहले अयोध्या की एक अदालत ने इस मामले में 8 आरोपियों में से 3 को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले महीने इस मामले में विशेष जांच समिति का गठन किया था। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और पूर्वोत्तर भागों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत के साथ लंदन के लॉर्ड्स में एकमात्र टेस्ट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 3 विकेट पर 122 रन बना लिए थे। ये पहला मौका है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलमारू चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 6:05 हुए हैं। फिल्म संगीत के अंतर्गत आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज की फिल्म है याराना। इस फिल्म का आइए सुनते हैं पहला गीत, स्वर किशोर कुमार का है।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं एक ही फिल्म से कार्यक्रम, और फिल्म का नाम है याराना। आइए आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं इसी फिल्म का एक और गीत, स्वर किशोर कुमार का है।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: एक ही फिल्म से कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुन रहे हैं फिल्म याराना के गीत। सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में इसी फिल्म का अगला गीत।

इस गीत के साथ ही एक एफएम से कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलमारो चैनल से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 6:30 होने को है। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड दौरे पर, दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा होगी। मध्य प्रदेश के गांधी सागर बांध से कोटा बूंदी क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। राजस्थान विधानसभा के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 15 जुलाई को विशेष आयोजन, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन शिरकत करेंगे। विश्व जनसंख्या दिवस कल, विशेष जन जागरूकता सप्ताह शुरू होगा। और प्रदेश में मॉनसून की रफ्तार धीमी हुई, करीब एक सप्ताह तक बारिश की गतिविधियों के कमजोर रहने की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की विदेश यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड दौरे पर हैं। ऑकलैंड पहुंचने पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी की अगुवानी की। प्रधानमंत्री श्री मोदी के इस दौरे से भारत और न्यूजीलैंड के बीच द्विपक्षीय संबंध, व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय सहयोग मजबूत होगा। इससे

0: प्रधानमंत्री श्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान खेल सहयोग के रोड मैप पर भी चर्चा की। दोनों देशों के बीच कबड्डी, खो खो जैसे पारंपरिक खेलों और अन्य खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शन मैचों और आयोजनों की मेजबानी के अवसरों का पता लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस रोड मैप से साझा प्राथमिकताओं, संसाधनों और सहयोग के क्षेत्रों की पहचान होगी, जिसका दोनों देशों को फायदा होगा।
1: भारत ऑस्ट्रेलिया मैच का रोमांच और दूसरा यह एहसास कि दोनों देशों में क्रिकेट केवल एक खेल नहीं लेकिन एक साझा जुनून है। लेकिन आज यहाँ कोई लास्ट ओवर फिनिश का प्रेशर नहीं है, आज यहाँ केवल खेल की खुशी है, हमारी मित्रता की गर्मजोशी है और फ्यूचर चैंपियंस की एनर्जी है।
0: केंद्र सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। इसके तहत उच्च अल्कोहल मात्रा वाली औषधियों के नियमन को और सख्त करने की कवायद की गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इथाइल अल्कोहल वाली दवाओं के लिए मौजूदा छूट खत्म कर दी है। मंत्रालय की एक अधिसूचना के अनुसार 30 मिलीलीटर से अधिक मात्रा में 12% से अधिक इथाइल अल्कोहल वाली सभी औषधियों को अब छूट नहीं मिलेगी। इन्हें अब औषधि और कॉस्मेटिक अधिनियम 1940 के तहत आवश्यक लाइसेंस लेना होगा। मध्य प्रदेश के गांधी सागर बांध से राजस्थान में सिंचाई के लिए पानी छोड़ा जाएगा। इससे कोटा बूंदी क्षेत्र के किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। गौरतलब है कि बूंदी और केशवराय पाटन क्षेत्र के किसानों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर नहरों में पानी की कमी और फसलों को नुकसान की आशंका पर चिंता जताई थी। श्री बिरला ने इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए राजस्थान और मध्य प्रदेश के अधिकारियों से बातचीत कर समाधान निकाला। बांध से कुल 6000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने पर सहमति बनी है। मीडिया से बातचीत में श्री बिरला ने बताया कि इससे करीब 2.25 लाख हेक्टेयर कमांड क्षेत्र के किसानों को फायदा पहुंचेगा।
2: पानी गांधी सागर से राणा प्रताप सागर में आना और राणा प्रताप सागर में पानी कम होने के कारण नहरों को छोड़ा जाना संभव नहीं था। गांधी सागर से पानी छोड़ने के बाद राणा सागर पानी आएगा तब नहरों में पानी आएगा। मैंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से आग्रह किया, वहाँ के मंत्री से कहा कि वे गांधी सागर में पानी राणा प्रताप को दे ताकि हमारे इलाके के किसानों की खेत तक पानी पहुंच सके। वहाँ की सरकार ने सिद्धांत सहमति दे दी है और आज कोटा के LMC RMC में पानी शुरू हो जाएगा।
0: यमुना जल हस्तांतरण परियोजना की DPR की पहली समीक्षा बैठक आज जयपुर में हुई। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अगुवाई में हुई इस बैठक में विभिन्न तकनीकी और वित्तीय पहलुओं पर चर्चा की गई। और ब्यौरा दे रहे हैं न्यूज डेस्क से हमारे सहयोगी रामनाथ मीना।
3: परियोजना के तहत अग्निकुंड बैराज से राजस्थान के हिस्से के यमुना के पानी को भूमिगत पाइपलाइन के जरिए चूरू के आशियावास पहुंचाने की समीक्षा की गई। इसके लिए पाइपलाइन प्रणाली 386 MCX क्षमता के विशाल जलाशय और अन्य बिंदुओं पर मंथन हुआ। साथ ही रेणुकाजी, लखवार और किसाऊ बांधों की प्रगति, राजस्थान के हिस्से का पानी और लागत भागीदारी पर भी विचार विमर्श किया गया। बैठक में यह भी बताया गया कि 34,102 करोड़ रुपए की संयुक्त DPR केंद्र जल आयोग के पास विचाराधीन है।
0: मुख्य सचिव ने ऊर्जा विभाग की प्रमुख योजनाओं की भी समीक्षा बैठक की। इसमें PM सूर्यघर योजना, PM कुसुम और ULA मॉडल की प्रगति पर जोर दिया गया। ULA मॉडल के जरिए 3 लाख घरों में 330 मेगावाट रूफ टॉप सोलर क्षमता स्थापित की जाएगी। बैठक में ये भी बताया गया कि राज्य के 172 ग्रिड सब स्टेशनों पर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS स्थापित किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। राजस्थान विधानसभा के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 15 जुलाई को विधानसभा में होने वाले इस अमृत महोत्सव में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन भी शिरकत करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी

0: आज जयपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में ये जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रमंडल संसदीय संघ राजस्थान शाखा की ओर से होने वाले इस आयोजन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का भी संबोधन होगा। उन्होंने बताया कि इस मौके पर विधायक गौरव यात्रा रखी गई है, जिसमें वर्तमान और पूर्व विधायकों का समागम होगा।
1: ये हमारे विधायकों का समागम, पूर्व वर्तमान का ये समागम का कार्यक्रम है। वह 15 जुलाई को प्रारंभ होगा और इसमें दो बातें जो विशेष हैं, एक तो हम अतीत का संस्मरण भी करेंगे और भविष्य के विधायी मार्ग का भी उसमें चर्चा होगी। इस दृष्टि से चार बड़े कार्यक्रम इस वर्ष भर में विचार किए, उसमें से पहला कार्यक्रम हम आगामी 15 जुलाई को इसी विधानसभा परिसर में हम लोग करने जा रहे हैं। उसके बाद विशेषता ये दो सत्र और है, जिससे 75 साल के अंदर जो हमने कानून इस विधानसभा में पारित किए उसमें से जो प्रमुख रहे हैं उसके बारे में जानकारी और चर्चा उन सत्रों में हो।
0: इस सम्मेलन में विधायी परंपराओं, सदन की गरिमा, संसदीय अनुभवों, चुनौतियों और विधानसभा के डिजिटल रूपांतरण सहित कई विषयों पर चर्चा होगी। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने आज संसद भवन परिसर में आगामी मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। संसद का सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मेघवाल ने बताया कि सत्र के लिए तय कामकाज की समीक्षा की गई और इस बारे में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। विश्व जनसंख्या दिवस कल मनाया जाएगा। इस दिन का उद्देश्य परिवार नियोजन, मातृ स्वास्थ्य और लैंगिक समानता तथा जनसंख्या मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राज्य सरकार की ओर से इस मौके पर विशेष जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रदेश भर में कल से 18 जुलाई तक जनसंख्या स्थिरीकरण सप्ताह मनाया जाएगा। इसमें छोटा परिवार, खुशहाल परिवार और बच्चों में सही अंतराल रखने के साधनों की जानकारी दी जाएगी। शिक्षण संस्थानों, एनसीसी और युवा क्लबों के सहयोग से जागरूकता रैलियां भी निकाली जाएंगी। साथ ही आशा सहयोगिनियों और स्वास्थ्य कर्मियों के माध्यम से घर घर संपर्क और परामर्श सेवाएं दी जाएंगी। इस बीच जनसंख्या स्थायित्व में बांसवाड़ा जिले ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। जिले के अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ भरत राम मीणा ने बताया कि लगातार तीसरी बार जिले को ये उपलब्धि हासिल हुई है। उद्योग और वाणिज्य विभाग ने 100 आइकन्स ऑफ राजस्थान पहल शुरू की है। इसके तहत उद्योग, व्यापार, निर्यात, स्टार्टअप्स, पर्यटन और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने वाले 100 व्यक्तियों का चयन किया जाएगा। उद्योग आयुक्त नीलाभ सक्सेना ने बताया कि इसके लिए 15 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि चुनी गई प्रतिभाओं को 100 आइकन्स कंपेंडियम में स्थान दिया जाएगा, साथ ही उनकी उपलब्धियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। श्रीगंगानगर के नेतेवाला के पास एक सड़क हादसे में आज 3 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई, वहीं 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। श्रीगंगानगर के पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने बताया कि दुर्घटना कार, ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर से हुई, जिसमें कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं मोटरसाइकिल सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रदेश भर में मॉनसून की रफ्तार आज से धीमी होने के आसार हैं। इससे अधिकतर स्थानों पर बरसात की गतिविधियों में कमी आ सकती है। हालांकि पूर्वी भागों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। लगभग एक सप्ताह तक मॉनसून की परिस्थितियां कमजोर रहने की आशंका है। इस दौरान कहीं कहीं छुटपुट वर्षा का पूर्वानुमान है। इस बीच हनुमानगढ़ जिले के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बरसात हुई। उधर पाली में आज सुबह से ही बादलों की आवाजाही और धूप छांव का असर रहा, वहीं बाड़मेर में धूल भरी आंधी चली। सवाई माधोपुर सहित कई जगह उमस भरी गर्मी से लोग परेशान रहे। कोटा के भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT का 5वां दीक्षांत समारोह आज आयोजित किया गया। रानपुर स्थित संस्थान के परिसर में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बीटेक, एमटेक और पीएचडी की उपाधियां प्रदान की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को देश को विकसित बनाने के लक्ष्य में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने के साथ ही राष्ट्र निर्माण में अपनी ऊर्जा लगानी चाहिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड दौरे पर, दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा।

0: सहायता होगी। मध्य प्रदेश के गांधी सागर बांध से कोटा बूंदी क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। राजस्थान विधानसभा के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में 15 जुलाई को विशेष आयोजन, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन शिरकत करेंगे। विश्व जनसंख्या दिवस कल विशेष जन जागरूकता सप्ताह शुरू होगा। और प्रदेश में मॉनसून की रफ्तार धीमी हुई, करीब एक सप्ताह तक बारिश की गतिविधियों के कमजोर रहने की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से जोधपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख रामेश्वर बेड़ा ने तैयार किया है। बीते दिनों जोधपुर को एक नए एयरपोर्ट टर्मिनल भवन की सौगात मिली। 37 एकड़ में बने इस आधुनिक टर्मिनल की वार्षिक क्षमता 20 लाख यात्रियों की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस टर्मिनल भवन का लोकार्पण किया। ये टर्मिनल भवन 480 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने संशोधित उड़ान योजना के दूसरे चरण की भी शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से छोटे शहरों को बेहतर हवाई संपर्क मिलेगा और पर्यटन तथा रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इस नए टर्मिनल भवन के बनने से स्थानीय लोगों और पर्यटन व्यवसायियों में उत्साह का माहौल है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीते दिनों जोधपुर प्रवास पर पहुंचे। उन्होंने प्रधानमंत्री के जोधपुर एयरपोर्ट टर्मिनल पर प्रस्तावित दौरे की तैयारियों की समीक्षा की। अगले दिन वे वापस आए और भाटी चौराहे पर आम जन के साथ चाय पी और स्थानीय नागरिकों से आत्मीय संवाद किया और इसके बाद यूपीआई से भुगतान कर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने का संदेश दिया। जिला स्तरीय रोजगार उत्सव में विभिन्न विभागों में चयनित 1795 नवनियुक्त अभ्यर्थियों ने भाग लिया। पचपदरा से राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हुआ। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने 20 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। जोधपुर मंडल के 14 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। महिला यात्राओं की सुविधा के लिए जोधपुर रेलवे स्टेशन पर वात्सल्य कक्ष भी बनाया गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने कहा है कि ट्रेनों के बढ़ते विद्युतीकरण से पिछले दो वर्षों में 2,84,00,000 लीटर डीजल की बचत हुई है। वर्तमान में अधिकांश ट्रेनों का संचालन विद्युत इंजनों से हो रहा है, जिससे प्रदूषण और परिचालन लागत दोनों में कमी आई है। स्वच्छता पखवाड़ा अभियान में भी उत्तर पश्चिम रेलवे को देश में दूसरा स्थान मिला है। उधर उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय परिसर में नव लोकार्पित सेंटर फॉर डेवलपमेंट रेल कर्मियों और अधिकारियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। डीआरएम अनुराग त्रिपाठी की पहल पर बनाए गए इस वातानुकूलित केंद्र में प्रशिक्षण, करियर काउंसलिंग, शोध, व्यक्तित्व विकास और नवाचार के कार्यक्रम होंगे। यहां डिजिटल म्यूजियम, पुस्तकालय, स्पोर्ट्स अरीना, डिजिटल वॉल और कैफे कॉर्नर जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरा होने पर जोधपुर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। 3 दिवसीय विकास प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों की जानकारी आम जन को दी गई। आईआईटी जोधपुर के 2 वैज्ञानिक यूरोप स्थित सर्न CERN की एटलस परियोजना से जुड़कर लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के आंकड़ों पर मशीन लर्निंग आधारित शोध करेंगे। वे ब्रह्मांड की संरचना, कणों के गुण और नए वैज्ञानिक सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। केंद्रीय निदेशक प्रोफेसर अविनाश अग्रवाल ने इसे संस्थान के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। MBM विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने AI पर आधारित एक ऐसा मॉडल विकसित किया है जो मिर्गी के दौरे से पहले चेतावनी देने में सक्षम है। भविष्य में इस तकनीक पर आधारित पोर्टेबल उपकरण विकसित करने की योजना है। वहीं IIT जोधपुर के शोधकर्ता नई पीढ़ी के बायो मार्कर्स भी विकसित कर रहे हैं, जिनसे उपचार शुरू होने से पहले ही कीमोथेरेपी की प्रभावशीलता का अनुमान लगाया जा सकेगा। शोध में सिंगल सेल सीक्वेंसिंग, मल्टीकलर हाई पैरामीटर, फ्लो साइटोमेट्री और आधुनिक आणविक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। इससे कैंसर उपचार अधिक सटीक, व्यक्तिगत और प्रभावी बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिले भर में सामूहिक योगाभ्यास आयोजित किए गए। जन प्रतिनिधियों, अधिकारियों, विद्यार्थियों और आमजन ने

0: योग कर नियमित जीवन में योग अपनाने का संदेश दिया। जोधपुर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड दौरा मत है। दोनों देशों बीच कारोबार निवेश और क्षेत्रीय सहयोग मजबूत करण मत चर्चा करी जावेला। मध्य प्रदेश रा गांधी सागर बंधन कोटा बूंदी हलका रा किसाना ने पाणत सारू पानी मिलेला। राजस्थान विधानसभा रा 75 साल पूरा भेवन रा सिलसिला माय 15 जुलाई ने खास आयोजन उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्ण ने शिरकत करेला। विश्व जनसंख्या दिवस काल मनायो जावेला। जन जागरूकता सप्ताह शुरू भेला और प्रदेश में चौमासारी बिरखा सुस्त पड़ी। करीब एक सप्ताह ताई बिरखा कम भेवन रा आसार।

0: पूरा विवरणा सिलसिला में 15 जुलाई ना खास आयोजन उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्ण ने शिरकत करेला। विश्व जनसंख्या दिवस काल मनायो जावेला। जन जागरूकता सप्ताह शुरू भेला। और प्रदेश में चौमासारी बिरखा सुस्त पड़ी। करीब एक सप्ताह ताई बिरखा कम विवरण रा आसार। समाचार सागे में सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों रा दौरा रा आखिरी चरण में आज न्यूजीलैंड में ऑकलैंड पुग्या। न्यूजीलैंड रा प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन श्री मोदी री अगवानी किनी। प्रधानमंत्री मोदी रा ई दौराऊ भारत और न्यूजीलैंड बीच आपसी रिश्ता कारोबार निवेश और क्षेत्रीय सहयोग मजबूत बनेला। इनु पहले श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया रा दौरा री बगत खेल सहयोग रा रोड मैप रा बारा में चर्चा किनी। रोडमैप रा तेत दोनों देशों बीच कबड्डी और खो खो सरीखा पारंपरिक खेलना समेत न्यारा न्यारा खेलना ने बधावो देवन सारू प्रदर्शन मैच और आयोजनारी मेजबानी रा मौका री ठाकरी जावेला। प्रधानमंत्री मोदी कहो कयां भेड़ी प्राथमिकतावां साधन और सहयोग रा हलका ने पिछाण करी जावेला जिणो दोनों देशों ने फायदो मिलेला।
1: भारत ऑस्ट्रेलिया मैच का रोमांच और दूसरा यह एहसास कि दोनों देशों में क्रिकेट केवल एक खेल नहीं लेकिन एक साझा जुनून है। लेकिन आज यहाँ कोई लास्ट ओवर फिनिश का प्रेशर नहीं है। आज यहाँ केवल खेल की खुशी है, हमारी मित्रता की गर्मजोशी है और फ्यूचर चैंपियंस की एनर्जी है।
0: मध्य प्रदेश रा गांधी सागर बंधाऊ राजस्थान माए पाणत सारू पानी छोड़ो जावेला। इनु कोटा बूंदी हलका रा किसाना ने फायदो मिलेला। ध्यान जोग है कि बूंदी और केशोराय पाटन हलका रा किसान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला उम्मीलर नहरा माए पानी री कमी और साखा ना नुकसान री शंका जताई ही। जिन पाछे श्री बिरला राजस्थान और मध्य प्रदेश रा अहलकारों बातचीत कर जरूरी हुक्म दीना। ई बंधाऊ 6000 क्यूसेक पानी छोड़न माथे एक राय बनी है। शुरुआती दौर में 200-300 क्यूसेक पानी छोड़ो जावेला। इनु करीब 2.25 लाख हेक्टेयर कमांड हलका रा किसाना ने फायदो मिलेला।
2: पानी गांधी सागर से राणा प्रताप सागर आना और राणा प्रताप सागर में पानी कम होने के कारण नहरों को छोड़ा जाना संभव नहीं था। गांधी सागर से पानी छोड़ने के बाद राणा सागर पानी आएगा तब नहरों में पानी आएगा। मैंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से आग्रह किया, वहाँ के मंत्री से कहा कि वे गांधी सागर में पानी राणा प्रताप को दे ताकि हमारे इलाके के किसानों के खेत तक पानी पहुंचे। वहाँ की सरकार ने सिद्धांत सहमति दे दी है और आज कोटा के LMC RMC में पानी शुरू हो जाएगा।
0: जयपुर माए आज यमुना जल हस्तांतरण परियोजना री DPR री पहली समीक्षा बैठक रखी जी। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास री सदारत माए हुई मीटिंग माए न्यारा न्यारा तकनीकी और माली पहलुआ ने बारा माए चर्चा करी जी। ई परियोजना रा तहत हथिनी कुंड बैराज राजस्थान री पांती रो यमुना नदी रो पानी जमी हेठ पाइप लेन रे जरिए चूरू जिला रा हासियावास ताई पोगावन रा काम रो जायजो लियो छो। ई सारू पाइप लेन सिस्टम 386 MCX बुतारा जलाशय और दूजा मुद्दा माथे विचार करी छो। इस आगे रेणुका जी लखवार और किशाऊ बंधाना काम राजस्थान री पांती रा पानी और खर्च माए भागीदारी रे बारा माए विचार करी छो। मुख्य सचिव ऊर्जा विभाग री PM सूर्य घर योजना PM कुसुम और UAL मॉडल सरीखी खास योजनावां रोई जायजो लीनो। UAL मॉडल रे जरिए 3 लाख घरों री छत माथे सूरज री रोशनी 330 मेगावाट बिजली बनावन री मशीना लगाई जावेला। मीटिंग में बताई चियो कि राज्य रा 172 ग्रिड सब स्टेशन माथे बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS लगाया जावेला। ऐसा समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहे हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक मत है AIR News Rajasthan पर आई सुन सको हो। इस आगे आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in मत है समाचार सुन सको हो और

0: संबंधित फोटो और वीडियो देख सको हो। राजस्थान विधानसभा 75 साल पूरा भ्रमण रा सिलसिला में 15 जुलाई ने खास कार्यक्रम रखो जावेला। विधानसभा भवन में रखा जावन वाला ई अमृत महोत्सव कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने शामिल फैला। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी आज जयपुर में खबर नवीसा ने आज जानकारी दीनी। वे बतायो कि राष्ट्रमंडल संसदीय संघ री राजस्थान शाखा री ओर रखा जावन वाला ई आयोजन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला विचार बतावेला। श्री देवनानी बतायो कि ई मौके विधायी गौरव यात्राई रखी जावेला जिनमें मौजूदा और पहली वाला विधायक ही शामिल वेला।
1: ये हमारे विधायकों का समागम पूरा वर्तमान का ये समागम का कार्यक्रम है। वह 15 जुलाई को प्रारंभ होगा और इसमें दो बातें जो विशेष हैं, एक तो हम अतीत का संस्मरण भी करेंगे और भविष्य के विधायी मार्ग का भी उसमें चर्चा होगी। इस दृष्टि से चार बड़े कार्यक्रम इस वर्ष भर में विचार किए। उसमें से पहला कार्यक्रम हम आगामी 15 जुलाई को इसी विधानसभा परिसर में हम लोग करने जा रहे हैं। उसके बाद विशेषता ये दो सत्र और है जिससे 75 साल के अंदर जो हमने कानून इस विधानसभा में पारित किए उसमें से जो प्रमुख रहे हैं उसके बारे में जानकारी और चर्चा उन सत्रों में हो।
0: सम्मेलन में विधायी परंपरावां सदन री गरिमा संसदीय अनुभव चुनौतियां समेत कई मुद्दा माथे चर्चा करी जावेला। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन आज संसद भवन परिसर में मानसून सत्र री तैयारियां रो जायजो लीनो। संसद रो पावस सत्र 20 जुलाई और 13 अगस्त तक चलेला। सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए मेघवाल बतायो कि सत्र शुरू ते कामकाज रो जायजो लियो छियो और जरूरी हुक्म दिया छिया। काल विश्व जनसंख्या दिवस मनायो जावेला। इनरो मकसद परिवार नियोजन मातृ स्वास्थ्य लैंगिक बराबरी और जनसंख्याओं जुड़िया मुद्दा न बारा माय जाग जगावनो है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राज्य सरकार री ओर इमोके खास कार्यक्रम रखा जावेला। आखर राज्य में काल 18 जुलाई ताई जनसंख्या स्थिरीकरण सप्ताह मनायो जावेला। इना तेत नाना और खुशहाल परिवार और बच्चा बीच सही आंतरो राखन सारू जरूरी साधना री जानकारी दी जावेला। स्कूल कॉलेज एनसीसी और युवा क्लबां नी मदद जागरूकता रैलियां निकाली जावेला। इस आगे आशा सहयोगिनिया और स्वास्थ्य कर्मचारियों रे जरिए घर घर संपर्क कर और परामर्श सेवा दी जावेला। इबीचे जनसंख्या स्थायित्व रा मामला में बांसवाड़ा जिलो आखा राज्य में अव्वल रहो है। जिलारा अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर भरत राम मीणा बतायो कि जिला में लगातार तीजी दफा आ उपलब्धि हासिल हुई है। उद्योग और वाणिज्य विभाग 100 आइकन्स ऑफ राजस्थान पहल शुरू कीनी है। इन अतीत उद्योग कारोबार परदेश माय बिक्री स्टार्टअप्स सैर सपाटा और दूजा हल्का माय खास काम करने वाला 100 जना चुनिया जावेला। उद्योग आयुक्त नीलाभ सक्सेना बतायो कई सारो 15 अगस्त ताई ऑनलाइन तरीकों अर्जी दी जा सके है। वे बतायो कि चुनी जान लोगों ने 100 आइकन्स कंपेंडियम माय जगह दी जावेला और वानी उपलब्धियां रो न्यारा न्यारा डिजिटल प्लेटफॉर्म माथे दर्शाव करियो जावेला। श्री गंगानगर जिला में नेतेवाला कना एक कार रे ट्रक री फेंट में आ जावण 3 जना री मौके ही मौत हुई की। श्री गंगानगर रा एसपी हरिशंकर बतायो कि हादसा रे दौरान एक मोटरसाइकिल रही आ गाड़ियों ने फेंट में आ जावण 2 जना जख्मी फेंक्या। अरब मौसम प्रदेश में अब करीब एक सप्ताह ताई चौमासा री बिरखा थोड़ी कम पड़बा रा आसार है। हालांकि राज्य रा उगली हल्का माय कठे कठे हल्की मझला दर्जा री बिरखा री संभावना है। इन दौरान कठे कठे छिटपुट बिरखा फै सके है। ये बीचे हनुमानगढ़ जिला रा कई हल्का माय आज बिरखा फी पाली माय संवारे हुई बादला मंडिया रहा। दूजी कानी बाड़मेर माय आंधी चाली और सवाई माधोपुर समेत कई ठोणा उमस रो असर रहो। कोटारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIIT रो 5वां दीक्षांत समारोह आज संस्थान रा परिसर में रखी छियो। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला विद्यार्थियों ने बीटेक एमटेक और पीएचडी री उपाधियां देर नवाजा। इस मौके वे कहो कि विद्यार्थियों ने विकसित भारत बनावन रा लक्ष्य में सक्रिय भागीदारी करन सागे देश बनावन में ताकत लगावनी चाहिए। प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई दी इतवार ने आकाशवाणी रा मन की बात कार्यक्रम में विचार बतावेला आ हर महीना प्रसारित करया जावन वाला ई कार्यक्रम री 136वीं कड़ी फैला इसारू आप ही सुझाव मुफ्त नंबर 1800117800 माथे भेज सको हो नंबर जो सुन ले रहा हो सा 1800117800 नरेंद्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम के जरिए ही विचार भेजा जा सके है आप 24 जुलाई ताई विचार भेज सको हो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव आज कोयंबटूर में मानव वन्य जीव संघर्ष पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रो उद्घाटन कीनो इसा गई वह देश भर में मानव वन्य जीव संघर्ष री घटनावा री बेहतर निगरानी सारू राष्ट्रीय पोर्टल री शुरुआत कीनी इस दौरान भी मीटिंग में इंसाना और जंगली जनावरा ना टकराव में रोकन सारू नवी तकनीक और स्थानीय समुदाय री भागीदारी माथे जोर दियो चियो बैठक में वह कहो कि देश री समृद्ध जैव विविधता और वन्य जीव विरासत ने बचावन में वैज्ञानिक अनुसंधान रो खास काम है आखिर में खास समाचार एक और फिर सुन ले रहो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड दौरा माथे दोनों देशों बीच कारोबार निवेश और क्षेत्रीय सहयोग मजबूत करने के बारे में चर्चा करी चावेला मध्य प्रदेश रा गांधी सागर बंधम कोटा बूंदी हलकारा किसाना ने पाणत सारू पानी मिलेला राजस्थान विधानसभा रा 75 साल पूरा भिवंडा सिलसिला में 15 जुलाई ने खास आयोजन उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने शिरकत करेला विश्व जनसंख्या दिवस

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारु चैनल से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 7 बज चुके हैं। अब ग्रामीण भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्रामीण जगत।

0: सन्भ राम राम। देखो बजरंग भाई, चौमासे रिचाव में और मेरी उड़ीक में कई किसान जगह खेत में जेठी बाउड़ी बाजरी में निनान करे है और कई अड़ोतियन अड्डी के जेठ बिरखा कम हुई, पर आज कुदरत रिकाई मेर बनी रापन बीकानेर ओले दौड़े थोड़ी तेज हवा चलन लागी, उम्मीद की कम हुई कि बिरखा के टकिंदर कुन्ने गई, बिरखा तो कुन्ने गई, पर आज कार्यक्रम में अथाई करण ताई हूँ रामस्वरूप बिश्नोई और मारे आगे
1: बजरंग सारस्वत।
0: बजरंग भाई धने मोकला मोकला राम राम और कार्यक्रम सुन नाला सगला बेन भया टाबरिया ने ए बनी जनाड़ार खेती करण नाड़ार काम धंधन जोड़ हगला आज कार्यक्रम रचे कड़ले तोरे ताई आपर हागे रे ईर का यथाई कर आप
1: रामस्वरूप भाई थाने भी मारा घना घना राम राम और कार्यक्रम सुनिया सगड़ा भाई बनाने भी मोकड़ा मोकड़ा राम मासामा।
0: अब देखो काम री बात आए बजरंग भाई यथाई करता रे वहां बेड़प री बात होती रही भाईचारे री बात करा मिनुख फणे री बात कर हा पण हुन नाला उड्डी के मैं तो खेती बाड़ी हूं जुनूदार थार कार्यक्रम मार गांव वाला किसान खातर तो मेरी यहां इच्छा हुआ कि आज जके आप गर्मी के टाइम में जी बीकानेर क्षेत्र में आप जेका श्याणा लोग और कृषि रा जानकार लोग के वे कुष्मांड कुल री जकी सब्जियां है बिरी थोड़ी अथाई करा।
1: बिल्कुल सर, तो अः कहीं आपा गर्मी री ऋतु रे महीने ग्रीष्मकालीन कुष्मांड कुल री सब्जियां हैं बार उत्पादन आपा ले सका तो रामस्वरूप भाई ई बारे में आज आप कहीं बताओला।
0: मैं तो यहाँ कहूँ की हिद हिद बात आ है कि थे उड़जार छोड़ दिया कहीं हम जो कुष्मांड जन हिद हिद नाम है कद्दू वर्ग री जकी सब्जियां हैं।
1: बिल्कुल
0: जकेर मायने लौकी है, तोरियो है, खीरो है, करेलो है, टींडसी है, काकड़ियो है, आपने ठहन तरबूज है, खरबूज और खुद कद्दू भी है, आंगी कहीं वे बेला हुए और कम पानी में बा गर्मी सहन कर ले और बीकानेरी रेतीली जकी मिट्टी है बिर मायने रा तपते ताव

0: प्रणाली शुष्क जलवायु एर खातर उपयुक्त हुआ
1: बिल्कुल सर। और ओ जो जुलाई रो ओ दूजो हफ्तो शुरू हो गयो है इन महीने बिरखा रे पछे बुआई रो सही समय है और नमी मिलता ही बीज रो अंकुरण है वो घन करो हो जावे
0: हो जाया करे। अब थोड़ी बात बने कि अपन जे बाजार जान जान कई बार गांग की किसी लौकी लावा किसी तोरई लावा किसी खीरो लावा किसी टिंडो लावा किसी करेले री किस्म लावा तो मनिया लागे थे कि बात ना चाहे कि भाई आरी जगी किस्म है बे किसी किसी
1: बिल्कुल सर। तो बुआई आप करनी चाहो उत्पादन लेना चाहो तो जे आप लौकी री बुआई करनी चाहो उत्पादन लेना चाहो तो इरी उन्नत किस्म जिकी है जिकी अच्छी है पूसा नवीन पूसा समृद्धि और अर्का बहार। जे आप तोरी लेनी चाहो तो आपने पूसा चिकनी पूसा नसदार जिकी किस्म है आ लेनी चाहिए। खीरे रो उत्पादन लेना चाहो तो पूसा उदय है पूसा संयोग है बे अच्छी देसी। और टिंड सी जे लेनी चाहो आप टिंडा तो बीकानेरी ग्रीन और पंजाब टिंडा एक ए आप रे सारू घनी उपयुक्त रेवेला। और करेला सारू किस्म है पूसा दो मौसमी और प्रीति।
0: अब देखो थे नाम की तो फूटर फूटर लिया करेले री प्रीति है लौकी री समृद्धि है
1: बिल्कुल सर।
0: पण आपना किसान तो बे है जका परंपरागत खेती करे लारले साल तोरी बोई और आप रे कोई कपड़े मानी बेली कर राखी जा मान लो जे खीरो बोयो तो बीरा बीज राख लिया तोरी राख लिया तो आ तो फूटरी बात है कि अपन बाजार जानो को पड़े नहीं रहा अपनी जो की पुरानी विद्या है बने आप काम में लो। अब बुआई खातर कहीं है कि तो बीज क्या नाकड़ों में थोड़ी बात कर लूं कि खेतरी तैयारी आप दो तीन जुताई कर चोखो पाटो लगार बीर मायने गोबर री खाद जकी है 15-20 टन ताई आप प्रति हेक्टेयर डाल सको हो। और बीर सारू एक फूटरी विधि है थावला विधि। थावले रो मतलब ही दो जान गया कि थे क्यारी बनाए 2x2 मीटर जका एक थाव बना दो बीर मायने 3-4 बीज 3 सेमी ताई गहरा लगाओ। देखो एक थावले में 3-4 बीज लगाना कई बार आप कहीं के गणक रोग नागदा तो में जड़ा जड़ा बीज उगे पछे बे उड़ जार छोड़ दे ने तो फल दिशे ने आप इकट्ठा कर सका। बीज रिदर है जकी लौकी 3-4 किलो तोरई है जकी 3-4 किलो और खीरो 2-2.5 किलो आप नाक सको टिड्डो 4 किला और करेलो जो को है वो थोड़ो बतो नाकनो है नी 5-6 किलो प्रति हेक्टर। बीज उपचार आप 2 ग्राम कर्मोडिजिन प्रति किलो रिदर सु आप कर सको हो
1: बिल्कुल सर। और खाद और पानी जो भी आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है। खाद आप बुआई री वेड़ा 50 किलोग्राम नाइट्रोजन सागे सागे 50 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर हिसाब देव तो ठीक रहे। फूल आउती वेड़ा 50 किलोग्राम नाइट्रोजन जो की है वह टॉप ड्रेसिंग कर देव तो अपा सारू अच्छी रेसी। सिंचाई री बात करा तो पेलड़ी सिंचाई बुआई रे तुरंत पछे कर देनी है। फिर 7-8 दिन रे आंतरे माथे हल्की सिंचाई करनी है। और ड्रिप होवे तो अपर 30% ताई पानी की बचत हो सके। मल्चिंग विधि आप अपनाओ जिया के प्लास्टिक मल्च या घास फूस बिछाओ तो नमी बढ़ोड़ी रेवे और खरपतवार है वो कम सु कम पनपे।
0: कितनी फूटरी बात होते मन हगड़म चौकी दाय बजरंग आई कि अजग मल्चिंग है नी आप खाली कुष्मांड कुल खातर ही नहीं आप छोटा पौधा खातर भी कई बार क्या कि तब ते तावड़े उन नाले में पानी दे को सका नहीं जन आप कहीं करा घास फूस हुए बिन बाल दा का कोई कचरे हागे नाक दा पर मारी कहने मतलब वो है कि भी पौधे कन्ने कन्ने नाक दो पानी रमाथे जके कहीं ये नीचे नमी बनोड़ी रही। और बीकानेर क्षेत्र में जगह किसान है वे मचान विधि उपयोग में लायर बहुत बढ़िया भी मचान माथे चढ़ायर भी हूँ कहीं वे कि फल जगह है वे मिट्टी के संपर्क में को आवे नहीं कोई कीड़ा मकोड़ा को खाए नहीं ऊंचा रही चोटी चौकी लटकती तो तोरियों लागी टिंडा भी लागी फूटरी मचान री जगह ऊंचाई है बा 6 फीट तक आप राख सको जगह आप आसानी तोड़ सको।
1: बिल्कुल सर। और कीट रोग नियंत्रण सारू भी आपने कमर कसर सावचेत रहना है। फल मक्खी जे लाग जावे तो मिथाइल यूजिनोल ट्रैप है बा 10 प्रति हेक्टेयर हिसाब अपने काम लेनी है। खराब फल ने तोड़ रहा पर जमीन में दबा देवा खाडो खोदर बूर देवा तो ठीक रहे। लाल भृंग जे पनपन लागे तो आप इमिडा क्लोप्रिड 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर रे हिसाब से आप छिड़काव करो तो ठीक रहे। सागे ही चूर्णेल आसिता है तो आप घुलनशील गंधक 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव कर सको आपने चोखो उत्पादन मिलेगा।
0: ए तो कुछ कीट नियंत्रण की बात ही रब विशेष बात है कि ए जकी सब्जियां है कम अवधि में गर्मी सहनशील ले ले पर अब हुन नड़ा हूं होचे

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। जलवायु परिवर्तन क्या है? यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु हमेशा प्राकृतिक रूप से बदलती रही हैं, जिसमें अत्यधिक ठंड और गर्म अवधियां शामिल हैं। वैज्ञानिक बर्फ के परतों, पेड़ों के तनों पर बने छल्लों और अनेक प्रकार के कोरल को देखकर इन परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। लेकिन आज मानवीय गतिविधियां जैसे तेल, गैस और कोयला जलाना और जंगलों को काटना जलवायु परिवर्तन को तेजी से बढ़ा रही है। इससे मौसम में और भी ज्यादा उतार चढ़ाव, पौधों और जानवरों की हानि तथा पानी, भोजन और ऊर्जा की समस्याएं पैदा होती हैं। जलवायु परिवर्तन का मतलब है तापमान और मौसम के तरीकों में लंबे समय तक होने वाला बदलाव। यह एक रोचक तथ्य है। औद्योगिक युग से अब तक पृथ्वी का औसत तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ चुका है।
3: बजरंग भाई, देखो संदेशा फूट रही बात बताया अपन की हम प्रेरित हुए काम भी करना चाहिए जन जलवायु खातर कर सका, दूजी संस्कृति और सभ्यता की बात कर सका। और अब यहाँ लागे कि पशु डांगर खातर चूंकि आप खेती रहा गए कोई दन पशु रखा दिनों दापो रखा तो घरे ठीक है दिनों।
4: हाँ बिल्कुल ठीक है सर, दो गायें ब्यावड़ी है।
3: फूटी बात है, वो करे कहीं की शहर मायने पशु डांगर खातर चारो लावनो का तो पहली गणख रोग बेड़ो कर न खड़ो है, हुको चारो ही नाखो का लीलो लार नाखो
4: सूको चारो ही नाखा राम सरू भाई, हरो चारो तो है ए तो
3: कहीं है तो है बन पण कई बार आप लाई जको नी। एक तो है कि खेत में आप रिज को बोयो, जई बोई, ज्वार बोई, बाजरो, गिन्नी घास है, अंजन है, सेवण है, तो हिदी खेत में बड़ी काटी और कुतर कर आप हाथों हाथ पशु ने खड़ा सका। पण कई बार नमी हुए मौसम रमायण या आगले उन्नाले रमायण आपने खड़ावनो है तो आप भी हरे चारे ने सुखा बेड़ो करा। देखो बजरंग भाई आ बात कोई आज ही कोनी, आपना बडेरा कहीं करता पहली हेवन बाउता बूट बाउता जन कहीं हो तो के चोखो साफ मौसम आउ तो नहीं दियाली रासे पासे जन बेड़ा उर हेवन काट एर बंगा चोखा पुला बना राख लेता जन बिन बोटा होता तो कोनी रे एक डिगली देर छोड़ देता कि भाई पछ चोखो मौसम साफ हुई नी जिन्हें मिंगी कुतर कर घरे लिया आवा। वो थरे कृषि का जानकार लोग है नी, इन्हें केवे
4: हे केवे हे।
3: हाँ अब हे कहीं मंत लगे हे वो
4: हरिगन थे ये तो हंकार आपा की नहीं।
3: हाँ ये आयोग है हंकार ने भी हे केवे पन शांत्री भाषा में वनस्पति जगत रा लोग इन्हें केवे हे रुजगो पशुर खातर संतुलित आहार रूप है। वो अपने बीकानेर में मई जून सितंबर अक्टूबर में चारो सुखाने चोखो टेम है। अब ये बनाउन खातर करनो काई ये बात है कि केवे आन के
4: रामसुर भाई ये बनाउन सारू आपा कई बांतरी विधियां ने अपना सका। हाँ। जी हां के आपा जमीन माथे सुखावने री विधि सु भी आपा कर सका।
3: आ तो बरसों चल रही है
4: तो चारे ने दिनुगेरी वेड़ा ओस सुखन दे पछे काटनो है, फिर खेत में 4 से 5 इंच मोटी टेम में भी ने फैला देवनो है, दिन में 2-3 बार भी ने पलटनो है, फोरसार करना है ताकि 2-3 दिन में नमी है बा घट घटार 15 से 20 फीसदी ताई रह जावे। और ओ ध्यान रखना है कि पत्तियां नहीं झड़ जावे, तेज तावड़े में रंग उठ जावे, इस वास्ते हल्की छाया है भी में सुखाना है।
3: अब देखो आप बाजार में जे चारो लावण जानी तो धोड़ो पड़ूड़ो हुए या पत्तियां काली हुए जन आप खरीदा को नहीं, क्योंकि उनकी जखी वास्तविक रूप है नी। देखो अरेपन ही चारे ने फूट बनावे और करे कहीं काले चारे हूं, एक थे विधि बतावे हा कि ट्राइपोड या स्टैंड विधि, मन तो लागे आ तो कोई थोड़ो गंड ये बनावे तो काम आ जाए। 3 लकड़ी रा स्टैंड बना चारे ने टांगदार हवा आर पार

0: आजकल जे दिन हुक जे बारिश रुखतरो कम हुए पत्यांक झड़े कोनी पण यो तो छोटो कोई किसान वे बो लगा सके मोटा खातर तो भाई आपनी जकी सुखाने री जमीन माथे विधि है बाया डिगली देवने री ठीक है
1: भाई ठीक है ना।
0: एक बात थी बीच में करीबी बात ना हूं थोड़ो उथलो देर बताऊं थे क्योंकि पत्तियां जड़े नहीं
1: हाँ हाँ
0: वे कहीं कि आपनो किसान चारे कानीर बुट कानीर घास कानी ध्यान कम देवन लाग गयो आजकल उबे घास ने काटे कोनी का तो दंडा अंग्रन माए चरण खातर छोड़ दे जन बे पगाऊ खिचर दे काबो भी घास ने काटने में लेट कर दे दिया दियाली रे बाद रो टेम बूझे जितद विंग पत्तियां जड़ जे वो धूप में दौड़ो ही पड़ जे टेम वो है कि बगत रे हारू अपन है जितना बीरी पत्तियां हरी वे पत्तियां जड़े नहीं जितने आप काट जमीन में तो हुकार बेड़ो का रे बनाओ इर खातर ए तो ठीक हो पन अब थे के करो
1: रामसुर भाई अबे आगलो कोई गीतड़लो है हर जस गीत संगीत री बात करा हाँ तो क्या सुना गीतड़लो
0: बड़ा ध्यान में सही जे कहीं ऊंट दौड़न रो मत और ढलान मिल गई
1: तो बिल्कुल सही कहो कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा सुना कार्यक्रम रो आगलो गीत

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
2: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
1: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
2: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
1: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में
2: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
1: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
2: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का।

0: और चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: संदेशा सुनिया और संदेशा हूँ पहले अपा गीत सुनिया अब्दुल सकूर सुलेमानी रो जंगल मंगल देश माने प्यारो लागे से। तो रामस्वरूप भाई ओ जको जंगल मंगल देश है वो आपने घनो प्यारो लागे आपर जी जान सुन अच्छो लागे और ओ जको जंगल मंगल देश है आपारो प्रदेश है आपारो पूरो देश है इरे अच्छी तरह सर्वांगीण विकास सारू अपारी जिकी लोक कल्याणकारी सरकार है बा खासी सजग है और भात भातरी योजनावा बनाई है। जरूरत है कि अपा योजनावारे बारे में जाना बारो फायदो लेवर दूसरा भाई लोगा ने भी प्रेरित करा।
2: बजरंग भाई योजना जिकी आज आप अथाई करा बा खाली जंगल मंगल देश राजस्थान प्रदेश खातर ही नहीं आखे भारत रे खातर केंद्र सरकार री लांठी योजना वा जकर फूट नाम समग्र ग्रामीण विकास। जब पहली बात करा कि आप खेती बाड़ी री करी पशुधन री करी अब थोड़ी रोजगार री बात करा तो विकसित भारत रे वास्ते जी राम जी योजना। अब देखो नाम बदलो है फूट नाम है पहली जो कि आप मनरेगा कहवे हा बाई चीज है बाई गारंटी सुधा रोजगार हर ग्रामीण परिवार ने जो को है कुशल श्रमिक है खेत में बेलो रहे चौमासे बाद में आपने अठेरी जो की मौसमी बेरोजगारी है बिना दूर करन ताई और हर हाथ ने काम देन ताई राजस्थान में फूटरी योजना बैंक खाते में सीधो भुगतान कोई भ्रष्टाचार नहीं जकर तहत आप सह जानो कि कोई पुराना तालाब है टांको है नाडी है खड़ीन है सड़क है या सड़क रे किनारे दरखत रोपना है या जल संरक्षण री टिकाऊ काई चीज बनावनी है

0: और एक बात और है बजरंग भाई, बा है कि ई जी राम जी योजना रे मायने आपने जो कि बाई बेटिया है बारी भी पूरी पूरी भागीदारी है, यानी 50% ज्यादा महिला वारो योगदान है, रोजगार देने की एक स्कीम है सर।
1: बहुत ही बढ़िया बात है सर। तो रामसूर भाई और प्रधानमंत्री आवास योजना है ग्रामीण हमारी इरो जो लक्ष्य है वो सबरे वास्ते पक्को घर देना उपलब्ध कराना इरो लक्ष्य है। मैदानी क्षेत्र में अच्छी सहायता मिले है, पहाड़ी क्षेत्र में भी मिले है, सब जितना भी क्षेत्र है तो नरी नरी भांतरी सहायता राशि है।
0: एक बात और है बजरंग भाई,
1: बाकी है
0: खाली घर बना रही टापर बना रही कौन देवे, घर रे मायने स्वच्छता री फूटरी पहचान बनाए खातर शौचालय बना देवे, और जी राम जी योजना में भी वो घर बन जावे मिस्ट्रोल देवे और भरे, और सागे सागे एक वो धुआं वाली जो को निजात दिलानी है उज्ज्वला गैस योजना भी इर मायने जरूरी है, और इर मायने जका नाम चयनित हुए वे खाली सिफारिश को नहीं प्राथमिकता बने रहे जकर घरे टापर नहीं है। आ फूटरी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अगली योजना थे लिए बैठा होगी दीनदयाल अंत्योदय योजना।
1: बिल्कुल सर, तो दीनदयाल अंत्योदय योजना में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, इर मायने स्वयं सहायता समूह है, बाई बेटा रा महिला वारा जी का समूह
0: बना रहे हैं,
1: गरीब निर्धन महिला वारा बने एस एच जी सु जोड़ पर परार फिर बैंक सु लिंक करार बने इलो पूरो फायदो दियो जावे है। वित्तीय सहायता यानी हर समूह है बिने अच्छो फंड मिले है, और सामुदायिक निवेश निधि है बिरो भी पूरो लाभ मिले। आजीविका सारो खेती बाड़ी है, पशुपालन है, या दूजा जिका काम धंधा है जिका खेती से जुड़ियो रहा कोनी बारो प्रशिक्षण मिले है, और लखपति दीदी योजना है बाबे इरे अंतर्गत आवे है। अपर बीकानेर क्षेत्र में हजारों महिलावां है बे स्वयं सहायता समूह सु जुड़ी है,
0: और आप खेत में कोई उपजान करे और बिन मंडी ताई बेचन जावा या कोई भाई रे हारी बीमारी हो जाए तो भगत मत हैर पूग जाए इर खातर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किते फूटरी जकेरे गांव हारी बसावट है राजस्व गांव है बिन शहरों जोड़न ताई लांठी योजना बनी इर गुणवत्ता सा 5 साल तक जका बनाउन वाला है हमारी जिम्मेदारी तय करी। एक फूटरी योजना जल जीवन मिशन हर कोई जाने कि हर घर ने नल और हर घर ने जल इरो लक्ष्य भी सरकार लगो लग पूरो करती आ रही है, अपने इस क्षेत्र में फूटरी पानी की उपलब्धता हुई है।
1: रामसूर भाई स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण नामरी योजना है, तो अभी अच्छी योजना है, इरो उद्देश्य है ठोस और तरल कचरो है बिरो अच्छो प्रबंधन करना है, गोबर धन योजना सु बायोगैस बनानी है, प्लास्टिक कचरे रो प्रबंधन भी करना है, और ODF प्लस गांव है बने अच्छो प्रोत्साहन दियो जावे है, आदर्श गांव रे रूप में बेसामी आ रहा है। यही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है यानी हर खेत में पानी पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी कि नहर का
0: उपयोग
1: हाँ तो ड्रिप स्प्रिंकलर आपा लगावा तो आपने आकर्षक अनुदान मिले है, और वाटरशेड विकास सारू कैच दी डैम अभियान है बीर महीने पानी भेड़ो करण सारू संरचनावा बनावन सारू भी आपने आछ प्रोत्साहन दियो जावे है।
0: वर्षा रे जल रो संरक्षण फूटरी बात और स्वच्छ भारत मिशन या बात करी तो इसरो दूसरो चरण चाले है, इसी एक योजना राष्ट्रीय सामूहिक सहायता कार्यक्रम जकेर मायने पेंशन वृद्धावस्था री अलग विधवा बाई बेटिया ने अलग दिव्यांग जका लोग है बने राज्य सरकार रे सागे केंद्र सरकार रो भी अंश मिले, और हर परिवार ने चाहे वो बीपीएल हुए चाहे कोई सामान्य परिवार हुए वृद्ध जो का लोग है बाने भी जकी एक मुस्त राशि है बा सहायता रे रूप में मिले, रे सागे एक अंत्योदय और आदर्श ग्राम योजना भी रो एक समग्र भारत विकास कार्यक्रम री कड़ी है। इन कड़ी ने आगे बढ़ावा और एक गीत वाली कड़ी जोड़ा
1: कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा, सुनाओ आप आगलो गीत।
0: तो गीत चंपा मेथी आवाज में फूट रो दोरारी धरती में मगर मोरियो किया बोलन बतावे आप सुनो
1: सुनाओ सा।
2: मैं मगिरां रो मोरियो तो काकर चोण चुगों

0: रेडियो एक इतना हाथ रहा फूट रहा कलाकार और इतनी फूट रही आवाज और ऐज का बाजन आगे हानी कहीं खे आने कहीं के बजाया के ठा मन तो यहाँ लगे हो बजरंग भाई कि जी करे एक और सुना दो पण अब भगत कहवे कि कोई खादरी कार्बनिक खादारी गोबर री खादरी की आता ही करा जको बा जकी फसल वो ही नहीं थे कुष्मांड कुलाड़ी भीरमान देव ने कहा
1: अपारा तो देखो ओई ओई कार्यक्रम है यही बात है खेती बाड़ी री पशुपालन री तो आज रामस्वरूप भाई आपा बात करा के पशुवारी जी की मीणी है
0: बकरियां री तो
1: बकरियां री
0: भेड़ियां री बकरियां री
1: और तो अच्छी कार्बनिक खाद

0: हैं तो भेड़ बकरी तो जो गोबर है नींगनी कई थोड़ी ने लिंडी क्या करे आकार में छोटी तो होवे सुखेरी होवे गंध रही तो होवे और भेड़ बकरी जेका उगाड़ी सारने वाला पशु है आरी नींगनी में पोषक तत्व चोखी तरह पचर आवे है आपार बीकानेर मायने अच्छी संख्या में भेड़ और बकरी है और मींगनी जकी है बा अठे मोकड़ी मात्रा में उपलब्ध भी है।
1: अब देखो थे बात करी नी मींगनी री जन आ बात कोई आजरी को नी बडेरा ही कहूं था कि कुकर के मींगनी के खातर के एक तो वो जो को पशु है नी छोटो दिन ने नोक बकरी वे थे भेड़ वे वो वनस्पति खावे बे जकी खारी वे आकड़ो वो खाजे कांटी खाजे और दूजा जका खारम खारा जका घास फूस हुए बे खावे जन बीर मायने पोषक तत्व तो बजरंग भाई होना ही है
0: बिल्कुल सर।
1: और इस जको खाउड़ हो इन बोई बन खाद रूप में बारे निकाली हुए थे बात करे कि भी नाइट्रोजन हुए फास्फोरस हुए पोटास हुए और सगलंग बत्ती बात आ है कि मींगनीर मायने जको नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटास हुए नी वो दूजा पशुरी मींगनी ना हूं बकरी जिसकी मींगनी है बिरमा ने तीन गुना ज्यादा हुए।
0: अरे वाह।
1: और एक अपन सावचेती आ रखनी है कि एक कदी ज्या ताजी करूड़ी मींगनी देनी कोनी है चाहे पौधे में देव चाहे खाद रे रूप में आप फसल में देव बिना कई दिन पुरानी पड़न दो कोशिश आ करो कि दो तीन साल जो पुरानी मींगनी हुए तो बिन बड़े में बड़ी कर रखो कटियो भर ने एक जिज्ञा भिगो चौकी बनाओ लुक दी कूट मी कर लो ज्या यूरिया हुए ज्या दूजी खाद हुए ज्या बिने थोड़ी नैनी कर लो मींगनी ने और नैनी
0: तो जो तो और ही आनंद आ जाए
1: का आनंद कहीं आ जी बिम कहीं है कंपोस्ट बनी अरे आप खेत में ना कहा जन ने तो देखते कि गंध रही तो है बास भड़को आवे
0: नहीं
1: तो जो ताजो गोबर ले जन तो आप हाथ में बास आई फसल में आई खेत में हुरमा उन लाग जी सड़ूड़ी नहीं होनी चाहिए पर हुकुड़ी होनी चाहिए।
0: और देखो सीधी खेतरे महीने आपने काम क्या लेनी है कि आखिरी जुताई री वेड़ा 20-25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आप बिखेर देवा माटी में मिला देवा। रामस्वरूप भाई एक रात्रि बाड़ा पद्धति है फसल कटने रे पछे खेत में आप भेड़ बकरिया ने बैठावा रखा एक रात में जे 1000 भेड़ा आप रखा तो एक एकड़ रे महीने पूरी खाद है मात्रा
1: आज बात करी नी जन मैंने भी याद आ गयो कि कई बार कहीं बड़े रा कोई एवडालो भाई होंगे ने भी न रखकर बुलान दाग भाई दो एक रात मारे खेत में रहे वे
0: और भी इन्हें धान चून देवता रुपया देवता और भी ने वो क्यों तो वही मैंने बाहर पाछी
1: बड़े रा रे परंपरागत विधि है आ बात तकड़ी लाया थे भाई और थरकने कोई एवड़ बकरी वाला भाई हुए नहीं तुम्हें रेवड़ ने अपना खेत में रोका लिया पर तुरंत भाई तरह ना कर दिए अगले साल बावना
0: कुल मिलार मींगनी जकी है इरी महिमा नारी है और इन्हें शाणा लोग कड़ो सोनो कहो है। रासायनिक खाद रो खर्चो घटावे है माटी री जिको स्वास्थ्य है बिना सुधारे है उत्पादन ने टिकाऊ बनावे है तो चाहिए जे आ है कि आप बीकानेर का किसान भाई है वे भेड़ बकरी ने अठे पाड़ी है सागे मींगनी उपयोग है खादरे रूप में उपयोग है इन्हें घने सु घणो बदे पो देवे तो बढ़िया रेवे।
1: अब बताओ तो कार्यक्रम में आगे हो देव थे कोई गीत लो होना होता ही घनी कर ली
0: तो लो सा सुना आपा कार्यक्रम रो छेकड़ लो गीत।

0: देखो बजरंग भाई गीत में तो कहवा धीमा चाल, पर अपन धीमा चाल नो कोनी, कार्यक्रम भगत हो रही है। थोड़ी मौसम री बात करा जना, आज दिन आथुने पासा दक्षिण पश्चिम हवा चाले ही और तापमान में भी बढ़ोतरी ही, बिरखारी थोड़ी थोड़ी मात्रा लागे कि कठी बादल हुई छींटा पड़ी।
1: भाई सगड़ा ही मैं नहीं उड़ीके है कि अब पूरे राजस्थान में बरस रही है, पूरे देश में बरस रही है कि इन ही बरस जावे तो आछो रेवे।
0: मैं हुसी भगवान माते भरोसो राखो और अब कार्यक्रम सीख दे रहा हूँ साहब रे तड़ू साथी राम स्वरूप बिस्नोई यार
1: बजरंग सारस्वत ने
0: मोकला मोकला
1: राम राम, राम।

अभी ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्रामीण जगत। मीटर दर 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 7:45 होने को हैं। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं नेहा हर्ष के स्वर में ये प्रस्तुति।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोल मारो चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत कार्यक्रम में। आइए सबसे पहले सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत। फिल्म का नाम है बरसात की एक रात।

0: माह के पहले और चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगला गीत। फिल्म का नाम है बेताब, स्वर शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर का है।

ये स्वर था मोहम्मद रफी का और फिल्म का नाम था लोफर। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में अगला गीत। फिल्म का नाम है पाकीजा।

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun.

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ में ये गीत। फिल्म का नाम था हम आपके हैं कौन। फिल्म संगीत किस कार्यक्रम में अंत में आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत। मोहम्मद रफ़ी का साथ दे रही हैं लता मंगेशकर।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए लोक संगीत। लोक संगीत के इस कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं बाबू का बागड़वा की आवाज में ये लोकगीत।

0: अभी आपने ये लोकगीत सुना, ओ कुण बीजे बाजरो ए बादली, स्वर दिया था पुष्पा सैनी ने, और इससे पहले आपने सुना बाबू खां बागड़वा की आवाज में पनिहारी। मौसम के अनुरूप आपने ये खूबसूरत लोकगीत सुने। इसके साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोलमरु चैनल है। इस समय रात्रि के 8:45 होने को है। अब समाचार होंगे। समाचार पहले हिंदी में तत्पश्चात अंग्रेजी में होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुर्गन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कवच के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से। और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपोई साइवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर मिला है।
2: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
3: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
4: And then we can sell to further markets as well.
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए।
1: यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भव्य स्वागत और आतिथ्य के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार और वहां की जनता के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ

0: मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भव्य स्वागत और आतिथ्य के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार और वहां की जनता के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु की अमूल्य धरोहरों की वापसी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री राधाकृष्णन ने सांस्कृतिक धरोहरों को देश में वापस लाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। वर्ष 2014 से अब तक 600 से अधिक कलाकृतियां स्वदेश आ चुकी हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं की चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के विश्वास और मजबूती का पता चलता है। ओमान के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और ओमान के बीच सदियों पुराने समुद्री संबंध दोनों देशों के लोगों को सदियों से जोड़ते रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस परियोजना का लक्ष्य घनी आबादी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करना है। इस बीच रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि 2026-27 के अंतर्गत 611 करोड़ रुपए से अधिक की 17 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने निरंतर समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। कौशल विकास, उद्यमिता और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने पीएम सेतु पहल के अंतर्गत सूरत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई समूह के लिए 240 करोड़ रुपए की निवेश योजना का अनावरण किया है। इस पहल में आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया को समूह का प्रमुख उद्योग भागीदार नामित किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य 25,000 से अधिक युवाओं को आधुनिक उद्योग प्रशिक्षण, शिक्षुता और नए रोजगार के अवसर प्रदान करना है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए आज मिशन संचालन समूह की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में लगभग 94 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता बनाए गए हैं और 105 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े गए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि मिशन के अंतर्गत एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक में अंतर विभागीय सहयोग बेहतर बनाने, संस्थागत क्षमता मजबूत करने तथा उत्पादकता और सेवा वितरण को विकसित करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से एकीकृत, कुशल और भविष्य के लिए तैयार की गई पहलों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इससे पहले अयोध्या की एक अदालत ने इस मामले में 8 आरोपियों में से 3 को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले महीने इस मामले में विशेष जांच समिति का गठन किया था। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है।

0: पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर मतदान 30 जुलाई को होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाके, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 16 जुलाई तक भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का भी पूर्वानुमान जारी किया है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आज दिन भर आसमान में बादल छाए रहे और उमस भरा मौसम बना रहा। ईशानी यादव के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज राष्ट्रीय राजधानी के दिल्ली हाट में मेघालय अनानास महोत्सव का उद्घाटन किया। श्री सिंधिया ने कहा कि यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल के विजन पर आधारित है।
2: Fourth edition of the Pineapple Festival has been remarkable.
3: पाइनएप्पल फेस्टिवल का चौथा संस्करण बेहद सफल और ऐतिहासिक रहा है। आज यहाँ का अनानास दुनिया के कई देशों तक पहुँच चुका है। अब हमारा लक्ष्य प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित करना है ताकि अनानास से जुड़े उत्पादों में वैल्यू एडिशन बढ़ाया जा सके। इस मेले में भी ऐसे कई उत्पाद देखने को मिले हैं। इससे हमारे जैविक किसानों को अधिक लाभ मिलेगा और उनके उत्पाद भारत से बाहर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक और बेहतर तरीके से पहुँच सकेंगे।
2: Beyond the shores of India to far-reaching international shores.
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
4: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 828 अंक चढ़कर 77,559 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 244 अंक की बढ़त के साथ 24,207 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 6 पैसे मजबूत होकर 95.32 रुपए पर बंद हुआ।
0: नीति आयोग ने टाटा मोटर्स फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य आकांक्षी प्रखंडों में एकीकृत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। ये सहयोग ग्राम संस्थाओं को मजबूत करने, सरकारी योजनाओं तक पहुंच में सुधार करने, शिक्षा और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को उन्नत करने पर केंद्रित है। इसमें कृषि आजीविका, स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देना भी शामिल है। वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद सफलतापूर्वक संपन्न कर भारतीय दल आज नई दिल्ली वापस आ गया। वेनेजुएला में हाल में आए भूकंपों में मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान शुरू किया गया था। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डिल्सी रोड्रिगेज ने भारत की सहायता, समर्थन और एकजुटता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। आकाशवाणी समाचार के पूर्व निदेशक और भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी सेबेस्टियन रॉबर्ट का आज नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे। उन्होंने देश विदेश में आकाशवाणी समाचार के लिए महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर किया। उन्होंने रक्षा और विदेश मामलों के क्षेत्र में एक कुशल संवाददाता के रूप में अपनी पहचान बनाई। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत के साथ लंदन के लॉर्ड्स मैदान में एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 6 विकेट पर 232 रन बना लिए थे। ये पहला मौका है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने सेमीफाइनल में ब्रिटेन के आर्थर फेरी को 7-6, 6-2, 6-4 से हराया। एक अन्य सेमीफाइनल में इटली के यानिक सिनर का मुकाबला सर्बिया की नोवाक जोकोविच से हो रहा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था आज उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के लिपुलेख दर्रे से चीन में पहुंच गया। इस जत्थे में 52 सदस्य हैं। चीन में प्रवेश करने के बाद समूह आगामी दिनों में पवित्र कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा से पहले निर्धारित शिविरों में विश्राम करेगा।

0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड की ऑकलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुर्गन ने संसद के मानसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कवच के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Auckland on final leg of his three-nation tour, receives warm welcome from his New Zealand counterpart Christopher Luxon and Indian community. External Affairs Minister Jayashankar meets his Omani counterpart Badr bin Hamad Al Busedi in Muscat, discusses issues of cooperation in trade, investments, connectivity, maritime, technology and defence. Ministers of State for Parliamentary Affairs Arjun Ram Meghwal and Dr. L. Murugan review preparations for upcoming monsoon session. Railway approves Kavach deployment on 680 route kilometers of Northern Railway to enhance safety and operational efficiency. In football, Spain to face Belgium the second quarterfinal of FIFA World Cup tonight. And in Wimbledon tennis, Alexander Zverev of Germany storms into the men's singles final, beating British wildcard Arthur Ferry. Prime Minister Narendra Modi received a warm and enthusiastic welcome upon his arrival in Auckland, marking the start of his historic two-day visit to New Zealand. This is the first by an Indian Prime Minister in nearly four decades. After arriving in Auckland today, Prime Minister Modi was received at the airport by New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. The Indian community gathered in large numbers to greet him. The atmosphere was filled with excitement as people waved the Indian tricolour and chanted Kia Ora Modi to welcome him. Mr. Modi witnessed a vibrant celebration of India's rich cultural heritage during the community welcome in Auckland this evening. In a series of social media posts, the Prime Minister said that the performances showcased the cultures of Punjab, Tamil Nadu, a fusion of Carnatic and Hindustani classical music, and a stirring rendition of Bande Mataram. Mr. Modi complimented the diaspora for keeping India's cultural heritage vibrant across generations and continents and for strengthening the enduring people-to-people bonds between India and New Zealand. The Prime Minister also expressed delight to witness a performance by the Nad Vocal Ensemble.

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:15 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाज़ में। ये गीत फिल्म का नाम है उसने कहा था।

अभी आपने सुना किशोर कुमार और आशा भोसले को, फिल्म का नाम था बंदिश। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में अंत में आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत। फिल्म का नाम है अनजाना।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम समाप्त हुआ। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए भागीरथ रेवाड़ लिखित और निर्देशित नाटक इंद्रलोक।

0: डालीमा लिएडो सुनेरी उजास दिस्तो लागे। अब लागे कि नेड़े पुग्यो हूँ, थोड़ी घनी रूं चुनाट सी काना में पड़ती लागे। अरे ओयो, अब तो रंग बिरंगी इंद्रधनुषी लाइटांगा पड़का सा पड़ता दिसे। देखो देखो देखो के नीली पीली लाल हरी गुलाबी तरंगा अपमंडल में चिलकर सा मारे। हाँ अठे तो भाईडा पूरे नाच रंग गायकी किसी झलक हो रहा थी लाके।
1: महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।
2: अरे तू अठे की आ गयो, तेरो अठे के काम?
1: महाराज मन अठे नौकरी पर लगावन गो परवानो मिलो है।
2: अरे तुमने अठे के कमी आ गई जको बुलायो है, बोई भूलो छु हद होगी।
1: ओ देखो महाराज मेरो अपॉइंटमेंट लेटर तो देखो।
2: मोर तो इंदर लोग की है, हैं? तुमने क्या भी बुलाये हुए? अरे तेरे में क्या खासियत है?
1: अब देख लियो महाराज, मैं अठे नौकरी करने आ जा।
2: लगे तो है, पण की बात समझ में आए कोनी, के रोड़ो है? ठहर, मैं वो कागज मारे सुरक्षा अधिकारी ने दिखाऊं। कठे ही फर्जी ऑर्डर तो को लिए फिरे नी भाई पृथ्वी लोग में। भैया सुना का भूत तेरा फेरी है?
1: नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं महाराज पक्को ऑर्डर है। ए डिस्पैच नंबर देख लियो, तेरा मोर देख लियो थारी।
2: अरे तू अठे ही खड़े रही, मैं गयो अब आ रही।
1: चंगो महाराज।
2: सुन तेरो कागज पक्को है इंदर लोग को ही है। और देख वो समय नालायक जगह ना, हमें बठे फूक जा। बठे मारा सुरक्षा अधिकारी बैठे है, बई तेरो काम करेगा, बस तो फूक जा।
1: ठीक है महाराज। राम राम साहब, राम राम। आओ आओ आओ, ले भाई तेरा कागज पत्र दिखा। लियो साहब, ए लियो मेरी फाइल, सारा कागज इन माई है साहब।
3: ठीक ठीक ठीक, रिकॉर्ड नंबर वन। शाबाश भाई, घनी गतिविधियां में भाग लेडो है
1: तो फिर
3: ठीक। नाम पतो

0: तो थे मल्लाराम चौधरी हो?
1: हाँ साहब, मेरो नाम एम आर चौधरी।
0: बैठ जाओ एम आर चौधरी साहब। आपने यह है कि मैं थाने इंदर लोक का गुप्तचर रखा।
1: हाँ साहब।
0: और ई काम में थाने भूलोक की गुप्तचरी करनी है। पृथ्वी लोग है नी?
1: हाँ।
0: पृथ्वी लोक में कोई कड़ी तपस्या कर गए और इंद्र को सिंहासन ना दिखाते।
1: हाँ।
0: बस थाने आ निगह पृथ्वी लोक पर रखनी।
1: हाँ हाँ हाँ।
0: थे पृथ्वी लोक का दाम पेज का जाने जान हो के नाम बतायो एम आर चौधरी। आई बात समझ में?
1: हाँ साहब, इन आ गई।
0: हाँ अब है बात। मैं थाना भी एक किट बनू।
1: किट?
0: हाँ, इनमें गुप्तचरी को सारू सामान है। नक्शा, यंत्र तंत्र, उड़नदरी, छतरी, नियम कायदा सो की है। और अब थारो कर्म क्षेत्र है अपने।
1: हाँ।
0: एम आर चौधरी साहब।
1: यस सर।
0: हिमालय सु रामेश्वरम और गडरा रोड सु काला आंधी तक रहे होगो। हाँ।
1: यस सर। ओके सर।
0: एक बात और है।
1: हम बे
0: अब मैं तेरो नाम ही नहीं।
1: हाँ।
0: अपने मल्लाराम चौधरी सु गुप्त चली गई हिसाब सु बदल दू।
1: बदलोगा?
0: हाँ, साझे रिकॉर्ड में भी दर्ज कर लू भी।
1: हाँ हाँ ठीक।
0: आज सु तेरो नाम BR008 है, याद रखी
1: BR008।
0: हाँ, और मेरे संपर्क करनो है नी?
1: हाँ करनी पड़ती।
0: तो मेरा नाम है BR001।
1: BR001। ठीक है सर।
0: अब किट ले लो।
1: हाँ।
0: और जाओ आपकी ड्यूटी पॉइंट पर, ड्यूटी करो। ठीक है, आज कोई शक सुबो?
1: ठीक है साहब, एन ठीक है, कोई शक न कोई सुबो है। मैं जाऊं?
0: हाँ
1: के सर।
0: चलो,
1: थैंक यू सर।
2: अरे ओ उजाड़ एरियो, बियावान जंगल बड़ी सुनार सी पड़ी है, पण है तो मेरो ही ड्यूटी एरियो, देखनो तो बड़ा इन्हीं पड़ सी। बागुपत चरियाड़ी बात के था कोई सुनार में ही अपन लो काम हो जाए तो। ओ रेत को समंदर ठाठा मारे, ऊंची नीची मेरा हरियो पत्तो तो अठे दिसे ही कोनी, ने तो अठे की उपजे और ने की निपजे, ने की खाने न की पीने। ओहो हो हो हो, बहुत संकट है अठ तो। अरे ओ ओ इतु मोटो पेड़ सो क्या मुआ गयो? ओ तो बट वृक्ष है, बहुत जूनो जंगी पेड़ है। ओ लगे सरस्वती नदी के किनारे पर उगेड़ो है वो। ए पुराना निशान पड़े नी, झाड़पुड़ी बोड़ियो कुओ। अरे अरे ए सनोक सा क्यांगा सुनी जंगा गया, वो केरा सो है, है, है? बस बस BR008 बन जो काम। मन ने लागे अठे कोई तप करन लाग रही है, थोड़सो नेड़ा होके देखूं। अरे ले कर लियो बात, ओ तो कहता खुद की तपस्या करन लाग रही है। क्यों हवन बेती है इंगी? देखो देखो घी मेवा उंगी सोरा मार लाग रही है। हवन बेती शुन धुआं की देखो थे लाट नहीं पड़े। और आ रहा लगे वो दोनों देवलोक तई जावे। कद को बैठो तप करे केठा है, कदे तो बैठ जे, कदे एक टांग पर खड़े हो जे। ले ले ले ले कदे वो तो बैठो बट वृक्ष गए उंदो लटक जो, उंदो लटक के तप करे है। गप लत सु साधु सु को लगे नहीं भी ना, ये भगवान वस्त्र पेरेड़ा ना, इंगा काले कौन पाड़ेड़ा अच्छी मोटियां तो पाग। गप्पा देखो धोड़ा जग अच्छो दोत बांध रखी है भैया तो है। ओ की रसो है हैं, इन पृथ्वी लोग का आदमी नहीं जितना फंड जाने नहीं भी तो कोई दूजो जाने ही को नहीं। हाँ देख आगे फंस गई तेरी गुप्त चरी बैठा, पण करनी तो पड़ सी नेड़ा लाग ध्यान केटा कौन है की बला है।
0: ओम नमः
3: शिवाय। ओ भाई, ओ भाई साहब, अरे सुना बोलिए, बोल रहे ये।

0: उल्टो क्या भी बोल रहा है भाई, कसरत करे, कसरत करेगी। अरे तेरे के जची है भाई उजाड़ में, कोई तकलीफ है तेरे को क्यों बोल रहा है भाई, बोले ही को नहीं। अरे बोल रहे के ऊंचा चुड़ी जाएगा भाई तुम्हें है, वो तो पत्थर को दूंगी। ओ साधु जी, ओ महात्मा जी, अरे महाराज सुनो के मैं थारी फुल मदद कर चू, थे मांगोगा वो ही मिलेगा। अरे ऊंचो जुड़ी जाएंगे विराट ने ले, इंगे तो BR008 कोई असर ही कोनी, इंगो ध्यान किया डिगावा। चल कोशिश तो करनी पड़सी, अब गुपचरी कोई सुखी थोड़ी है, अब लगे पूरा डंका बजाना पड़सी। अठे तो है डंका ही बजाना पड़सी। ओ भगत जी, ओ भाई साहब, अरे साधु जी, ओ महात्मा जी, अरे चौधरी साधी को दे तो, ओ चौधरी साहब।
1: अरे ठे बीमारी आ गई ई सुनाड़ में, कद लागो सेकन ठहर जा कुने। अरे अरे के ले अठे है, अरे के बेचे।
0: महाराज महाराज की कोनी लियो ने मैं की बेचू।
1: उन महाराज मैं तन्ने महाराज लागू है, दिखे को नहीं कहते ना।
0: बस यही ही पूछ लियो जी, यही ही थाने देख र।
1: टिप जा टिप, अठे फुर्ते कर, बड़ो आयो पूछा ताची आलो।
0: बिया थे कुनो चौधरी साहब।
1: मैं भागू चौधरी, जाने को नहीं के बने।
0: अब जान गयो थाने, थे के करो चौधरी साहब अठे।
1: अरे फूटगी के दिखे को नहीं तो ने।
0: बिया मन्ने तो लागे चौधरी साहब थे कोई योग कसरत करन लाग रहे हो।
1: अरे फूट गया लागे, अब क्या कहीं जाने को नहीं के मन्ने, बड़ो आयो
0: लागे चौधरी साहब कोई तप करन लाग रहे हो।
1: हाँ अब कैसे बोलो, हूँ तप करन लाग रहे हूँ।
0: तप हर थे चौधरी साहब, क्यों शरीर ने कष्ट दियो।
1: अरे मूर्ख तू कौन है,
0: अरे ईशो नुगरो कटु आयो है। बस चौधरी साहब इन्हें फिरता टूरता अटकर लेंगा हो तो सोचो पूछ ही लिया कोई कष्ट में न हुए, इन बियावान जंगल इखोड़ में हो।
1: साची साची बोल, मैं भागु चौधरी को हूं। अरे लखना शु तो तू कोई ऊंचो ही लागे, बड़ो आयो बोल बोल कौन है, अरे क्या बना है तू अठे के ले खोड में, अब तेरी खैर कोनी। हाँ समझ ले
0: चौधरी साहब, चौधरी साहब थारे पगाम पड़ू, मैं तो बस थारा थारा दर्शन करन आयो। साची
1: इया कोनी माने नी, साची कोनी बताओ नी, ले ले बोल साची साची बोल, अठूं बच के जाने को तो सवाल ही कोनी, अब तेरी अठूं आत्मा ही जा सके, ते मेरो तप भंग करण की कोशिश करिए। सुन ले बता, जाड़ किया चिपकी बोल।
2: चोरी साहब मैं छोटो सो गुपच्चर हूँ।
1: गुपच्चर अठे झुंझुनारे जंगल में केले, अठे पटक्या काग मरे कठे सु आया गुप्तचर।
2: मैं चौधरी साहब इंद्र लोग गुप्तचर BR008 हूँ, पृथ्वी लोग की गुप्तचरी करतो फिरूं, तप तपस्यारांगी सूचना ऊपर पुगाउनो मेरो काम है।
1: समझ गयो बड़ो आयो गुप्तचरी आयो, हूँ सोचे हो की ना की होसी।
2: चौधरी साहब थारा पगा पड़ू, चौधरी साहब मने बख्श दियो, मने छोड़ दियो, मने बख्श दियो चौधरी साहब।
1: अरे अब तो तन्ने छोड़ नहीं पड़सी, ऊपर समाचार कौन पुगासी, जा ऊपर जाके कह दे इंद्र महाराज ने, भागू चौधरी तप कर रहे हैं करड़ो, महाराज इंद्र की कुर्सी ना घोसली तो मारो जीवन व्यर्थ है। समझ गयो तू, सागई बता दई, ए राज काज प्रजा की भलाई खातर हुए, कोई मोज ठाट लेवन खातर को नहीं, अठे मरा भूखा तिशा काल पर काल, कनी बावनियो कनी त्रेपनियो तू कनी छप्पनियो, ए जिया तू जिया किया, जा।

0: कैदी, तुम्हें समाचार खातर ही छोड़ रहा हूं। जा बोल दे तेरे इंद्र महाराज ने।
1: ले भाई DR-008 आग पच्चरी दूरबीन चौधरी पर लगा ले। ए दबाया लिल्लो और लाल बटन, ओ लगायो ईयरफोन, ओ खोलियो माइक गो फेडर है। हेलो DR-008 स्पीकिंग। हेलो हेलो DR-008। हेलो हेलो DR-008। हेलो हेडक्वार्टर सू BR-001 स्पीकिंग। हेलो।
2: हाँ साहब, अटा एक आदमी खासा साला सु करनी तपस्या कर लाग रहे है। मैं फोकस कर गया, रिपोर्ट भेज लाग रहा हूँ। देखो देखो स्क्रीन पर।
1: हेलो। हाँ स्क्रीन पर फोटो मिलने लगी। ओ महात्मा सो तो को लगे नहीं। हेलो
2: साहब, ओ कोई मन लगे खेत खड़े गए कामा सु लारो छुटा गए कोई चौधरी तप कर लाग रहे है।
1: हेलो ईशु बात करो। हेलो रोलो मचाओ। हेलो बुला के हेलो तपस्या तुड़वाओ। हेलो
2: साहब, इंगी तपस्या मेरू भंग को हुए नी, बहुत जोर मारियो है मने पेट के बिड़ा बिड़ा मारियो। मुसासी इस शर्त पर थोड़े का रिपोर्ट ऊपर तक भेज दियो।
1: हेलो ठीक है तेरी पार कौन पड़ी। आहो सुन तू रिपोर्ट दे रखी। मैं ऊपर दरबार छू। हेलो
2: अम्बे,
1: मैं ऊपर दरबार छू बात करूं। पूरी रिपोर्ट सीधी ऊपर पुगानी है ध्यान रखी। हेलो।
2: हाँ साहब ठीक है, जल्दी निर्णय करो, मामलो बहुत टेढ़ो है और अठे मने खतरो बहुत है, घोर में एक लो। हेलो
1: हेलो बस रिपोर्ट ठेट हेडक्वार्टर शू सीधी इंदर दरबार में जा रही है। सागे लाल सिग्नल दे दियो। हेलो बस सूचना पक्षी मिलन वाली है, चौधरी की सारी हरकत समेत फोटो इंदर दरबार की स्क्रीन पर जारी है।
2: साहब अठो रिपोर्ट फोटो रिवाज साफ मिलन लाग रही।
1: हेलो साहब मिल रही है, तू ही पॉइंट पर फिक्स रखी। ले BR-001 दरबार शू संकेत मिलन लागे। हेलो हेलो
2: हेलो
1: मैं एक बात करूं ऊपर। हेलो हाँ हाँ महाराज महाराज। हेलो महाराज।
2: अरे नाम है वो इतनी भारी तपस्या कौन और के कल लाग रहे है।
1: हेलो महाराज, कोई भागु चौधरी है, मारे गुप्तचर BR-008 खूब जोर मार लियो पर चौधरी टस्यु मस नहीं हुयो। सागे गुप्तचर की ठुकाई उड़ कर ना की महाराज, थे कोई इंतजाम करो महाराज। हेलो
2: ठीक है, मैं बाहर दरबार में अर्जेंट मीटिंग बुलाई है, तत्काल सभा सदा से विचार शुरू कर रहे हूँ। रिपोर्ट सीधी अठे दरबार के स्क्रीन पर लगातार आवन दो, इन्हें हटाइयो ना। है
1: हेलो। हाँ अच्छा महाराज अच्छा।
2: हेलो 008 फोटो रिवाज ठीक मिले लाग रही है नी सर।
1: हेलो हाँ BR-008 सूचना साफ सीधी दरबार स्क्रीन पर जा रही है, तू तो बस दूरबीन ने चौधरी पर फिक्स रखी ठीक। हेलो
2: सर सर आठ ही फिक्स रहेगी, दे चिंता मत करो।
1: हेलो ऊपर दरबार हाल में सभा सदा की अर्जेंट मीटिंग चल रही है। हेलो
2: हाँ हाँ
1: तत्काल कोई निर्णय आ रहा है, लाल सिग्नल मिलने लग रहे। हेलो
2: बस जल्दी निर्णय करवाओ साहब।
1: ठीक है रुक रुक एक ऊपर दरबार से संकेत मिलने लग रहे हो। हेलो हाँ महाराज। हेलो
2: सुनो, मैं तत्काल ही सोन परी और लाल परी ने वो लोग भेज रहे हैं।
1: हेलो
2: अब रिपोर्ट सीधी दरबार में लगातार आवन दी हो।
1: हेलो ठीक महाराज। हेलो हेलो BR-008। हेलो
2: यस सर।
1: सुनो दरबार में निर्णय हो गया है। हेलो लाल परी सोन परी चाल पड़ी है पृथ्वी लोक के वास्ते
2: दोनों।
1: हेलो बस थोड़ी देर में पुगड़नी है। हेलो
2: हाँ सर बहुत अच्छा, अब मैंने क्या करना उसी।
1: हेलो तने की कौन करना, तू तो बस आ रिपोर्ट बिना इंटरप्शन आने दी। हेलो सीधी इंदर महाराज के दरबार में जावन लाग रही है। सावधान रही। हेलो ड्यूटी पर मजबूत बने रही। हेलो आनी कठे मरा दिया। हेलो
2: नहीं नहीं सर थे चिंता ही ना करो, वे दोनों चाल पड़ी के बैठू पर।
1: हेलो ध्यान रखी पॉइंट फिक्स रखी परियाड़ी है बस। हेलो हेलो
2: हाँ

0: सर हाँ सर मन आगे लगे कि रूम जुनार सा हुए बन गई है लगे
1: चौधरी तो कड़ी तपस्या में लगे की कोनी अब तपस्या बंद कर दिया देरी के लगे अरे इनके तो कोई असर ही कोनी क्या वो घड़ेड़ो है इंगो ध्यान ओखो डिग तो लागे अरे एक कर और ट्राई मारा

0: तो कोई असर ही कोनी। क्या वो घड़ेड़ो है? इंगो ध्यान ओखो डिग तो लागे। अरे एक कर और ट्राई मारा। कैंठा तबे आई जावे। ठीक है तो। यो, वो तो कोई ध्यान तो चुकावे कोनी। इंगी तपस्या तो मुश्किल भंग हो सी। ना ना ना ना ना, ना। वो तो बहुत मुश्किल है। ओ चौधरी साहब, क्या मैं कष्ट भोगो हो? की चाहिए थाने? अरे बोलो तो सरी।
1: ओ चौधरी साहब, बोलियो, थोड़ी आँखियाँ तो खोलो,
0: देखो तो सरी, के चुड़ला हार सिंगार है, के गुलाब, केवड़ा, इत्र फुलेल की खुशबू फैल रही है।
1: चौधरी साहब,
0: भागु जी,
1: ओ चौधरी साहब,
0: भागु जी,
1: ओ चौधरी साहब,
2: सुने, के थे कुलो कठुआ जी बड़ी ठंडी के जो
1: चौधरी साहब क्यों शरीर में कष्ट में झोंक रखियो है?
0: चौधरी साहब थाने चाहिए वो सो की मिल जैसी।
2: मन्ने की कोनी चाहिए? पहले आ बताओ थे कौन हो?
1: मैं फूटरी पर यहाँ रमण करती फिर थाने कष्ट में देखियो तो बस रोयो को गयो नी। चौधरी साहब मैं आ गई थारी सेवा में।
0: थे अठे जंगल में दुखी हो रिया तो सोचो कि दुख हल्को कर सकाओ तो।
2: यहाँ कोनी मानू, पहली साफ साफ साची साची बताओ थे कौन हो, कठु आई हो, अरे कौन भेजिए थाने? नहीं तो ए थारा घुंगू गजरा गो ठाई कोनी पड़ेगा नी।
1: चौधरी साहब मैं तो उड़न पर यहाँ अट कर जावे तो बस थाने देखर रुक गी। बस
0: ते क्यों कष्ट भोग रिया हो जंगल में?
2: मेरी सुनो, साफ साफ साची साची बताओ थे कुनो, नहीं तो जिया आयो बे टप जाओ, नहीं तो थारो अब अठे ठाई को लगे नहीं। हाँ
1: चौधरी साहब गुस्सो क्यों करो? छोड़ो सारी बात में कराओ नी, आओ तो सरी मेरे कने।
2: बस दूर है, मैं अब एन समझ गयो थे कुन हो और के हो।
0: थे सब समझ गया?
1: बताओ तो मैं कौन हूँ?
2: थे इंदर लोग की परी हो है, मैं थाने थारे डोर से पिछाड़ ली।
1: बात तो थारी साची है, बड़ी परख है थाने।
0: हाँ तो मैं महाराज इंदर के दरबार की परियां, मैं सोन परी और आहे लाल परी। बोलो तो सही थे चाओ के हो?
2: तो थे मेरो तब भंग करना ही हो, पन थारी रूम जुनाट छूं कदई को भंग होए नहीं। ए ईशा गाना बजाना मेरा बहुत देखेड़ा है, थे तू तप जाओ, अब तो बात आदमी सामी इंदर महाराज छूं होसी। हाँ बस
1: तो ई थारो कष्ट बताओ,
0: मैं तू तुरंत दूर कर देसियो।
2: थे तो थारे लोग तप जाओ, पहली एक और आयो बोई गयो खसर, थे चली जाओ, अब बात इंदर महाराज होसी, जाओ जाओ थे।
1: तो ई था तो लगे चौधरी साहब
0: कि थे जाओ के हो?
2: मैं थाने एक ही बात कह दी, जे इंदर महाराज को सिंहासन न लेके छोड़ो तो मेरो नाम भागू चौधरी कोनी, समझी के तुम? जा कह दी इंदर महाराज ने, अब ओ सिंहासन भागू चौधरी को है। अरे कष्ट में तो इया मरनो ही है तो फिर सीधी टक्कर लेगे तो मरा देखी जिसे। जाओ जाओ मैं मेरी तपस्या में लागू, जाओ।
3: हेलो BR001 बोले उठियो।
4: हेलो, हाँ भाई बोलो BR001। हेलो
3: सर, बेथरी परियां तो जोर मार के उड़गी।
4: हेलो।

0: चौधरी तो पाछो ध्यान मगन हो गयो है।
1: हेलो हाँ मैं सब देख रही हूँ। हेलो हाँ ऊपर दरबार का सदस्य देखने लाग रहा है।
0: हाँ।
1: तू रिपोर्ट लगो तार दे। हेलो
0: दी बात ये तो सर थे चिंता ही ना करो, पूरी रिपोर्ट सीधी थारे तई लगो तार पुगाऊं तो रेशियो।
1: हेलो चुप कर चुप कर चुप, ऊपर दरबार सु संकेत मिलन लाग रहा है। बस बस अगली सूचना कोई मिलने वाली है। हेलो
0: जी ये सूचना मिले तत्काल बता दियो साहब का अगलो संदेश की है।
1: अरे बस अगलो संदेश मिल गयो। हेलो हेलो
0: के आदेश है सर।
1: अरे बस बस बस बस अब इंद्र महाराज फिर थी लोग आ रहे हैं। चल पड़े हेलो हेलो
0: ठीक है सर ठीक है।
1: अरे पूरी सावधानी से ड्यूटी करनी है। हेलो नौकरी तेरे हाथ में है। हेलो ध्यान रखी बैठा ध्यान रखी। हेलो कठे बिस्तर गोल करा दे मरा दे। हेलो
0: चिंता ही ना करो साहब थे तो चिंता करो ही ना, अब तो हूँ पक्को रिपोर्टर बन गया नी। बस आ गया साहब भेंद्र महाराज पूग गया।
2: बाबू चौधरी धन्य है तै बड़ो भारी तप करियो है। चल ध्यान हटा मैं इंदर आयो हूं। मैं तेरी तपस्या से बहुत खुश हूं। चौधरी जल्दी कर बोल की चाहिए तने बोल।
3: महाराज पगा लागू महाराज बस थारा दर्शन हो गया। महाराज जिंदगी सफल होगी।
2: बोल के चाहे तू बोल।
3: महाराज पहले वचन देओ के मेरी बात पूरी कर दोगा।
2: अरे मांग तो सरी बावड़ा के चाहिए
3: पहले वचन देओ। महाराज वचन
2: तो ही बता तो सरी ठा तो लागे।
3: मेरी तीन मांग है महाराज बे पूरी कर दो।
2: बोल चल तू भी की याद रखे गो पूरी कर जाना। बोल
3: महाराज एक तो ओवरदान दे हो के जद हूं भागु चौधरी आसमान कानी आंगली करूं जद ये बिरखा हो जाए।
2: तथास्तु।
3: दूसरो थे महाराज कठी तो पानी शू डुबो दो और कठी थे भूखा तिस्सा मार दे आ नहीं होनी चाहिए। एक थारी ई चक्री ने ई त्रिया सु ठीक कर लियो के मारे सारी पृथ्वी लोक में पानी की कठी कमी ना रहे। महाराज
2: ठीक है ए तेरी मैं सारी बात मान ली पर एक बात मारी मान सी।
3: हाँ महाराज मानूंगा पर बाकी महाराज
2: पानिया के पानी को कंट्रोल सारो ही पृथ्वी लोकवासियों के हाथ में है। मेरे तो बस नाम नाम ही चाले
3: वो किया। महाराज मैं समझो को नहीं
2: बोलिया के पानी उनके भाप पड़े आई भाप ठंडी और पाची बिरखा बन बरसे। जब थे पृथ्वी लोकवासी पृथ्वी ने इतनी गर्म कर रखी है कि पानी भाप पड़े उड़ते फिरे तुम्हें जिये ठंडी जगह मिले वो एक सा गई बरस जाए। बोलो मैं बेचारा कठोर आयो और फिर आज जनता जे इन बत्ती रही तो ना तो किए की हाथ आसी और ना किए की मिल सी।
3: हाँ महाराज वो मारे पृथ्वी लोग वासियां के याद में। महाराज आज जनता दिन दूनी रात चौगनी बद है।
2: हाँ वो सारो नियंत्रण थारे याद में है। मेरे कन्ने कोई उपाय या फिरकी को नहीं मैं नहीं कठी बाढ़ ले आऊं और नहीं कठी सूखू।
3: महाराज महाराज
2: हाँ पृथ्वी लोग का थे राजा हो थारी प्रजा है सूखी थाने सौंप राखियो है। मैं किंग हुई कोई बुरो नहीं करा पृथ्वी लोग हरे भरो राखो जीव जंतु ने पनपन दो अच्छा काम करो भजन भाव करो।
3: महाराज महाराज
2: हाँ बागू आत्मा अजर अमर है जिसे काम थे करोगा विषय थाने फल मिलेगा।
3: महाराज
2: भूलोक में आदमी जितना माड़ा काम करे बीतता ही जी अच्छा कर देवे तो फिर बात ही की है। अब तो अच्छा माड़ांगी पिछाड़ी खत्म होगी पूरो कलयुग बना रखियो है। अब सिंह भूलोक में सुधारो सिंह की सुधर जासी और थारा क्रीड़ा कर्मा का फल भुगतो दोष देवता ने देव मैं थारा काम में कदे अड़चन घला ही कोनी।
3: महाराज देखो देखो थे मैं मूड अनाड़ी

0: काम लाग्यो। महाराज मने क्षमा करो, महाराज मने क्षमा करो। महाराज
1: भागो, देवता स्वर्ग से भूलोक में जन्म लेवन न तरसे। बड़ो खो बना उतारी रूप मिले, आ देव भूमि है। अठे मनुष्य की सारी इच्छा पूरी हुए, मनुष्य बहुत भाग्यशाली है।
0: महाराज
1: हाँ, जको भूलोक में जन्म ले रहे।
2: अभी आप सुन रहे थे स्थानीय नाटक इंद्रलोक, लेखक श्री भागीरथ रेवाड़ थे। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोली मारो चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजने को है। उर्दू कार्यक्रम गुलस्ता आकाशवाणी जयपुर के आमेर चैनल से रिले होगा।

पीछा करने में दिनों रात लगी रहती है। पीछा करने में दिनों रात लगी रहती है। चांदनी चांद के साये में छुपी रहती है। इतने प्यासे हैं यहाँ लोग न पाकर तुझको। इतने प्यासे हैं यहाँ लोग न पाकर तुझको। जिस तरह गांव में पानी की कमी रहती है। इतने प्यासे हैं यहाँ लोग न पाकर तुझको। जिस तरह गांव में पानी की कमी रहती है। चांद सूरज का निकलना है मुकर्रर जैसे। चांद सूरज का निकलना है मुकर्रर जैसे। जहन में आपकी रफ्तार बनी रहती है। कारनामों का दिया जाएगा पर्चा सबको। कारनामों का दिया जाएगा पर्चा सबको। देखना ये है नजर किसकी झुकी रहती है। देखना ये है नजर किसकी झुकी रहती है। डूब जाना है तेरे हुस्न के सूरज को अभी। डूब जाना है तेरे हुस्न के सूरज को अभी। मुद्दतों कोई इमारत भी खड़ी रहती है। डूब जाना है तेरे हुस्न के सूरज को अभी। मुद्दतों कोई इमारत

भी खड़ी रहती है, मैं भी देता नहीं तरतीब किसी भी शय को, मैं भी देता नहीं तरतीब किसी भी शय को, पड़ी रहती है जहां चीज पड़ी रहती है, पीछा करने में दिनों रात लगी रहती है, चांदनी चांद के साए में छुपी रहती है। एक गजल से कुछ अशार की, संभले नहीं संभले अभी तुझसे नहीं संभले, संभले नहीं संभले अभी तुझसे तुझसे नहीं संभले, हर शख्स नहीं संभले कैसे मैं संभालूं तेरी यादों को बराबर, कैसे मैं संभालूं तेरी यादों को बराबर, मुझसे तो उछाले हुए सिक्के नहीं संभले, कैसे मैं संभालूं तेरी यादों को बराबर, मुझसे तो उछाले हुए सिक्के नहीं संभले, इज्जत से अभी कर दे मुझे मेरे हवाले, इज्जत से अभी कर दे मुझे मेरे हवाले, दिल तुझसे मेरा बाद में संभले नहीं संभले, इज्जत से अभी कर दे मुझे मेरे हवाले, दिल तुझसे मेरा बाद में संभले नहीं संभले, इज्जत से अभी कर दे मुझे मेरे हवाले, दिल तुझसे मेरा बाद में संभले नहीं संभले, सरदारे मुनाफिक की मुनाफिक ने न मानी, सरदारे मुनाफिक की मुनाफिक ने न मानी, शैतान से शैतान के बच्चे नहीं संभले, सरदारे मुनाफिक की मुनाफिक ने न मानी, शैतान से शैतान के बच्चे नहीं संभले, संभले नहीं संभले अभी तुझसे नहीं संभले, हर शख्स से इज्जत के इलाके नहीं संभले। आता है एक बार ही मौसम बहार का, आता है एक बार ही मौसम बहार का, तूने ये क्या लगा रखा है बार बार का, आता है एक बार ही मौसम बहार का, तूने ये क्या लगा रखा है बार बार का, तूने ये क्या लगा रखा है बार बार का, अफसोस अफसोस है कि अब भी तेरी शक्ल पे मुझे, अफसोस है कि अब भी तेरी शक्ल पे मुझे, चेहरा दिखाई दे रहा है इंतजार का, अफसोस है कि अब भी तेरी शक्ल पे मुझे, चेहरा दिखाई दे रहा है इंतजार का, अफसोस है कि अब भी तेरी शक्ल पे मुझे, चेहरा दिखाई दे रहा है इंतजार का, चेहरा दिखाई दे रहा है इंतजार का, फिर देखिएगा आएगी उस शक्ल पे हंसी, फिर देखिएगा आएगी उस शक्ल पे हंसी, बस जिक्र छेड़ दीजिएगा खाकसार का, फिर देखिएगा आएगी उस शक्ल पे हंसी, बस जिक्र छेड़ दीजिएगा खाकसार का, झरने की तरह साफ ताल्लुक बनाइए, झरने की तरह साफ ताल्लुक बनाइए, क्यों कर भरोसा कीजिए ला एतबार का, झरने की तरह साफ ताल्लुक बनाइए, क्यों कर भरोसा कीजिए ला एतबार का, आता है एक बार ही मौसम बहार का, तूने ये क्या लगा रखा है बार बार का, तूने ये क्या लगा रखा है बार बार का, राज खुल जाने के डर से सारे घबराने लगे, राज खुल जाने के डर से सारे घबराने लगे, जान लेवा लोग सारे जान से जाने लगे, राज खुल जाने के डर से सारे घबराने लगे, जान लेवा लोग सारे जान से जाने लगे, तेरी इस नाराजगी ने देख क्या क्या कर दिया, तेरी इस नाराजगी से तेरी इस नाराजगी ने देख क्या क्या कर दिया, अब हमारे साथ सारे फूल मुरझाने लगे, इसलिए रखा था मैंने आपके कांधों पे हाथ, इसलिए रखा था मैंने आपके कांधों पे हाथ,

आप पीछे से मुझे कुछ जाने पहचाने लगे, इसलिए रखा था मैंने आपके कांधों पे हाथ। आप पीछे से मुझे कुछ जाने पहचाने लगे, खामियां देखते हैं और कमी जानते हैं, खामियां देखते हैं और कमी जानते हैं, अब मेरे बारे में कुछ लोग यही जानते हैं। खामियां देखते हैं और कमी जानते हैं, अब मेरे बारे में कुछ लोग यही जानते हैं। भाव देता है वो मर्जी के मुताबिक अपनी, भाव देता है वो मर्जी के मुताबिक अपनी, उसके बर्ताव के बारे में सभी जानते हैं। भाव देता है वो मर्जी के मुताबिक अपनी, उसके बर्ताव के बारे में सभी जानते हैं। छांव की समत लपकते हैं कड़ी धूप से लोग, छांव की समत लपकते हैं कड़ी धूप से लोग, सर्द मौसम में इसी शय को भली जानते हैं, सर्द मौसम में इसी शय को भली जानते हैं। क्या पता, क्या पता आपके हक में न मुनासिब निकले, क्या पता आपके हक में न मुनासिब निकले, वो जिसे आप ही परियों की परी जानते हैं। क्या पता आपके हक में न मुनासिब निकले, क्या पता आपके हक में न मुनासिब निकले, वो जिसे आप ही परियों की परी जानते हैं। सब तेरी बात का कायल नहीं हो तो कहना, सब तेरी बात के कायल नहीं हो तो कहना, हम तो अच्छे से तेरी जादूगरी जानते हैं। खामियां देखते हैं और कमी जानते हैं, अब मेरे बारे में कुछ लोग यही जानते हैं। जब तेरा जिक्र सरे आम हुआ करता था, जब तेरा जिक्र सरे आम हुआ करता था, तब तेरे साथ मेरा नाम हुआ करता था। जब तेरा जिक्र सरे आम हुआ करता था, तब तेरे साथ मेरा नाम हुआ करता था। हम निकम्मे तेरी गलियों में फिरा करते थे, हम निकम्मे तेरी गलियों में फिरा करते थे, ये हमारे लिए एक काम हुआ करता था। हम निकम्मे तेरी गलियों में फिरा करते थे, ये हमारे लिए एक काम हुआ करता था। इस बहाने से मेरा दिल भी बहल जाता था, इस बहाने से मेरा दिल भी बहल जाता था, और तो और तेरा नाम हुआ करता था। इस बहाने से मेरा दिल भी बहल जाता था, और तो और तेरा नाम हुआ करता था। मुख्तसर बात में बातों की वजाहत का हुनर, मुख्तसर बात में बातों की वजाहत का हुनर, नए अंदाज में पैगाम हुआ करता था। मुख्तसर बात में बातों की वजाहत का हुनर, नए अंदाज में पैगाम हुआ करता था। एक ये वक्त फसादात से खाली ही नहीं, एक ये वक्त फसादात से खाली ही नहीं, एक वो वक्त जब आराम हुआ करता था। जब तेरा जिक्र सरे आम हुआ करता था, तब तेरे साथ मेरा नाम हुआ करता था। आवाज सुन रहा हूं तुम्हारी मैं गौर से, आवाज सुन रहा हूं तुम्हारी मैं गौर से, तस्वीर बन रही है तसव्वुर की ओर से। आवाज सुन रहा हूं तुम्हारी मैं गौर से, तस्वीर बन रही है तसव्वुर की ओर से। ये कैसे तुझको आज मेरी याद आ गई, ये कैसे तुझको आज मेरी याद आ गई, क्या काम पड़ गया है तुझे काम चोर से। ये कैसे तुझको आज मेरी याद आ गई, क्या काम पड़ गया है तुझे काम चोर से। ये जब से तूने बात की है सबके सामने, ये जब से तूने बात की है सबके सामने, रिश्ते बहाल होने लगे चारों ओर से। ये जब से तूने बात की है सबके सामने, रिश्ते बहाल होने लगे चारों ओर से।

0: आना ना आपके बीच में उड़ते हुए परिंद, आना ना आपके बीच में उड़ते हुए परिंद, एक डोर जुड़ रही है अभी मेरी डोर से। आना ना आपके बीच में उड़ते हुए परिंद, एक डोर जुड़ रही है अभी मेरी डोर से, कोशिश निकाल लाएगी एक मुस्तकिल मकान, कोशिश निकाल लाएगी एक मुस्तकिल मकान, गुजरा था मैं भी नकल मकानी के जोर से, कोशिश निकाल लाएगी एक मुस्तकिल मकान, गुजरा था मैं भी नकल मकानी के दौर से, आवाज सुन रहा हूं तुम्हारी मैं गौर से, तस्वीर बन रही है तसव्वुर की ओर से, न निकलता है नतीजा न बदलता कुछ है, न निकलता है नतीजा न बदलता कुछ है, ऐसा लगता है अभी जान का खतरा कुछ है, न निकलता है नतीजा न बदलता कुछ है, ऐसा लगता है अभी जान का खतरा कुछ है, ये मेरी दरिया दिली थी के भला जिसके सबब, ये मेरी दरिया दिली थी के भला जिसके सबब, आना कुछ और था हिस्से में के आया कुछ है, मैं के हर पल में नई समत को चल पड़ता हूं, मैं के हर पल में नई समत को चल पड़ता हूं, सोचता कुछ हूं मेरे साथ में होता कुछ है, महंगे हीरे हैं यहां और है महंगे मोती, महंगे हीरे हैं यहां और है महंगे मोती, मेरे नजदीक भला आपसे अच्छा कुछ है।
1: वाह बहुत खूब, इतनी प्यारी गजल आपने सुनी और इतना खूबसूरत आपने कलाम सुना। अभी जो आप कलाम सुन रहे थे सामईन हजरात, वो फैसल इब्न अहमद का था। बहुत ही खूबसूरत शायरी करते हैं, कम उम्र से ही शायरी कर रहे हैं और अब तो मशायरों की रौनक में पेश पेश रहते हैं। तो चलिए अब दीजिए अपनी दोस्त ज़ीबा को भी इजाज़त। आज का ये प्रोग्राम, आज की ये बज़्म आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इसको आपकी समातों की नज़र पेश की आपकी दोस्त डॉक्टर ज़ीबा ज़ीनत ने। वहीं इसके रूहे रवा रहे राजेंद्र डारा साहब। चलिए दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह की फिर मुलाकात एक और खूबसूरत से प्रोग्राम के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए, बेहद ख्याल रखिए और हाँ, हमेशा मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफिज़।

हम आकाशवाणी बीकानेर की ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे वीजी जोग से वायलिन पर बजाया राग दुर्गा। इनके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं अरुण घोषाल।

0: मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। रात्रि के 11 बजने को है। अब समाचार होंगे। समाचार पहले हिंदी में, तत्पश्चात अंग्रेजी में होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लैक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में यह पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मानपुई साईवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर है।
2: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
3: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
4: एंड देन वी कैन सेल टू फर्दर मार्केट्स एज वेल।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के विश्वास और मजबूती का पता चलता है। ओमान के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और ओमान के बीच सदियों पुराने समुद्री संबंध दोनों देशों के लोगों को सदियों से जोड़ते रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का सबसे बड़ा संरक्षक बना रहेगा। उन्होंने आज विशाखापत्तनम में नौ सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि बदलते वैश्विक सुरक्षा माहौल में भारतीय नौसेना देश के समुद्री हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत के 90% से अधिक व्यापार का परिवहन समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा देश की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्री ने कहा कि स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरी का नौसेना में शामिल होना रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद के मानसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। कोयला मंत्रालय ने आज वाणिज्य कोयला ब्लॉकों की नीलामी के 15वें चरण और 13वें और 14वें चरण के दूसरे प्रयास की बोलियां बोली। मंत्रालय के अनुसार नीलामी के लिए पेश किए गए 23 कोयला ब्लॉकों में से 8 के लिए कुल 21 बोलियां प्राप्त हुई हैं। मंत्रालय ने कहा कि इस नीलामी में 16 कंपनियों ने भाग लिया, जो देश के वाणिज्य कोयला खनन में उद्योग जगत की मजबूती भागीदारी को दर्शाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे

0: beating British wildcard Arthur Ferry in the semi-final this evening. The second-seeded Zverev produced a clinical performance to defeat Ferry in straight sets 7-6, 6-2, 6-4. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बीकानेर का टोला मारू चैनल है। इस समय रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारे आज के प्रसारण अब यहीं संपन्न होते हैं। कल प्रातः 5:55 पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।